हाय डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के? मेरे तो ठीक है. दिस इज इपी द हिपी बैक इन द हाउस ओनली एट फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम. आई होप यू आर हैविंग ए वंडरफुल ट्यूसडे आफ्टरनून. गाइस, जिन लोगों ने मुझे कल मिस किया, मैं थोड़ा सा काम में बिजी थी. आई वाज डूइंग अ लिटिल रिकॉर्डिंग. हाउएवर, आई एम बैक टुडे विद अ लॉट ऑफ अमेजिंग म्यूजिक, लॉट्स ऑफ फन कॉन्वर्सेशंस. And let's get this party on the road. अगर आप कहीं भी ड्राइव करें हैं, be very careful, drive safe. शाम का वक्त है, बहुत भीड़ है. I hope you enjoy the music that we're gonna listen to.

भाई हम भी तालियां बजाते हैं एवे एवे तो हम भी लुट जाते हैं, लेकिन एवे एवे करते करते ना कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं. बट यू नो व्हाट, ऐसे करके रिकवरिंग कैन टेक मच लॉन्गर देन योर एक्सीडेंट. एक्सीडेंट तो फट से हो जाता है एक झटके में, बट रिकवरिंग टेक्स अ लॉन्ग टाइम. एंड स्पेशली इफ यू बिन इन सम काइंड ऑफ अ कार एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, अटर्नी ओमर ख्वाजा इज गोना हैंडल द लीगल बैटल वाइल यू कैन फोकस ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल हीलिंग. ही विल फाइट फॉर योर कॉम्पेंसेशन दैट यू आर एंटाइटल टू एंड यू पे नथिंग अनलेस योर केस इज एक्चुअली वन. कॉल 4693005046 और विजिट अटर्नी ओमर डॉट कॉम फॉर योर फ्री कंसल्टेशन. ठीक है, दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी ओमर ख्वाजा विद ट्रैफिक अपडेट्स विच आई डोंट हैव. आई एम नॉट गोना गिव यू दैट क्योंकि 7 बजे कौन ही गाड़ी चला रहा होगा अनलेस यू आर कमिंग बैक फ्रॉम वर्क. आई विल टेल यू दैट 7 बजे के बाद ट्रैफिक बड़ा अच्छा रहता है. सो यू नो इट्स मच बेटर देन व्हाट इट वॉज इन ऑगस्ट. आई फील लाइक जो रोड्स ब्लॉक थी ऑगस्ट में वो थोड़ी थोड़ी करके खुल रही है. तो वॉट इज योर अपडेट ऑन दैट, यू कैन एब्सोल्युटली लेट मी नो गाइज. आज सितंबर का पहला दिन है. हाउ वॉज योर ऑगस्ट? मेरा ऑगस्ट तो बहुत ही सही गया, पता है क्यों? बिकॉज इट वॉज सच एन इवेंटफुल मंथ. आई फील लाइक यू नो क्योंकि मेरा बर्थडे भी आता था ऑगस्ट में, और मतलब आई डोंट नो समथिंग अबाउट ऑगस्ट जस्ट फील्स लाइक अ रिन्यूड एनर्जी. आई डोंट नो मे बी क्योंकि फॉल सेमेस्टर भी शुरू होता है बच्चों के, यू नो आई मीन योर बैक ऑगस्ट इज वेयर समर एक्चुअली एंड यू आर गियरिंग बैक इन टू वर्क मोड, वी आर मेकिंग ऑल द प्लान्स. मतलब जो भी है मुझे तो ऑगस्ट बहुत अच्छा लगता है. एंड पता है सबसे अमेजिंग चीज़ क्या थी? सो फ्राइडे को वॉज एक्चुअली माई बर्थडे. सो एंड आई डिसाइडेड कि आई एम गोना गो टू द स्पा विथ माई फ्रेंड्स. एंड हम लोग एक कॉलोनी में एक देर इज लाइक अ मिनरल पूल का स्पा, वेयर यू हैव लाइक डिफरेंट लाइक पूल्स विद लाइक डिफरेंट सॉल्ट्स एंड डिफरेंट टेम्परेचर.

वाटर एंड एवरीथिंग. और वहां पे रात को ना ब्लड मून था. आई डोंट नो इफ यू गाइस पेड अटेंशन, बट इट वॉज अ ब्लड मून. इट वॉज सच अ बिग मून, फुल मून था और पूरा ऑरेंज कलर का मून था. एंड वी गॉट टू सी दैट वाइल सोकिंग इन द वॉटर, एंड इट वॉज सो डिवाइन, एब्सोल्यूटली अमेजिंग. सो आई वॉन्टेड टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू गाइज. अगर आपको मौका मिले टू रिलैक्स एंड डू नथिंग फॉर अ डे, डेफिनेटली टेक दैट, बिकॉज आई फील लाइक हम लोग जिंदगी की भगदड़ में रिलैक्स करना भूल जाते हैं. एंड समटाइम्स यू नीड टू टेक अ डे आउट, स्पेशली वेदर इट्स योर बर्थडे, योर एनिवर्सरी, या फिर वट एवर डे, यू नो, जस्ट टेक अ डे आउट एंड डू नथिंग. ट्रस्ट मी, यू विल थैंक योर स्टार्स दैट यू गॉट दैट वन डे टू बेसिकली डू नथिंग. तो आगे बढ़ते हुए गाइज, आई एम गोना प्ले यू द सॉन्ग एंड देन व्हेन यू कम बैक आई एम गोना प्ले यू अ कपल मोर सॉन्ग्स, ठीक है? उसके बाद आप वापस आइए एंड देन वी विल टॉक सम मोर.

0: मुझे दोबारा टन टन टन टन टन तारा चलते है कानों से पारा टन टन टन टन टन तारा चलते है कानों से पारा खड़ी खड़ी क्या सोच रही है चल हो जाए नौ तो ग्यारह टन टन टन टन टन
1: भाई टन टन आडन टन टन तारा गाने तो बज रहे हैं, लेकिन गाने बजाने से पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यू नो व्हेन आई गेट दीज कॉल्स. अभी मैंने आई नो मैंने इतना लंबा सॉन्ग ब्रेक लगा दिया, आपको लग रहा होगा कि एपी कहाँ गायब हो गई. भाई मैं यही थी. कई बार क्या होता है व्हेन वी गेट कॉल्स फ्रॉम रियली इंटरेस्टिंग लिसनर्स एंड देन यू हैव अ लिटिल कनेक्शन एंड लाइक अरे नहीं अरे आप तो हमारे पड़ोसी हैं, ऐसे करके बातें हमारी कई बार लंबी खिंच जाती है. तो कोई बात नहीं गाइज, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स एंगेजिंग इन कॉन्वर्सेशन एंड समटाइम्स आई गेट कैरिड अवे, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. हाउ एवर माई टाइम इक्विटी लेड बाय CPA सुधीर पाई, ही थिंक्स अबाउट बिल्डिंग स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए, रिटायरमेंट, ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट, माई टाइम इक्विटीज ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशन डिजाइन अराउंड योर गोल्स. विजिट mytimeequity.com और कॉल 4697021272. एग्जैक्टली गाइज, तो आज मेरा जो सेगमेंट है ना, जो हम 9 बजे के बाद करते हैं, वेयर वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग एंड व्हाट्स हिप एंड हैपनिंग, यू नो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लव, रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंसेस. बिकॉज कई बार हम इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं कि यू नो फाइनेंसेस इज यार ठीक है चलेगा जैसा चलेगा, यू नो यू आर मैरिड एज अ कपल और यू आर डेटिंग एज अ कपल, यहाँ डेट नाइट कर ली, यहाँ ये कर लिया. लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता कि फाइनेंसेस आर वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट causes a lot of conflict in relationships. And the reason why I am particularly interested in this is because recently to nahi, main around 2 saal se I am following this creator on YouTube. His name is Ramit Sethi. He's Indian American. और उन्होंने ही रोट दिस लाइक फैंटास्टिक बुक कॉल्ड आई विल टीच यू टू बी रिच, विच आई पर्सनली क्वाइट इन्जॉयड इट. एंड क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइनेंस सिखाने वाला कुछ कोई था नहीं, यू नो आई डिड नॉट नो अबाउट माई टाइम इक्विटी देन, सो आई काइंड ऑफ सेल्फ रेड अबाउट इट एंड आई लर्न क्वाइट अ बिट. बट ही हैज़ दिस पॉडकास्ट कॉल्ड मनी फॉर कपल्स, वेयर अ लॉट ऑफ कपल्स यू हैव टू फिल आउट योर फॉर्म एंड यू नो यू गेट टू गो टू दिस पॉडकास्ट एंड ही एक्चुअली सिट्स एंड एनालाइजेज कि उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, व्हाट आर द ट्रबल दे आर गेटिंग इनटू. सम पीपल इवन गेट इनटू सो मच फाइनेंशियल ट्रबल दैट दे आर लाइक इफ माय हस्बैंड डजंट फिक्स हिज स्पेंडिंग पैटर्न देन आई एम गोना लीव माय हस्बैंड, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं. सो आई हैव थरली इंजॉयड वॉचिंग इट एंड बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी एजुकेशनल, नॉट कि ऐसे ही हम रेज बेट कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी एजुकेशनल. तो वी आर गोना टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट राइट आफ्टर 9 o'clock. लेकिन अभी के लिए आप ये छोटा सा गाना इंजॉय करिए और 8 बजे के बाद जब हम वापस आएंगे देन यू नो वॉट टाइम इट इज. इट इज़ द टाइम फॉर द गिव अवे, दैट इज राइट. और आज का हमारा गिव अवे है फ्रॉम द मिराज लाउंज. एग्जैक्टली गाइज, तो स्टिक अराउंड, इंजॉय द सॉन्ग एंड आई विल सी यू शॉर्टली.

I'm going to cut that song short क्योंकि हमारे पास एक अच्छी सी सुंदर सी रिक्वेस्ट आई है. This one goes out to Zimran. Zimran, I hope you're having a wonderful time at your new job. And thank you for being such an avid listener, even from a different city. Zimran आजकल Dallas में नहीं है, वो दूसरे शहर में है. तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो भाई, फनेशा आप हर जगह से सुन सकते हो क्योंकि फनेशा का ऐप ही है. अगर आपको नहीं पता है, फनेशा के दो ऐप्स है एक्चुअली. फनेशा वाला एक ऐप है और एक और ऐप है बिग फैन के नाम से. तो अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं दुबई में हैं या फिर दिल्ली में हैं या पता नहीं कहीं भी हो सकते हैं या देहरादून में हैं एंड यू आर नॉट इन डैलस एनीमोर एंड यू स्टिल वांट टू लिसन टू योर फेवरेट आरजेज एंड स्टिल वांट टू लिसन टू द इनक्रेडिबल म्यूजिक, देन यू कैन स्टिल डाउनलोड द ऐप एंड लिसन टू इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ओके एंड स्टिल रिक्वेस्ट फॉर सॉन्ग्स. The song goes out to Zimran.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
4: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
3: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
4: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
11: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है।
10: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: जिंदगी एक रंगमंच है
13: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 9728971530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
14: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
15: हाँ।
14: घर रिलोकेट करनी है?
15: हाँ।
14: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
15: हाँ भाई हाँ।
14: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
16: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
17: होको।
18: अरे बस भी करो यार।
19: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
18: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
20: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
21: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW, get ready to relive the magic of Kumar Shanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
1: Guys, we are back. You are listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. And this is my show, An Evening in Dallas. भाई कितने बजे हैं? 8 बज चुके हैं. आपको पता है 8:05 को क्या होता है. 8:05 को हमारा गिव अवे होता है. लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आई हैड प्लेड अ रिक्वेस्ट. और अगर आपको नहीं पता, दैट इज द न्यू वर्जन ऑफ बिजूरिया, विच वॉज अ 90s ट्रैक रिलीज बाय ऑफकोर्स द वन एंड ओनली इनक्रेडिबल सोनू निगम. एंड इफ यू एंजॉयड दैट एंड इफ यू एंजॉय मोर सोनू निगम ट्रैक्स, देन यू नो दैट सोनू निगम इज कमिंग लाइव टू डैलस on September 26, Saturday at 8:30 p.m. at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. तो आपके फेवरेट गाने सारे एकदम थिरकते हुए डांस नंबर्स, दैट आइकॉनिक वॉइस, ऑल ऑफ दिस इज लाइव. टिकट्स आर ऑलरेडी ऑन सेल एट टिकट मास्टर. यू कैन कॉल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस नंबर 855-360-SHOWS. Revolution by Sonu Nigam Live. And of course, Fun Asia is the exclusive media partner. So guys, without further ado, let's go ahead and play our game. So, agar aap ko pata hai hamara game kya hai, then it is super easy. Aur agar aapko nahi pata hai hamara game kya hai, then also it is very easy. I'm going to play you a song. We call this the Sounds Like Game. I'm going to play you a song. और आप हमें कॉल करके बोलेंगे कि उसका जो साउंड्स लाइक वाला बॉलीवुड गाना है वो क्या है. ठीक है, तो लेकिन गिव अवे है क्या, पहले मैं ये तो बता दूं. आज का हमारा गिव अवे है इस फ्रॉम द मिराज लाउंज डैलस. इफ यू लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट फेवरेट हैंग आउट जॉइंट, इट्स टाइम टू गो टू मिराज लाउंज. Enjoy premium hookahs, delicious bites, handcrafted cocktails, live music, exciting DJ nights, all under one roof. And here's the best part. Happy hour जो है इनका चलता है from Monday to Thursday from 11 a.m. to 6 p.m. featuring hookah starting at only $24.99 and shots for only $4.99. What? This is a steal. Or especially this is for, you know, your college young guys. अगर आपको पार्टी करने के लिए चाहिए then this is the way to go about it, okay? क्योंकि college में किसी के पास पैसे नहीं होते. So if you want a party, then you need to go to Mirage Lounge. Don't miss the fun because they have a college night and then they also have a ladies night. Exactly. Visit Mirage Lounge on McKinney Ranch Parkway because miracles can happen at Mirage. Aap apko apni shakal ki mirage bhi dikhegi wahan pe. Answer today's simple question. Jaise maine bola, game already maine bata diya hai. Aur aap kya jeetenge Mirage Lounge se? Mirage agar aapko mil jata hai, then when you spend $50, you get $20 off, okay? You get $20 off with a minimum spend of $50, okay? So, main iske liye do winners choose karungi. Aur pehla winner jo hai, aapko ye pehla wala gana batana hai. Aur dusra winner jo hai, aapko mujhe ye batana hai, ye kaun si movie se hai, theek hai? To isliye no hints for this one. No hints at all, क्योंकि टू पार्ट क्वेश्चन है. तो अगर आप पहले कॉलर हैं, आप सिर्फ मुझे गाने का नाम बताइए. और अगर आप दूसरे कॉलर हैं, तो देन आप मूवी का नाम बताइए. ठीक है, सिंपल. तो लेट्स गो अहेड एंड प्ले दिस. दिस इज अ सॉन्ग.

0: we have our first caller. Hi, can you hear me? Hi, can you hear me?
1: Hi, can you hear me?
0: Yes, I can hear you. Can you hear me?
1: Yeah. The song is Neem Churai Meri Kisne Ho Sanam Tune.
0: Very good. Thoda gaa bhi do yaar. Apna naam bhi bata do saath mein.
1: I'm Charu. Should I tell the movie name?
0: नहीं मूवी नेम आई हैव टू गिव टू समवन एल्स. ठीक है, तो वो मेरे को दो विनर्स चूज करने हैं ना, तो आपने पहला बता दिया. चारू जी, मैं आप प्लीज लाइन पे बने रहिए. आई एम गोना टेक द सेकंड कॉलर. अगर कॉल कट जाती है एक्सीडेंटली, देन यू कॉल मी बैक इन लाइक 5 मिनट्स एंड देन टेल मी योर इन्फॉर्मेशन. ओके, बिकॉज आई नीड टू फॉरवर्ड टू द रेस्टोरेंट. कांग्रेचुलेशंस चारू, हियर वी गो, सेकंड कॉलर. हाय, कैन यू हियर मी?
2: कैन यू हियर मी?
3: या, आई कैन हियर यू. यस.
0: ओके, पहले तो अपना नाम बताइए एंड देन बिकॉज चारू जी ने ऑलरेडी हमें आंसर दे दिया है, तो आप मुझे मूवी का नाम बताइए.
3: या, द मूवी नेम इज इश्क.
0: यस, पर अपना नाम तो बताइए.
3: हाँ, माय नेम इज आर्या.
0: आर्या जी, कांग्रेचुलेशंस, आप भी जीत चुके हैं हमारा गिव अवे. तो गाइज, हम एक छोटे से गाने में जाते हैं और उसके बाद आके आर्य जी प्लीज स्टे ऑन द लाइन. आई एम गोना टेक योर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तब तक के लिए गाइस, आप ये वाला गाना एंजॉय करिए.
3: ओके.

एंड गाइज वी आर बैक. एग्जैक्टली गाइज, तो अगर आपने गिव अवे कभी भी जीता है इस शो पे या किसी भी और शो पे, तो ट्राई टू कॉल द शो, जिसके भी शो पे आपने जीता उनको. अगर आपको नहीं याद है कि आपने क्या जीता है या आपको डाउट हो रहा है, तो आपने जिनके शो पे कॉल किया था, जैसे अगर आपने मार्विन जी के शो पे कॉल किया था और उनके शो पे आपने जीता था, देन यू हैव टू कॉल अप मार्विन जी, देन ही विल बी एबल टू टेल यू कि उन्होंने क्या, आपने क्या जीता है. और अगर आपने मॉर्निंग वाले शो में जीता है, जैसे शबनम जी के शो में, देन यू हैव टू कॉल अप शबनम जी, क्योंकि हमारे पास सबका इन्फॉर्मेशन नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे. अगर आपने मेरे शो में कॉल किया था पिछले हफ्ते एंड आई वॉज होस्टिंग इट, देन आई विल बी एबल टू टेल यू वॉट यू हैव वन. दूसरी चीज़ ये, आपको हम घर पे आके नहीं डिलीवर करते हैं, तो दीज आर यूजली गिव अवेज फ्रॉम रेस्टोरेंट्स. तो अगर आपने गिव अवे जीता है, देन यू हैव टू गो टू द रेस्टोरेंट्स डायरेक्टली एंड क्लेम योर प्राइज. ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन हम रेस्टोरेंट भेज देते हैं और आपको रेस्टोरेंट जाके डायरेक्टली वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि आज September 1st के दिन मैंने जीता है $20 का गिव अवे फ्रॉम मिराज लाउंज. समझे? तो वो चीज़ मेन है, तो मेक श्योर यू गो अहेड एंड डू दैट. बिकॉज अगर आप हमें कॉल करते हैं और हमें बताएंगे कि आपने गिव अवे जीता था किसी भी एक शो में, आपको याद नहीं है क्या गिव अवे था, तो मुझे भी नहीं पता होगा अनफॉर्चुनेटली. तो मेक श्योर यू कॉल द राइट पर्सन. ठीक है, तो गाइज इट इज कितने बजे हैं भाई? 8:15 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ होने वाली हूँ पूरे 10 बजे तक आज. तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, 9 बजे के बाद वी डू आर नॉर्मल यू नो टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड स्टफ लाइक दैट. वी आर गोइंग टू डू दैट हियर टुडे एज वेल. लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर आपका यू नो इट्स आउट ऑफ नेटवर्क, देन यू कैन स्टे कनेक्टेड टू अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. दैट्स इट. इट्स एक्चुअली चीपर देन एन इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपके जेब से जा रहा है. ओके, योर मेंबरशिप इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप्स, प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिसीजेज, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ वेन अप्रोप्रिएट एंड केयर कोऑर्डिनेशन, प्लस 20% सेविंग्स ऑन

प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलोअप्स, प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिसीजेज, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ वेन अप्रोप्रिएट एंड केयर कोऑर्डिनेशन, प्लस 20% सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज. कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ फिजिशंस डॉट कॉम. पैशन हेल्थ इज देयर, योर हेल्थ इज देयर पैशन. ओके. And this program is not a health insurance program. This is a membership-based program. So eligibility restrictions definitely apply. So guys, we are still taking requests. अगर आपके पास कोई मजेदार सा गाना है जो आप request करना चाहते हैं and that kind of fits the vibe, then give me a call and I will play it absolutely for you. Because that is what my job is. It is to play amazing, amazing music. तब तक के लिए आप ये गाना enjoy करिए मेरे प्यारे प्यारे बंधु.

दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू अशोक. अशोक का दिस, आई होप यू एंजॉय दिस ट्यून. और उसके बाद मैं अपनी एक और रिक्वेस्ट बजाने वाली हूँ फॉर रुचि, लेकिन तब तक के लिए आप ये गाना एंजॉय करिए.

ऑल राइट गाइस, वी आर बैक. हाँ जी, जैसे मैंने बोला था, सोनू निगम इज गोइंग टू परफॉर्म एट द एंड ऑफ दिस मंथ. 26 सितंबर को. अगर आपने टिकट्स नहीं लगी तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी यार. सोनू निगम ऐसे नहीं कि रोज़ रोज़ आने वाले हैं. उसके अलावा आई बिलीव कुमार शानू भी आने वाले हैं. एंड फनीशा में अगर आपने एड्स वगैरह सुने हैं तो कुमार शानू दी एब्सोल्युटली आइकॉनिक 90s वोकलिस्ट, ही इज़ ऑल्सो कमिंग. एंड आई नो डैलस की जनता लव्स टू सिट एंड लिसन टू म्यूज़िक. यू नो, कमिंग फ्रॉम अ प्लेस लाइक दिल्ली, हम लोग दिल्ली में क्या है, दिल्ली में पीपल लाइक टू पार्टी, दे लाइक टू गिव इट, यू नो, दे लाइक टू किक द बूट्स एंड किक इट ऑन द डांस फ्लोर. दे रियली लाइक टू डांस अ लॉट. लेकिन द मोर टाइम आई स्पेंड इन दिल्ली, ओ सॉरी, द मोर टाइम आई स्पेंड इन डैलस एज ए प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एज ए रेडियो शो होस्ट, आई लर्न दैट डैलस की जनता इज अ लिटिल डिफरेंट. एंड समटाइम्स इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नो द मार्केट दैट यू केटरिंग टू. डैलस की जनता इज़ लाइक, we enjoy our music but we like to sit and we like to listen, and that is totally fine. If you guys like concerts then stick around in Fun Asia, because Fun Asia mein hum bahut sare artists laate hain, we promote a lot of concerts and we make sure that you guys have a good time. So before we go ahead, this next song goes out to Ruchi, who is actually a very good friend of mine. Ruchi, who is a huge, huge fan of Lucky Ali. और हर बार मैं कोई गाना बजाती हूँ, कहती है यार क्या बजा रही है, लकी अली शरी बजाना कुछ, समथिंग नाइस. तो रुचि यार मेरी फ्रेंड, जिसको मैं अपनी रिलेशनशिप के रोने धोने बड़े करती हूँ, तो तुम्हारे लिए ये प्यारा सा गाना.

0: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: Floors clean.
2: Check.
1: Windows clean.
2: Check.
1: Kitchen clean.
2: Check.
1: Air ducts clean.
2: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
3: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
8: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
9: लिया.
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया.
8: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
10: Visit www.senadainc.com today.
11: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
11: ये क्या होता?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
13: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
14: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
15: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
16: तुमसे मिलके दिल का है.
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
15: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कैरी चॉक टू चाइना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: भूख लगी
2: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
3: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया.
2: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
3: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
4: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online third through sixth grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
5: We need to talk.
6: अब क्या हुआ?
5: Nothing. It's not you.
6: Oh no.
5: It's the distance.
6: Distance? We live 10 minutes apart.
5: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
7: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

भाई आपने ज्यादा मुझे मिस तो नहीं किया? मैं अभी भागते भागते ना कुछ गड़बड़ हो गई, सो आई गॉट लॉक्ड आउट ऑफ द फर्नीचर ऑफिस ऑन एन एक्सीडेंट. लेकिन मैं गाइज वापस आ गई हूँ. दिस इज इपी द हिपी इन द हाउस एंड थैंक यू फॉर स्टिल कंटिन्यूइंग टू लिसन टू मी. एंड या गाइज बिफोर वी गो अहेड एंड डू द नेक्स्ट वन, ये रिक्वेस्ट थी पहले किसी की जो मैं बजा नहीं पाई, तो ये गाना आपके लिए. उसके बाद आगे फिर हम बातें करेंगे.

भाई साथ ही से याद आया, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लव मनी एंड पावर इन रिलेशनशिप्स. एग्जैक्टली गाइस, तो ये हमारा मेन टॉपिक है. वैसे तो अगर हम ये मनी एंड रिलेशनशिप्स की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं. आई मीन वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट डेट नाइट, स्प्लिटिंग बिल्स, यू नो मोर लाइक दैट, या फिर यू नो हाउ यू हैंडल मनी, और लाइक हैविंग अ मनी डेट, और लाइक फाइनेंशियल गोल्स. तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है. तो इस पूरे हफ्ते जो मैंने डिसाइड किया है, मैंने सोचा है कि इसको हम स्प्लिट करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट में. आज का हमारा ऑफकोर्स थीम है, वी आर एक्सप्लोरिंग फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी. आप लोगों ने रिलेशनशिप्स के बारे में जब हम सोचते हैं, वी थिंक अबाउट इमोशनल कंपैटिबिलिटी, वी थिंक अबाउट इमोशनल अवेलेबिलिटी, वी थिंक अबाउट सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी एंड सो मेनी मोर थिंग्स. लेकिन कभी आपने फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचा है? शादी करते टाइम जब अरेंज मैरिज आती है, तब हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अरेंज मैरिज. लेकिन कई बार बॉलीवुड मूवीज़ हमें देख देख के, बॉलीवुड मूवीज़ क्या, हॉलीवुड मूवीज़ में रोम कॉम भी देख देख के हम ये सारी मनी के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं, प्यार है तो पैसा क्या चीज़ है, बड़ी बात है. लेकिन पता है गाइज, रियलिटी अगर आप देखो ना, प्यार तो होना ही चाहिए ऑफकोर्स, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ योर पार्टनर स्पेंड्स, वेदर नॉट यू हैव द सेम गोल्स फॉर योर फ्यूचर. क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें डिसाइड होती है. ठीक है, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स. स्प्लिटिंग बिल्स, वेदर और नॉट यू एक्सेप्ट दैट. ठीक है, आई मीन सबका अलग अलग होता है. जेंडर एक्सपेक्टेशंस इन अ रिलेशनशिप, डू यू ओनली एक्सपेक्ट द मैन टू पे, और या फिर डज द मॉडर्न डे वुमेन ऑल्सो वॉन्ट टू पे, एंड विल द मैन एक्चुअली लेट हर पे. ओके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्या आप अपनी शादी में दो इंडिपेंडेंट अकाउंट्स मेंटेन करके चलते हैं, या फिर यू कंबाइन ऑल ऑफ योर मनी? देर इज नो वन मेथड टू दिस, बाय द वे दे आर ऑल करेक्ट, वट एवर वर्क फॉर यू, बट वी आर गोना टॉक अबाउट दिस. सीक्रेट स्पेंडिंग हैबिट्स, समटाइम्स पीपल इवन कॉल्ड इट फाइनेंशियल इनफिडेलिटी. फाइनेंशियल इनफिडेलिटी मतलब आप मे बी यू आर नॉट चीटिंग ऑन योर पार्टनर, बट यू आर सीक्रेटली हाइडिंग सम स्पेंडिंग हैबिट्स फ्रॉम योर पार्टनर. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वंस इन अ वाइल आपने अपने आप को कॉफ़ी की ट्रीट कर दी, या एज अ गर्ल आप सफोरा चले गए, वहाँ पर आपने यू नो मेकअप खरीद लिया, नॉट दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट अदर थिंग्स. ओके, थिंग्स लाइक डेट, थिंग्स लाइक प्री नपचुअल्स, एक अनइक्वल इनकम्स, मनी कंट्रोल, एंड वेदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ रोमांटिक कंपैटिबिलिटी. तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे. आज का हमारा थीम है, जैसे मैंने बोला था, लव मनी एंड पावर. ठीक है, तो पहला चीज, पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि कैन लव सर्वाइव मनी प्रॉब्लम्स? हम प्यार में तो देखते हैं रोमियो जूलियट की कहानी, यू नो, रिच गर्ल पुअर बॉय, फिर रिच गर्ल अपना घर बार छोड़ के आ जाती है. आपको वो वाली मूवी याद है, श्रीदेवी, अनिल कपूर एंड उर्मिला मातोंडकर, जब वो उर्मिला मातोंडकर फॉल्स इन लव विद अनिल कपूर, और वो लिटरली खरीद लेती है अपने हस्बैंड को. याद है उसमें हमने कितना क्रिटिसाइज किया था श्रीदेवी को. सो वी गोना टॉक अबाउट मोर ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा गाना. यस,

गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी अनकंफर्टेबल. लेकिन वो अनकंफर्टेबल बात करने से पहले एक छोटा मैं बता दूँ. टेक्सास प्राइमरी केयर हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी फॉर द लास्ट 13 ईयर्स. नाउ दे आर ग्रोइंग विथ ए ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग लनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाई डॉक्टर मनदीप आचार्य. लनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर इन

for the last 13 years. Now they are growing with a brand new name and a second Frisco location, introducing Lanoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Lanoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testings, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics, or bhi bahut kuch, all under one roof. They are open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. You can walk in anytime and no appointment is needed. तो जैसे मैं बात करी थी, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर अनकंफर्टेबल देन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. सबसे अनकंफर्टेबल चीज पता क्या होती है? पैसा. जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाते हैं, वो वाला नहीं होता, नहीं मैं देता हूँ बिल, नहीं मैं देती हूँ बिल, अरे ये वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है. वी ऑल नो दिस, ठीक है? या किसी से समबडी ओज यू मनी, किसी से पैसा मांगना, मुझे तो बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है यार, प्लीज मेरे पैसे दो. किसी के पीछे पड़े रहना, यू नो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी uncomfortable and difficult to talk about. However, relationships में जब इसकी बात आती है तो और भी मुश्किल हो जाती है, especially when you are trying. अब arrange marriage जो वाली चीज़ होती है ना, वहाँ पर तो सब कुछ transparent होता है, because arrange marriage is designed for the long term and it is designed for like an institution. तो वहाँ पर arrange marriage की meeting कई बार तो मुझे ऐसे लगती है, it's like a जॉब इंटरव्यू जैसा. सीधा सीधा बोलते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है वगैरह. लेकिन अगर आप किसी से डेट पे जा रहे हैं या फिर यू नो इट्स अ रोमांटिक थिंग और यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, देन आस्किंग द दिस क्वेश्चन ऑन योर फर्स्ट डेट, विच ऑनेस्टली माइट बी अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, बट इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ डेट एंड द फर्स्ट थिंग यू आस्क दिस गाय और द गर्ल, हूएवर, यू से हाउ मच डू यू मेक, हाउ मच डू यू ओ, Who pays for dinner between us? Who pays the rent? Should couples split everything 50-50? Should the person who earns more pay more? Should you combine your bank accounts after marriage? And here's the uncomfortable question. Can you love somebody deeply and still be financially incompatible with them? Yes, that happens more times than you think. बिकॉज वी लव टू से कि भाई पैसा क्या चीज़ है, जब प्यार होता है रिलेशनशिप में पैसा वैसा कुछ नहीं मैटर करता है. लेकिन गाइज, यू एंड आई नो, वी बोथ नो दैट इट मैटर्स अ लॉट. बिल्डिंग अ लाइफ टुगेदर वेन वन पर्सन सेव्स एवरी सिंगल पेनी, वर्क्स रियली रियली हार्ड एंड द अदर वन स्पेंड्स एवरी थिंग दैट दे मेक, ओके. ट्राई प्लानिंग अ फ्यूचर वेन वन पर्सन वॉन्ट्स टू बाय अ हाउस एंड द अदर हैज $40,000 इन क्रेडिट कार्ड डेट. Okay, try being married when one person thinks ki money is security, while the other thinks, yeah, money to matlab haath ka mail hai, abhi enjoy karo, aayega jayega aise hi rahega. Money may not buy happiness, but money can definitely affect relationships and determine your happiness in the long run. Theek hai, hum iske bare mein aur baat karenge after the song.

तो गाइज हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स और मनी के बारे में, ठीक है. समटाइम्स रिलेशनशिप्स में ना आर्ग्यूमेंट मनी की नहीं होती है सिर्फ, ओके. इट्स अबाउट ट्रस्ट, इट्स अबाउट कंट्रोल. दीज आर डीपली अदर थिंग्स विच आर ऑफन टाइड टू मनी. इट्स अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट पावर. एंड समटाइम्स वेदर यू फील लाइक योर पार्टनर आर दे कैरिंग देयर शेयर ऑफ द रिलेशनशिप, या फिर सिर्फ आप ही अपने रिलेशनशिप को खींच रहे हो. सो टुनाइट वी आर टॉकिंग अबाउट लव, money and power. Who pays, who saves, who spends, who decides? Should the guy always do it? Ya fir ladko aur ladki ko split karna chahiye? Or perhaps the biggest question, can two people build a healthy relationship if they have completely different relationships with money? So one of the things that I learned, jaise main aapko bata rahi thi रमीत सेठी के बारे में, आई रियली लाइक इट. ही हैज समथिंग नोन एज दिस मनी डायल. एज अ कपल यू हैव टू बी लॉक्ड इन ऑन योर मनी डायल एंड बोथ ऑफ यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स द कॉमन गोल. तो वो सारी चीजें तो वो है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जो हमारी चाइल्डहुड पैटर्न्स होती हैं, योर या फिर योर पेरेंट्स रिलेशनशिप विथ मनी ऑफन डिक्टेट आवर ओन रिलेशनशिप विथ मनी ऑल्सो. ठीक है, जैसे अगर बचपन में फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव कम, जो मैंने उनके इतने सारे पॉडकास्ट एपिसोड के देखने के बाद यू नो व्हाट आई रियलाइज वाज, अगर यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, या फिर आपके जब बचपन में आपके पेरेंट्स के पास ज़्यादा नहीं था, तो सम हाउ इन दिस वंस यू स्टार्ट एक्चुअली मेकिंग मनी, वन ऑफ द थिंग्स दैट मोस्ट पीपल हु कम फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, what they start doing is actually spending it because they are trying to compensate for the things that they don't have or have not had when they were kids. Now, ye wali cheeze hamari jo bachpan ki relationship hoti hai money ke saath, that translates onto your adult relationship with money. And the same thing, whatever your adult relationship with money is, you will unconsciously transfer it on to your own kids as well. Now, this is not my theory, by the way, guys. तो मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है इसके ऊपर. मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आफ्टर वॉचिंग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड ऑफ दैट पॉडकास्ट एंड जस्ट टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, दिस इज व्हाट आई हैव फाउंड. इट्स नॉट रियली अ रिसर्च, आई कांट रियली प्रूव दिस साइंटिफिकली, बट दिस इज एन ऑब्जर्वेशन. नाउ कमिंग टू हाउ शुड थिंग्स बी स्प्लिट इन अ रिलेशनशिप, ओके. डू यू थिंक दैट एवरीथिंग in a modern relationship everything should be split 50-50? Now let's start with some of the biggest dating debates. ye aajkal instagram pe khulte hain na, ye sare jitne bhi instagram influencers hai wo sare aate hain dating advice dene. Oh girls, ladies, you should always let the guys pay, don't settle for bare minimum, don't settle for this, every all dates should be split 50-50. Guys are also expecting, no, all, sorry, I flipped it. Guys expect the 50-50 split. Girls, on the other hand, expect, no, the guy should be a gentleman, the guy should be paying everything. Agar they are expecting traditional roles out of women, then the women can also expect traditional roles out of men, which is where the guy takes care of all the bills. Right? So that is a very, very hot topic that's going on these days. We will talk more about that. Lekin uske pehle ek chota sa gaana.

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
8: गाइज, दिस इज इपी द हिपी। लास्ट आधा घंटा बचा है हमारे सेग शो में, हमारे सेगमेंट में। तो आई होप यू हैव इन्जॉयड द शो टुडे। आधे घंटे के लिए तो मैं गायब ही हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी गाड़ी में गई कुछ सामान लेने एंड आई गॉट लॉक्ड आउट एंड आई कुड नॉट कम बैक इन। तो गाइज, कई बार यू नो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं एंड वी हैव टू बी मोर माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स। हाउ एवर, वो सब चीज़ें छोड़िए, मैं अभी तो हूँ ना आपके साथ आधे घंटे और। तो हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंसेस के बारे में। आपको क्या लगता है, डू यू थिंक कपल्स शुड स्प्लिट एवरीथिंग? डिनर 50-50, रेंट 50-50, वेकेशन 50-50, एंड ऑन पेपर श्योर ऑल ऑफ दिस साउंड्स रियली फेयर, बट हियर्स द प्रॉब्लम, इक्वल इज एंड ऑलवेज इक्विटेबल। कभी आपने ये सोचा है कि से योर हस्बैंड और योर पार्टनर मेक्स आई डोंट नो $10,000 a month, okay? And you are on the other hand making only $5,000 a month because maybe you're on a dependent visa. या कोई भी है, कुछ भी हो सकता है। I mean, ऐसा कुछ भी है, या फिर आपको वैसी जॉब नहीं मिली आपके हस्बैंड या पार्टनर जैसी, लेकिन यू गाइज आर लिविंग टुगेदर। डू यू थिंक इट इज फेयर टू शेयर द रेंट ऑफ योर अपार्टमेंट 50-50, विच माइट बी से $2,000 a month? ठीक है, तो आपका हस्बैंड जो है या आपका पार्टनर $10,000 कमा रहा है, वो भी $1,000 दे रहा है, आप जो उससे आधे पैसे कमा रहे हो आप भी हज़ार दे रहे हो। डू यू थिंक दैट इज़ फेयर, और डू यू थिंक इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ व्हाट यू आर मेकिंग? जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम थिंग, इमेजिन वन पर्सन मेकिंग ओनली $40,000 अ ईयर एंड द अदर पर्सन मेकिंग 150, शुड दे ऑटोमेटिकली स्पेंड और स्प्लिट अ $3,000 चेक और $3,000 रेंट 50-50? इन माई ओपिनियन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, ठीक है, बिकॉज फेयरनेस इज इन ऑलवेज अबाउट डिवाइडिंग द बिल इक्वली। समटाइम्स फेयरनेस मीन्स कंसिडरिंग द रियलिटी ऑफ बोथ पीपल, एंड दिस गेट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन डेटिंग बिकम्स एक्चुअली सीरियस। अगर आप कैजुअल डेटिंग कर रहे हो चलो फिर तो ठीक है, देन वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट दिस, बट इफ यू आर डेटिंग सीरियसली इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर प्लानिंग ऑन गेटिंग मैरिड एंड थिंग्स लाइक दैट, दीज थिंग्स रियली कम इन टू द पिक्चर। अभी रिसेंटली पता क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है, उसका ना रिसेंटली एक डिवोर्स चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट विद हर हस्बैंड, लेकिन व्हेन दे वर मैरिड टुगेदर तो उन्होंने अपने में ये अरेंजमेंट डिसाइड कर लिया था कि The husband is going to save all his money, जो भी उसकी paycheck आती थी वो अपने सारे पैसे जमा करके 401k में डालेगा, ठीक है, और द वाइफ इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द बिल्स, क्योंकि वाइफ की इनकम में से सारे हम बिल्स वगैरह पे करेंगे. तो उसमें हुआ ये कि 8-10 साल बाद जब यू नो व्हेन इट टाइम टू केम फॉर द डिवोर्स, व्हेन इट वाज टाइम फॉर द डिवोर्स एंड यू नो नाउ वी आर स्प्लिटिंग एसेट्स, द हस्बैंड इज लाइक भाई ये मेरे पैसे हैं, मैंने 401k में डाले हैं तो मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दे रहा. वाइफ कह रही है मैं तो पैसे जमा ही नहीं कर पाई अपने लिए, अब हम लोग अलग हो रहे हैं, आई हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस किड एंड बट नाउ आई हैव लाइक नो मनी बिकॉज आई यूज ऑल माई मनी इन बिल्स. तो आपको क्या लगता है, डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट इज फेयर? तो ये सारी चीज़ें सोचना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर लुकिंग एट रिलेशनशिप्स फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव.

0: क्योंकि देखो भाई, रियलिटी तो यही है, जब हम रिलेशनशिप में आते हैं या फिर हम प्यार में पड़ते हैं और यू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, हम ये यही चीज़ बोलते हैं, ये आपने बहुत बार सुना है, व्हाट्स योर्स इज व्हाट्स माइन, वी आर बिल्डिंग समथिंग टुगेदर. क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं या फिर व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ न्यू मैरिज, यू नेवर थिंक अबाउट स्प्लिटिंग अप, राइट? लेकिन कई बार हमें इस चीज़ की पॉसिबिलिटी लेके भी चलनी पड़ती है कि भाई स्प्लिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, आपके कंट्रोल में नहीं है ये सब. मतलब यस, यू कैन डू योर बेस्ट टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप, दैट इज योर कंट्रोल. यू कैन डू योर बेस्ट टू मेंटेन एंड लिसन टू योर पार्टनर एंड मेक श्योर योर पार्टनर इज हर्ड, और एक दूसरे को आप ध्यान रख सकते हो. लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, थिंग्स हैपन ऑल द टाइम. ओके, नीदर फिलोसफी इज एक्चुअली राइट. कपल्स नीड टू एक्चुअली डिस्कस इट बिकॉज रिजेंटमेंट लव्स अजम्पशंस. हम ये अज्यूम करके चलते हैं. तो जैसे मेरी फ्रेंड कहा, उसने थोड़ी ना अज्यूम किया था कि उनका डिवोर्स हो जाएगा 10 साल बाद एंड देन शील बी लेफ्ट विद अ 4-year-old किड, नो सेविंग्स, नो मनी ऑफ हर ओन, एंड नाउ शी इज फाइलिंग, यू नो, फाइटिंग अ कस्टडी बैटल फॉर हाफ स्प्लिट ऑफ दैट 401k जो उसके हस्बैंड ने जोड़ा है. उसने तो नहीं सोचा था शादी करते टाइम, राइट? बट वन पर्सन अज्यूम्स कि अच्छा, हम अभी सब स्प्लिट करेंगे. दूसरा अज्यूम करता है, नहीं यार, माई पार्टनर इज गोना पे फॉर इट बिकॉज दे मेक मोर एंड नोबडी टॉक्स. जब आप डेट पे होते हैं, बिल आता है फाइनली, एंड देन दैट ऑकवर्ड, नहीं, लेट मी पे, लेट मी गिव यू हाफ और वट एवर, एंड देन सडनली यू आर फाइटिंग अबाउट ए रेस्टोरेंट एपेटाइजर. यू डोंट इवन नो, लाइक, हमें ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी, ये वाला एपेटाइजर वो सो एक्सपेंसिव, यू नो, इस तरह से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी, एंड यू आर फाइटिंग अबाउट दीज एक्सपेक्टेशंस विच वर नॉट इवन क्लियर इन द फर्स्ट प्लेस. ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी सी और, लेकिन थोड़ा सा अलग से हटके टॉपिक. गाइस, कल मैंने अल्फा देखी नेटफ्लिक्स पे, फाइनली अल्फा रिलीज हो गई है, एंड फॉर अ चेंज देर वॉज नो लव स्टोरी इन दैट. इट वॉज काइंड ऑफ लाइक, इन माई ओपिनियन, अल्फा वॉज काइंड ऑफ लाइक ब्लैक विडो. इट वॉज लाइक अ मार्वल मूवी, दो तीन मार्वल मूवीज की जो स्टोरीज है वो सारी मिक्स करके अल्फा बनाई है. एक ब्लैक विडो का थोड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें दो बहनें हैं, यू नो, वो एक दूसरे को जानती नहीं है या बिछड़ गए हैं, जो भी है, दे आर सुपर सीक्रेट स्पाइज. देन देर इज, यू नो, रैंडमली वी हैव ऋतिक रोशन अपियरेंस, हु इज ट्राइंग टू बी डॉक्टर स्ट्रेंज, दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, आई फाउंड इट स्टिल रिफ्रेशिंग. लेकिन कुछ चीज़ें, आई डोंट नो, आई फील लाइक द एक्शन सीक्वेंसेज वर रियली बिलीवेबल, आई हैव टू से दैट. सो कूडोज टू ऑल द एक्टर्स हु वर इन दैट मूवी फॉर द एक्शन सीक्वेंसेज.
1: Do you mind taking me for a spin around it?

तो व्हाट हैपेंस व्हेन वन पर्सन मेक्स मोर देन द अदर. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इनकम डिफरेंसेस. ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि व्हाट हैपेंस व्हेन द गर्ल मेक्स मोर मनी देन द गाय. नॉर्मली क्या होता है, ये स्टोरी कुछ नई नहीं है, ये आपने हर जगह पे सुनी है. व्हाट इफ योर वाइफ मेक्स मोर मनी देन यू, या फिर आपके हस्बैंड, मतलब जो भी है, बात तो एक ही, हस्बैंड आपसे कम पैसे कमा रहे हैं या वाइफ आपसे ज़्यादा पैसे कमा रही है. ऐसी वाली सिचुएशंस पहले के ज़माने में कम होती थी, लेकिन आजकल के ज़माने में काफ़ी हो रही हैं ऐसी. ठीक है, डू ईगोज कम इन टू प्ले. मैंने बहुत लड़कों को देखा है, स्पेशली बिकॉज इंडियन मैन कम फ्रॉम अ पेट्रियार्कल बैकग्राउंड, और हमें हमेशा दिखाया जाता है, यू नो, इंडियन मैन, देर आर ऑफकोर्स लॉट ऑफ एक्सेप्शंस एज वेल. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे नहीं है, अभी मॉडर्न टाइम्स में काफ़ी कुछ चेंज भी हो रहा है, बट देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ मैन हु डोंट लाइक अगर उनकी वाइफ उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती हैं. दे फील द ईगो. What if he makes significantly more money than she does? That is very, very common, by the way. That happens all the time. And I think that is actually a much more easier situation, because traditionally ye hota hai, people are more accepting towards it. So that's pretty normal, right? Does the higher earner become responsible for more automatically? Kyunki wo higher earner hai. Should they? Now here's where the gender expectations can be very clear. ठीक है, मतलब जेंडर एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं कि नहीं, आप हस्बैंड है, अगर हम ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल सोसाइटी देखते हैं, तो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज भी अगर देखते हैं, उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि हस्बैंड, द मैन ऑलवेज पेज, द मैन ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ इट. ठीक है, द मैन शुड ऑलवेज पे. अदर्स से दैट एब्सोल्युटली नॉट. सम वुमेन लाइक टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड ऑनेस्टली आई एम वन ऑफ दोज. ओके, आई डोंट लाइक पीपल टेक paying for me all the time, and that's simply because, you know, I have been independent all my life, and that's how I prefer it as well. And then there are people who say that I don't care how much you make, I care about how you think about money. Now that's a very, very important discussion, because somebody doesn't necessarily need to make a lot of money to become financially responsible. Agar aap mahine ke sirf $2,000 kama rahe ho, usme bhi bahut log savings karte hain, by the way. Hame lagta hai ki $2,000 bahut kam paise hain. I mean, it's hardly any money. You can barely pay rent, you know, barely afford a one bedroom apartment. But you know what? People have done it, okay? Someone earning $50,000 who saves budgets and lives within their means may be financially more healthier than someone who's earning $200,000 but actually spends $210,000. And this is a yearly thing, by the way. Okay? So, ye wala agar aapko vishwas nahi ho raha hai, I would definitely advise you to go see that Money for Couples wala podcast. Because Ramit Sethi ka, jo main aapko bata rahi thi, there was one episode where he interviewed like this couple, and they are a very, very high income earning couple. So between the two of them together, they brought home $250,000 a year, which is a lot of money. Okay, and usme bhi they were massively under debt, and I don't mean like mortgage wala debt, but I mean like hundreds and thousands of dollars of credit card debt, because they kept doing things thinking that, oh, we make a lot of money, but why are we still going paycheck to paycheck? Why are we still living like that? तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होती है. तो हम थोड़ी सी बातें और करेंगे इस बारे में, लेकिन हमारे पास सिर्फ 10 मिनट ही हैं आज के शो के लिए. तो आप ये गाना सुनिए, एंड देन वी विल फिनिश दिस डिस्कशन विथ व्हाटएवर आई हैव टू से, एंड देन टुमारो वी शैल पिक इट अप.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
3: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
4: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे. फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट. सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
9: सच में? सब संभाल लेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
11: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
12: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop infotainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500 द जागो टाइम्स कमीशन जागो भी जगाओ भी एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं
6: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: He's got very little time.

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
5: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: baby.
1: Variety is the spice of our station. 104.9 FM.
2: हाँ भाई सेठी।
3: हाँ जी मनी पाजी।
2: पहुंच गए हैं?
3: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, घर तो बड़ा सही है, इत्थे तो पार्टी करनी बनती है।
2: ओ पार्टी दी कसरत तेनू हाले, पार्टी करदा दे है तू।
4: पाजी उस दौरे से करने के बाद एक बार भी यहाँ आए हो?
2: हो गए बहुत साल, हो गए दादी नू मिलन आया सी एक बारी।
3: पाजी तुहाडी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
2: तू लगता है तू पैग लाए होया।
5: तू इधर कर, तू सो जा, आराम कर।
3: नहीं पाजी, एक ही बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती, पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
5: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा,
2: मेरी फ्लाइट है, तू सो जा।
3: पर दादी

Happy music, happy people, only on Fun Asia Radio.

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
2: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनिशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी एशिया रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
3: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: Yeah!

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
3: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो
4: 104.9 FM, फन एशिया रेडियो, फन एशिया रेडियो, प्योर फैक्ट्स देसी।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
1: चार साल बाद तुम्हें मेरी याद आई।
2: आई नीड योर हेल्प प्लीज रॉनी।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना।

0: खुदा करे जिंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करूं और दुआ में तेरा नाम आए।
1: The Heartbeat of Dallas, Fun Issue Radio, 104.9 FM.

0: काफी हो।
1: मुझसे तो लड़ ले बेटा, दुनिया से कैसे लड़ोगे? आप ही दुनिया हो
0: मेरे लिए, तुम काफी हो।
2: Don't touch that dial. Keep listening.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
3: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
3: ऐसी जगह।
4: अरे झुमका भी मैं भूल गई, जाने जा तेरे लिए।
5: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक कल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
4: अरे

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
2: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

Hashtag Fun Asia. Fun.

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: If you have no health insurance or Passion Health is out of your network, stay connected to affordable primary care with Passion Health Direct. It's only $85 a month. Now, your membership for $85 a month includes primary care visits, follow-up and preventative care, chronic diseases, and medication management. Telehealth also, when appropriate, care coordination plus 20% savings on eligible self-pay labs, imaging, and diagnostic services. You can call or text them at 214-666-6259 or visit PassionHealthPhysicians.com. Passion Health. Our passion, your health, our community. And this program is not health insurance. And there are eligibility restrictions that do apply. But you can be part of this Passion Health Direct for $85.
1: सुनो कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
1: कहाँ?
3: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
4: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
5: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
6: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
8: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
7: Fikar not. We have the perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: Aji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
11: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
10: सच में? सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: जिंदगी

0: पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
3: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years old. To game.

0: Llevo 20 años en este negocio y no van a tener ningún problema.
1: Es que push time, ¿qué tal lo...
2: ¿Y cuánto tiempo se tarda en entregarlos?
0: Una semana.
2: In one week, ready.
3: Take
1: care of yourself, yeah? Okay?
3: Bye-bye. बस एक हफ्ते में, एक हफ्ते में तेरा पासपोर्ट लेके आता हूँ मैं। बस एक हफ्ता संभाल ले तू, उसके बाद सारी दुनिया तेरी, जहाँ जाना है जा।

0: Michael Jackson. Swissair Flight 111 crashed off the coast of Nova Scotia in Canada, killing all 229 on board. Later determined that faulty wires had caused the plane's flammable insulation to catch fire on today's date in 1998. And Bob Mathias died on today's date in 2006 in Fresno, California. The American athlete, the youngest to win a gold medal in the decathlon in Olympic competitions. And on today's date in 2013, 64-year-old Diana Nyan becomes the first person to swim from Cuba to Florida without the use of a shark cage for protection. And those were some stories from the annals of history that happened on today's date, the 2nd of September. And it is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas, PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco, PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
11: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
9: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
11: ना सब और प्राइस
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
12: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है माँ का रिव्यू
9: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026 मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे
13: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए
14: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स
13: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं
14: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स
13: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है
14: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स
13: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338 दैट्स 817-786-3338
15: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
16: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
17: क्या मतलब?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
18: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
17: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
20: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
21: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
22: तुमसे मिलके दिल का है।
20: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
21: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
0: Welcome to this hour of the program, and if you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show on this lovely Wednesday morning. We'll get you caught up. We'll have the world news coming up for you in the half hour segment.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अरे यार, घर मिल गया।
2: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
0: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
2: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी।
0: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: जिंदगी एक रंगमंच है
5: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com। वी नीड टू टॉक।
6: अब क्या हुआ?
5: Nothing, it's not you.
6: Oh no.
5: It's the distance.
6: Distance? We live 10 minutes apart.
5: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
7: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos.

0: This part of our show, ladies and gentlemen, is proudly brought to you by AG FinTax. It's one of the fastest growing tax and accounting firms here in the United States. So whether you're an individual, a startup, or you already have an established business, AG FinTax offers innovative financial solutions that are actually tailored to your needs. From bookkeeping, payroll accounting, and bank and credit card reconciliation to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services, they help keep your finances organized, compliant, and future ready. Trusted, efficient, and committed to your success. AG FinTax, your partner in building a stronger financial future. Let me give you a number the way you can call them. 469-942-9888. 469-942-9888. Or you can also visit their website, which is agfintax.com. Call them and get further details, more information, and make an appointment. AG FinTax, FinTax, AG FinTax. Dot com. Let's round off this hour of the program, and then I have the final hour of our show today coming up for you. And we have lots of information. I'll have the world news at the half hour segment. We have a giveaway coming up for you and plenty more, of course, with all the music you want to listen to right here on the airwaves of the FunAsia Network. It is 9 o'clock.
1: This is the FunAsia Network. You are listening to FunAsia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by FunAsia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: FunAsia 104.9 FM. Turn up the volume!
0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
6: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
7: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
8: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641।
9: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
10: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
9: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
10: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
11: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
12: सुनो सुनो सुनो
13: सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
14: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
15: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
16: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर।
17: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
16: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
17: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
15: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
18: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं, और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 214-869-2668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।
0: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show this morning. It is Wednesday, the 2nd of September. Looks like we are touching 100 degrees again today. And we've already had 38 triple digit temperature days and 48 days with no measurable rain here in the DFW area. Tropical storm Edouard, or whatever is left of it, trying to move towards us, but very, very slow. And I don't know when it will or if it will. Maybe tomorrow a quick pop-up shower here or there, but nothing confirmed. It's moving very slow, about 5 miles per hour. But hopefully our temperatures will be in the 90s for the next couple of days. But we will touch 100 today.

0: Thank you very much for making me a part of your morning every day and making the Fun Asia Network a part of your daily lives. We love you all and we do the best we can to get the best programming to you.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration, Tanmay Jewelers in Irving.
3: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: Floors clean.
4: Check.
2: Windows clean.
4: Check.
2: Kitchen clean.
4: Check.
2: Air ducts clean.
4: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
5: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
6: हेलो वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
7: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
6: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
3: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
8: Documents या parcel भेजनी है?
9: हाँ.
8: घर relocate करनी है?
9: हाँ.
8: गाड़ी भी transport करना है?
9: हाँ भाई हाँ.
8: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर.
5: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide. हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
2: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज़ फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू, एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। फिएस्टा वेजी, पोयो लोको, सनो कैमरॉन, डिफरेंट नेम्स, क्रेजी फ्लेवर्स। वंस यू ट्राई these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 shows True Payment presents Sonu Nigam live in Dallas.
12: तुमसे मिलके दिल का है।
11: Saturday, September 26th, 8:30 PM onwards at the Credit Union of Texas Event Center, Allen.
3: Tickets available at Ticketmaster. For more info, call 855-360-SHOWS. Exclusive media partner, Fun Asia Network.

0: That, ladies and gentlemen, is my show for today, and I do hope you enjoyed it as much as I love bringing it to you every day from 7 to 10 right here on the Fun Asia Network. Me Too coming on next. Continue listening to her beautiful show right at 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
7: जिंदगी एक रंगमंच है
8: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
10: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
11: We need to talk.
12: अब क्या हुआ?
11: Nothing. It's not you.
12: Oh no.
11: It's the distance.
12: Distance? We live 10 minutes apart.
11: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
10: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: It's Hoko.
3: अरे बस भी करो यार.
2: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
3: नाम Hoko हो या Hocho क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
4: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग फन एशिया रेडियो.

0: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
1: That's correct. It is the most popular South Asian frequency that you are on. And thank you very much for tuning into Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. Ye hai Gapshap Gali with me too. Aur show shuru karo uske pehle, ji haan, dil se ek bahut vadda wala jo hai. Thank you. I do want to extend to Shabnam ji for doing an amazing, amazing morning drive time show for all of us, Monday to Friday. 7 से लेकर 10 बजे तक. और उसके बाद आती है मेरी बारी और मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं आपको पूरी तरह से एंटरटेन्ड एंड यू नो कुछ बातों की गलियों में लेकर जाऊं, आपको कुछ म्यूजिक आपके पसंद का सुनवाऊं, कुछ अपनी पसंद का लगाऊं और कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊं जो आपको भी मजा आए सुनने में और मुझे भी बात करने में. एंड ऑल ऑफ दैट राइट हियर ऑन गपशप गली विद मी टू. और आखिरी सेगमेंट में कुछ ताज़ा और नई खबरों के साथ वी विल वाइंड अप एट 12:30. नाउ दैट बीइंग सेड, घड़ी मिला लीजिए, इट इज 15 मिनट्स पास 10 बाय द स्टूडियो क्लॉक. आज की तारीख 2nd of September, लेडीज एंड जेंटलमैन, द मिड वीक डे दैट वी आर ऑन, वी गोना मेक श्योर दैट यू गेट ऑल द एनर्जी टू कैरी ऑन विद दिस डे विद लॉट ऑफ मर्थ एंड एनर्जी.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
3: लिया.
2: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
3: नहीं आया.
2: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
4: Visit www.senadainc.com today.
5: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
6: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
5: कैसे?
6: पेज 3 ईटरी?
5: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
6: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
5: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
7: पेज 3 ईटरी. ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं.
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
5: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो.
11: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
16: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
17: Tracks that put you on the right track.

ये खूबसूरत सा गाना कहीं कहीं तो खो गया बिकॉज द फिल्म डिडंट डू एज वेल एंड दैट सितारों सितारे ज़मीं पर. एंड आई रिमेम्बर आमिर खान रिलीज इट डायरेक्टली ऑन यूट्यूब. आई एम नॉट श्योर इफ इट वर्कड फॉर हिम बट दैट इज समथिंग दैट ही डिड डिफरेंट. ही डिडंट रिलीज इट ऑन एनी OTT प्लेटफॉर्म. ही डायरेक्टली रिलीज इट टू ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म. एंड आई नीड टू गो बैक एंड चेक एक्चुअली कि वो काम किया कि नहीं उनके लिए. एंड डिड इट मेक वे फॉर द अदर फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स. ये एक दिन किसी दिन और कॉन्वर्सेशन इसके बारे में. लेकिन फिलहाल जो कॉन्वर्सेशन मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ इट इज़ टू डू विथ लेडीज एंड जेंटलमैन ड्रीम होम मोर्टगेज, जहाँ पर आपको आपके मोर्टगेज रिलेटेड, घर से रिलेटेड मोर्टगेज सॉल्यूशंस आपके लिए पर्सनलाइज खुद हुसैन पंजवानी एंड उनकी टीम आपके लिए तैयार करती है. एंड दे हैव बीन अराउंड सिंस 1998 और हर बार याद दिलाती हूँ कि ये अपने आप में कमाल का एक एक्सपीरियंस का एक जो भंडार लेकर आते हैं ड्रीम होम मोर्टगेज. दैट इज फॉर मी द एंडोर्समेंट टू गो एंड गेट देयर सर्विस. एंड देयरफॉर वी वांट टू सजेस्ट इट टू यू. अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यू नो एनीथिंग, योर अपग्रेडिंग, योर रीफाइनेंसिंग, एनीथिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, you can start your journey very confidently with Dream Home Mortgage. DreamHomeMortgage.com is the website. And do remember the number to call them is 972-245-5626 is that number. And always remember कि भाई मंडे को 10:30 बजे हुसैन साहब खुद आते हैं ऑन एयर और आपके लिए मोर्टगेज मार्केट से बहुत सारी टिप्स एंड एडवाइसेस जो लेकर आते हैं एंड इन एब्सोल्यूट लेमेंस लैंग्वेज दैट ही ट्राइज टू एक्सप्लेन इट टू अस. बहुत कुछ सीख रही हूँ मैं उनसे और आगे भी हमारी ये कॉन्वर्सेशंस हर मंडे को 10:30 बजे राइट हियर ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM दैट यू कैन गेट.

कुछ हटके लाने की जो कोशिश होती है मेरी इस सेगमेंट में. होपफुली यू एंजॉय दैट गाना लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड इफ यू डिड डू रिमेंबर जिया जैसे, दैट्स द टाइटल ऑफ द ट्रैक. और गाने में जो आवाजें थी राघव कौशिक और निकिता गांधी की, होपफुली you will remember that if you enjoyed the music, because don't put that on onus on me, all right? क्योंकि मैं तो भाई एक नंबर की भुलक्कड़ हूँ, मुझे जाना जाता है as a very forgetful person. तो जी हाँ, मुझे भी ये गाना बहुत पसंद आया. अब याद रहना चाहिए मुझे, अब इसीलिए आप ही की मदद चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो शो होता है ना, ये आप लोगों के साथ मिल के बांटते हैं हम responsibilities. और इसीलिए तो जिंदगी अनप्लग्ड सेगमेंट में, जहाँ पर मैं कुछ आपसे और मुझसे जुड़ी बातें हम शेयर करते हैं, मतलब देसी कम्युनिटी से जुड़ी बातें हम शेयर करते हैं आपके साथ, कॉन्वर्सेशन हम पिकअप करते हैं आपके साथ, कि अगर आपको कुछ भी उसमें ऐड करना हो ना, यू आर मोर देन वेलकम टू गिव मी अ कॉल एट 972-235-5555. एंड दैट जिंदगी अनप्लग्ड सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ यू बिटवीन 11 to 12. और आज के दिन यानी कि मिड वीक वेंसडे के दिन हम कुछ नॉस्टैल्जिया लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, कुछ आगे पीछे की बातें, कुछ आज की बातें, कुछ मिली जुली बातें जो हम लेकर आते हैं. सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू गपशप गली विद मी टू राइट हियर ऑन फनेशियल रेडियो 104.9 FM. मौसम का कुछ हालचाल बताने वाली हूँ थोड़ी ही देर में, स्टे ट्यून्ड एज आई सेड.

0: ये द वायरल फीवर टीवीएफ का जो ये कोटा फैक्ट्री था ना, उसी का ये गाना आपने सुना. आई थॉट आई विल ब्रिंग दिस फॉर ऑल ऑफ यू. व्हाट एन अमेजिंग सीरीज दैट वाज. वंस अगेन यू आर लिसनिंग टू एवरीथिंग दैट इज डिफरेंट इन दिस सेगमेंट. और पंकज, आपका जो गाना है मैं वो जरूर लगाऊंगी, बट 11 o'clock के बाद. एंड दैट इज द वे आई होल्ड ऑन टू माई लिसनर्स कि भाई कहीं चले ना जाए, पकड़ के रखो इनको. नो, बट द रियल रीजन इज कि आपने जो नॉस्टैल्जिक गाना दिया ना, वो मेरे नॉस्टैल्जिया सेगमेंट में बिल्कुल फिट बैठेगा, नंबर वन. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि आपका गाना पूरा प्ले हो सके. इतना ही टाइम है कि मैं अभी आपके साथ ना वेदर अपडेट शेयर कर सकूं. तो इसीलिए सीधे वेदर अपडेट के तरफ जाते हैं, और उसके बाद अगले सेगमेंट में वी डू हैव द सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म्स दैट रिलीज्ड ऑन दिस डे 2nd of September, और उसके बाद 11 से 12 के बीच दैट नॉस्टैल्जिया सेगमेंट दैट आई ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द सेगमेंट दैट आई कॉल्ड जिंदगी अनप्लग्ड. फिलहाल ट्रॉपिकल डिप्रेशन एडवर्ड के बारे में बात करना चाहूंगी, विच इज पुशिंग टूवर्ड्स नॉर्थ टेक्सस. हैवी रेन आप के फोरकास्ट में है फॉर लोकेशन साउथ ईस्ट ऑफ DFW. दैट वुड मीन एथेंस, पैलेस्टीन एंड फेयरफील्ड. और ये थर्सडे के दोपहर तक, यानी कि कल दोपहर तक आपके लिए 1 PM अराउंड कि ये बारिश हो सकती है. एंड इट्स पॉसिबल 2 to 5 inches ऑफ रेन दैट कुड फॉल इन दोज एरियाज. मीनवाइल द चांस ऑफ रेन इन DFW विल बी मच लोअर. और क्या ही बताऊं, टेम्परेचर आज 90s, अपर 90s, विच विल फील लाइक बिटवीन 100 to 104 फॉर ऑल ऑफ अस.
1: ये तारा वो तारा हर तारा.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
5: अजी सुनते हो?
6: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
7: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस. एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
12: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
13: तुमसे मिलके दिल का है.
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM onwards at the Credit Union of Texas Event Center, Allen.
12: Tickets available at Ticketmaster. For more info, call 855-360-SHOWS. Exclusive media partner, Fun Asia Network.

नाउ दैट्स द मूवी कॉल्ड अकीरा, और अकीरा का आप ये गाना सुन रहे थे. आई रियली एंजॉयड दैट सॉन्ग व्हेन आई हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. हैवंट वॉच द मूवी, डोंट हैव एनी ओपिनियंस अबाउट द मूवी. बट आई गैदर इट वॉज कि ये फिल्म नहीं चल पाई थी एट द बॉक्स ऑफिस. इट वॉज ए सोनाक्षी सिन्हा फिल्म, शी वॉज डूइंग द टिट्यूलर रोल, लेकिन नहीं चल पाई थी. और आजकल यू नो रिव्यूज का नतीजा ये होता है, यू नो क्रिटिक्स एंड ऑडियंसिस रिव्यूज का नतीजा ये होता है कि आप उस पे बेस डिसाइड करते हो कि आप फिल्म देखोगे कि नहीं. तो ये मेरे लिए तो आई कैंसल्ड इट, ऑल्दो आई डू लाइक यू नो सोनाक्षी सिन्हा एंड जो उन्होंने कुछ सीरीज की हैं उनमें उसमें मुझे वो बहुत अच्छी लगी है. सो येस, मूविंग ऑन फ्रॉम दैट बायस, दिस फिल्म डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस. अनदर वन विच डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस, विच ऑल्सो रिलीज्ड ऑन दिस एग्जैक्ट डे September 2nd 2022. I am going to play this next track for all of you. I think the song was pretty good and it picked up, but not the movie starring Akshay Kumar. Film ka naam Kathputli.

0: एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज गपशप गली विद मी टू, और इस सेगमेंट में आपके लिए कुछ ऐसे गाने लेकर आती हूँ फ्रॉम फिल्म्स दैट रिलीज ऑन दिस एग्जैक्ट सेम डे, एंड इट इज सो अमेजिंग फॉर मी टू रियली यू नो थिंक अबाउट दिस वन डे जिसमें कितनी सारी अलग अलग फिल्म्स अलग अलग टाइम पे रिलीज हुई, अलग अलग अपना बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट लेकर आई, और इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि आज का दिन समझ लीजिए 2nd of September 2026 आपकी जिंदगियों में भी कुछ स्पेशल जो होने वाला है, शायद एक साल पहले एग्जैक्टली इसी दिन आपको शायद नहीं पता था कि दिस डे इज गोइंग टू टर्न आउट सो स्पेशल फॉर यू, फॉर दीज एक्टर्स, फॉर दीज फिल्म मेकर्स. डेफिनेटली when the films release on a particular day, they become so very important for them. तो yes, मैं उसी को मध्य नजर रखते हुए ये अगला गाना मैं जो play करना चाहती हूँ, and this movie stars Dimple Kapadia and Rishi Kapoor, ladies and gentlemen. और एक कमाल की बात क्या है कि ये दोनों जो हैं, ये pairing जो है, they have come in very few movies together. Surprisingly enough, yes, Bobby जो पहली बार हमने देखा था जब डिम्पल कपाड़िया को विथ ऋषि कपूर, एंड देन दे केम इन दिस लव ट्राइंगल इन 1985 जो कि सागर थी ये फिल्म, एंड उसके बाद ये एक और फिल्म में जो नजर आए इट वॉज अ प्यार में ट्विस्ट जो आज के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 2005. आई सो वुड हैव लाइक फॉर दिस फिल्म टू वर्क जस्ट फॉर द फैक्ट दैट दीज टू स्टॉलवर्ट्स वर टुगेदर, बट नहीं चल पाई डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे ट्राई टू यू नो evoke the nostalgia through a song like this as well.
1: किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? माने भी दिया?
0: फिल्म का नाम प्यार में ट्विस्ट,

सितंबर 2nd आज के दिन 2005 में ये फिल्म रिलीज हुई थी लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड डिस्पाइट द इमेंस नॉस्टैल्जिक वैल्यू एंड स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बिटवीन द लीड पेयर डिंपल कपाड़िया एंड ऋषि कपूर, ये फिल्म स्ट्रगल करती रही बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि यंगर डेमोग्राफिक जो डोमिनेट करती है थिएटर्स में, ये नहीं देखना चाहती थी इनको एज द लीड पेयर, या यूं कह लीजिए दे वर नॉट इंटरेस्टेड. तो इसीलिए फिल्म फ्लॉप रही बॉक्स ऑफिस पर. आई डोंट नो रियली कैसा रहा इसका, अगर OTT पे आता तो क्या होता, लेकिन ये है कि इस दिन को एक और फिल्म रिलीज हुई थी विच वॉज ए हिट एंड दैट केम ऑल्सो इन सेप्टेम्बर ऑन सेप्टेम्बर 2nd 2005, ए रोमांटिक थ्रिलर स्टारिंग इमरान हाशमी, सोनू सूद, और बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू बॉलीवुड पॉप कल्चर एक्चुअली हैपन बिहाइंड द माइक्रोफोन फॉर दिस फिल्म. फिल्म का नाम है आशिक बनाया आपने. यस ऑफ कोर्स द टाइटल ट्रैक दैट बिकेम अ पॉप कल्चर, हिमेश रेशमिया द हेल्म ऑफ इट.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
6: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
7: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
10: हेलो,
11: मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
10: Fikar not. We have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज. होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
0: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023-2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज़ एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
13: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
14: Tracks that put you on the right track.

wonderful suggestion by Pankaj that this was very specially for the nostalgia segment that I'm going to bring for you in the segment which is called जिंदगी अनप्लग्ड. आप कहोगे कि सेगमेंट के अंदर सेगमेंट का नाम क्या होता है मतलब, तो ये स्पेसिफिकली मैं बताना चाहती हूँ कि आज के दिन कुछ नॉस्टैल्जिया टॉपिक्स जो लेकर आना चाहती हूँ आप लोगों के लिए. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग इन द पास्ट, समथिंग इन द प्रेजेंट, समथिंग इन द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड ऑल ऑफ दैट. सो यस, जिंदगी अनप्लग्ड में आज का दिन जो होता है वेंसडे का दिन, मिड वीक डे जो है हमारा, हम इस नॉस्टैल्जिया को लेकर आगे बढ़ते हैं. तो यस, जिंदगी अनप्लग्ड सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पे कुछ ना रिलेटेबल टॉपिक्स लाने की कोशिश करती हूँ. और ये कोशिश मैं चाहती हूँ कि आपके तरफ से भी आए कि भाई आप अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन मेरी तरफ भेजना चाहते हैं तो ज़रूर, आई वुड बी सो हैप्पी इफ़ यू कुड DM मी. और आई गो बाय RJMeToo एंड दैट्स वेयर यू कैन फाइंड मी ऑन Instagram. इट्स MITHU. आई नीड टू स्पेल दैट नेम क्योंकि अक्सर लोग डबल लगा देते हैं तो तब हो जाती है गड़बड़. सो यस, आज ये मीठू कर ये जो हैंडल है मेरा ढूंढें और मुझे DM करें विद द टॉपिक्स दैट यू वुड वांट मी टू डिस्कस ऑन जिंदगी अनप्लग्ड सेगमेंट. फिलहाल जो डिस्कस करना चाहती हूँ इट इज टू डू विद हाउ यू कैन एक्चुअली रिड्यूस टैक्स लीकेज, बिल्ड क्लीन फाइनेंशियल्स, कंट्रोल योर कैश. और इनके लिए, इन सभी सर्विसेज के लिए आपके पास एक सीधा सा नाम है एंड दैट्स AG FinTax. इज पार्ट ऑफ माय शो इज ब्रॉट टू यू बाय AG FinTax, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द US. और अगर आपका इस्टेब्लिश बिजनेस हो या स्टार्टअप हो या आप अकेले अपना कुछ जो चाहते हो कि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस आपको मिले तो इनके पास वो सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं हैं कि दे विल बी एबल टू हेल्प यू. एंड व्हेन आई से सुविधाएं, दे हैव द नो हाउ ऑफ इट एंड इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस टू गो विथ इट, फ्रॉम बुक कीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकॉन्सिलेशंस, टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज. दे हेल्प कीप योर फाइनेंसिस एब्सोल्यूटली ऑर्गेनाइज एंड एब्सोल्यूटली फ्यूचर रेडी. लेडीज एंड जेंटलमैन, AG FinTax के साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें एंड इट इज़ योर पार्टनर इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर. 4699429888, that's the number to call. agfintax.com is the website. Nostalgia ground pe jo hum hain, is gaane ke saath shuruaat karu aur baat kare right after this. This is Gapshap Gali with me too.

लिसन, वक्त के साथ हमारी ना देसी कम्युनिटी में बहुत सी चीज़ों के बारे में ओपिनियंस, अप्रोच और पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल गए हैं. फ्रॉम द मैसिव एवोल्यूशन इन द देसी ग्रोसरी एंड फूड वर्ल्ड. मतलब आप सोचें कि एक ज़माना था जब सूटकेस में हम बड़े सारे मसाले लेकर आया करते थे घर से, वो पिकल्स लेकर आया करते थे घर से, लेकिन अब तो हर नेबरहुड में अपने आप में बड़े बड़े देसी सुपर मार्केट्स खुल गए हैं कि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. अब कुछ लोग अभी भी लाते हैं जो घर का बना लाना चाहते हैं, यू नो, घर में पिसा हुआ या बिल्कुल वो एक नॉस्टैल्जिया और वो टेस्ट जो यहाँ पे वो चाहते हैं. वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर जरूरत और बियॉन्ड दैट आल्सो हमें हर देसी चीज मिल जाता है हमें. इनफैक्ट हमारे मेन स्ट्रीम अमेरिकन स्टोर्स में भी अब ऑर्गेनिक घी और यार फ्रोजन पराठे एंड वॉट नॉट, कॉस्को में गोलगप्पे, घी, सभी कुछ तो मिलता है यार आजकल. देर इज नथिंग दैट यू डोंट गेट, चाहे वो देसी ग्रोसरी की बात हो या फिर बात हो द कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन दैट वी हैव हैड. वो 90s में हम वो जो महंगे ISD कॉलिंग कार्ड्स हम लेकर 5 मिनट का कॉल और उस 5 मिनट में जिंदगी भर के हम बात बोल देते थे, और वर्सेस टुडे कि जब हम एक व्हाट्सएप कॉल अवे हैं to talk to our families back home, to see them while we are talking to them, our families back home, to see them while we are talking to them. You know, ये एक aspect हुआ कि बहुत सारी changes जो हमने देखी हैं, बहुत सारा बदलाव आया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी आदतें हैं हमारी जिनमें बिल्कुल चेंज नहीं आया है. जैसे कि एक जो है हमारा वो जो परमानेंट अंकल आंटी बोलने का प्रोटोकॉल, कि आपसे उम्र में कोई आपको नेबरहुड में आपके देसी मिल जाए या फिर जान पहचान में, वो ऑटोमेटिकली आपके आंटी और अंकल बन जाते हैं. मतलब आप कभी फर्स्ट नेम बेसिस पे यू नो उनको बुला ही नहीं सकते हो. दैट इज़ अगेंस्ट आवर कल्चर यार. मतलब हमारे जो हमें सिखाया गया है, हम वो इनग्रीनड है हमारे में कि कोई भी अगर बड़े अगर कमरे में घुसे हों और आप उनसे पहली बार मिल रहे हो तो आप उठ के खड़े हो जाते हो. ऑल दीज थिंग्स इट इज़ जस्ट इनग्रीनड इन आर DNA एंड इट्स ब्यूटिफुल, डोंट वी एग्री टू दैट. इसके अलावा वॉट इज़ नॉट ब्यूटिफुल दैट वी स्टिल कंटिन्यू टू डू, मैनी ऑफ अस, नॉट एवरीबॉडी ऑफकोर्स, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर जो है ना, कि इतने दूर हम अपने कंट्री से बैठे हुए हैं, लेकिन वो वाला फैक्टर ना अभी भी कई लोगों में बिल्कुल एम्बेडेड है यार. कि मतलब आज भी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने से पहले सबकॉन्शियसली ये टेंशन जरूर होता है कि जब अगली वीकेंड पे जो मिलना होगा वो अगर कुछ कमेंट कर दें इस चीज पे, लोग क्या कहेंगे हमारे इस चीज पे या उस चीज पे. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी स्टिल कीप थिंकिंग अबाउट कि भाई लोग क्या कहेंगे. लेकिन आज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द ब्यूटिफुल मिडिल ग्राउंड ऑफ आर कल्चरल शिफ्ट. आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त हमारी आँखों के सामने इवॉल्व हो रही हैं, रीडिफाइनिंग वॉट इट मीन्स टू बी ए मॉडर्न देसी. दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. आर यू विथ मी? 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो.

0: शिमारू के नए
1: एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गपशप गली विथ मी टू। और इस गली जो हमने ये जो गली पकड़ी है ना, इट इज अबाउट ऑल दोज इवॉल्विंग चेंजेस दैट वी आर सो पार्ट ऑफ। और हम एक तरह से जो रीडिफाइन कर रहे हैं कि मॉडर्न देसी क्या होते हैं, इन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड इन अ वेरी राइट मैनर दैट वी आर डूइंग। इसी के बारे में कुछ बातचीत हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में बिल्कुल बदलाव आ चुका है।

कम्प्लीटली चेंज जो एक सिनारियो है, चाहे वो मैंने जैसे कहा ना ग्रोसरी रिलेटेड हो या कम्युनिकेशन रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें एकदम चेंज हो गई हैं. और वहाँ पर एक जो है चीज़ें जो बिल्कुल नहीं चेंज हुई हैं और चेंज होती नज़र भी नहीं आ रही हैं कहीं दूर दूर तक, वहाँ पर ये जो एक मिडिल ग्राउंड मैंने पकड़ा है ना, इट इज़ अबाउट द इवॉल्विंग चेंजेस एंड हाउ देसी कम्युनिटी मोर एंड मोर इज़ एम्ब्रेसिंग दैट. एंड इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट I'd like to talk about to begin this segment. और ये है वो जो एक करियर मोल्ड था ना, उससे थोड़ा सा हट के जो अब पेरेंट्स सोचने लगे हैं, एक्सेप्ट करने लगे हैं. क्योंकि एक वक्त था जब देसी घरों में ना सिर्फ तीन ही एक्सेप्टेबल करियर्स होते थे, एक डॉक्टर, यू आर राइट, इंजीनियर, राइट, एंड द थर्ड वुड बी अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट कि अगर ये दोनों नहीं बन पाए तो अब क्या ही बने मतलब. And that rigid mold is finally breaking, and we are so proud of ourselves. You should be very proud of yourself. कि अगर आप अपने बच्चों को वो अपने जो भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें उनको encourage कर पा रहे हैं, उनको support कर पा रहे हैं, तो ये कमाल की बात है. वो चाहे you know successful graphic designer की बात हो, chef हो, theatre actor हो, content creator हो, जो भी वो बनना चाहते हैं आप उसमें उनका साथ दे रहे हैं. जी हाँ, ये सारे जो अलग रास्ते हैं वो अभी भी बहुत कठिन है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू एक्सेप्ट. बट देन यू नो इफ़ यू प्रायोरिटाइज योर योर किड्स हैप्पीनेस एंड पैशन बिफोर व्हाट यू वांट देम टू डू, तो ये वाकई में ये एक कमाल की बात है. एंड यू डेफिनेटली डिजर्व अ पैट, एंड ऑनेस्टली इट्स सच ए रिफ्रेशिंग चेंज टू विटनेस. तो उन सभी को जो ऐसा साथ दे रहे हैं उनको सच में kudos to you all. And we are no longer, you know, sort of restricting our definitions of success strictly to heavy medical textbooks or for that matter corporate IT ladders, you know. ज़रूर है ये बात एक सोचने वाली कि आज के दिन में उन पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों को कुछ अलग करने का मौका दिया है, दे बेटर बी फोकस्ड ऑन दैट, क्योंकि वो लाइन उनके लिए बहुत मुश्किल है. अब किसी का मैंने हाल ही सुना कि स्टैंड अप कॉमेडियन जो उन्होंने बना था वो अपनी इंजीनियरिंग को छोड़ के स्टैंड अप कॉमेडियन के रास्ते वो इंडिया में, आई थिंक वन ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडियंस ओनली एंड दैट आई वाज लिसनिंग टू, देर आर सो मेनी हु हैड क्वालिफाइड फ्रॉम IIT, IIM, and they are doing stand-up comedies. The rasta that they have chosen for themselves is extremely difficult, but then you need to understand they have the smarts to know what they are getting into, and you have to just trust them because they want to they want that help from us as parents. So jo kar pa rahe hain unko dil se tehe dil se bahut sari main best wishes और बहुत सारी बधाइयां देना चाहती हूँ. दिस इज अ बिग चेंज दैट पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग.

0: You know, as far as restaurant changes that we are seeing in our community, it is definitely those Indian bowl street food that we have been forever enjoying. अब वो जो modern flair के साथ serve किया जा रहा है ना, उसमें कुछ खास ही बात है. Page 3 Eatery, for instance, वो आपके लिए वो flavorful kebabs और chaat और fusion bites लेकर आते हैं और refreshing mocktails भी आप लोगों के लिए. तो चाहे आप lunch जाओ, lunch जाओ, dinner date पे जाओ या foodie meetup के लिए जाओ, आपको कमाल का flavor बस उनके पास मिलेगा. कुछ हटके, कुछ अलग, कुछ वेरी रिफ्रेशिंग, और साथ में जो एनर्जी एंड द वाइब्रेंट वाइब्स दैट दे हैव एट पेज 3 ईटरी, दैट इज गोइंग टू मेक वांट यू टू गो ओवर एंड ओवर विथ योर फ्रेंड्स. पेज 3 ईटरी एट हब 121, डू रिमेंबर page3eatery.com. एक ब्रेक पे जाने वाले.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
5: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.

0: थेरेपी।
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
0: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
1: ये क्या होता है?
0: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
2: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
1: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
4: लैपटॉप में।
1: इन्वेस्टमेंट?
4: गूगल ड्राइव।
1: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
4: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
1: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
3: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
5: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
3: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Documents ya parcel bhejni hai?
7: हाँ।
1: घर रिलोकेट करनी है?
7: हाँ।
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
7: हाँ भाई हाँ।
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
8: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
9: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
10: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
12: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
11: सच में? सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
13: Tracks that put you on the right track.

दिस इज गपशप गली विथ मी टू लेडीज एंड जेंटलमैन ने एक जो हमारी बातें शुरू हुई हैं इन द जिंदगी अनप्लग सेगमेंट में वही कंटिन्यूड रखने वाली हूँ आप सभी के लिए राइट हियर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेगमेंट जहाँ पर हमने बातचीत शुरू की अबाउट द थिंग्स दैट हैव कम्प्लीटली चेंज बी इट द वे वी यूज टू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम इंडिया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तब अवेलेबल नहीं थी तो हम बहुत सारी मसाले हो या इवन यूटेंसिल्स वी यूज टू ब्रिंग फ्रॉम इंडिया लेकिन अब एक चीज़ ऐसी नहीं है जो यहां नहीं मिलती है वैसे कम्युनिकेशन हैज कंप्लीटली चेंज तो कितने सारे बड़े ही बढ़िया चेंजेस हमने देखे हैं जो बिल्कुल हो चुके हैं बिल्कुल डन एंड डस्टेड विथ एंड वी आर गुड विथ द न्यू वेज एंड द न्यू ट्रेंड्स ऑफ इट राइट और वैसे ही कुछ चीजें हैं हमारे देसी कम्युनिटी के लिए जो कभी नहीं बदलेंगे वो हमारे हमसे बुजुर्ग जो हैं उनको आंटी एंड अंकल कहना या यू नो लोग क्या कहेंगे वो माइंडसेट रखना कई लोगों का वो चीजें मुझे लगता है कि आई होप इट चेंजेस बट या आई मीन लोग क्या कहेंगे ये फैक्टर पता नहीं मुझे नियर फ्यूचर में तो चेंज होता हुआ नहीं देख रहा है कई जो सोचते हैं वैसे ही सोचते आए हैं सोच रहे हैं एंड होपफुली आगे नहीं सोचें लेकिन दोज आर द थिंग्स आई डोंट सी एनी चेंज इंक्लूडिंग आंटी एंड अंकल फैक्टर दैट प्रोटोकॉल दैट वी हैव राइट इसके अलावा जो चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ द डिस्कशन इज अबाउट द रियल मैजिक विच लाइज राइट हियर इन द मिडल It is that amazing era of cultural upgrade that we all are witnessing together. तो आज का हमारा टॉपिक उन सारी नई चेंजेस के नाम है जो चुपचाप हमारे घरों और दिलों में अपनी एक जगह बना रही हैं. So yes, we are exploring how we are collectively sort of rewriting the ultimate survival guide of the modern desi. तो चलिए एक और बात जो यहाँ पे छेड़ना चाहूँगी it is mental health and boundaries and beautiful changes that we are seeing here. क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारे देसी कम्युनिटी के अंदर mental health को लेकर बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़रूरी चेंजेस आए हैं एक कपल ऑफ डेकेड्स अगो अगर आप सोचो कि अगर कोई डिप्रेस या एंशियस अगर फील कर रहा हो तो उसे या तो कह दिया जाएगा कि यार इसमें तो विल पावर ही नहीं है डिसमिस कर दिया जाएगा या तो नज़र लग गई है वो वाली बातें भी होती हैं और कई लोग तो अगर मेडिकल काउंसलिंग अगर लेना भी चाहें तो उन्हें सोसाइटी टैग दे देती है कुछ या कुछ एक टैबू दे देगी या तो जो उस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं वो किसी और से शेयर नहीं करते हैं कि लेस्ट यू नो दे आर लुक्ड अपॉन डिफरेंटली ये सारी चीजें आज बदल रही हैं आज की जेनरेशन जो है थेरेपी और इमोशनल वेलबींग के बारे में अपने डिनर टेबल्स पर खुलकर बात कर रही है एंड आई एब्सोल्यूटली लव दैट ट्रांसपेरेंसी वी आर फाइनली अंडरस्टैंडिंग दैट टेकिंग केयर ऑफ आर माइंड्स इज जस्ट एज क्रिटिकल एज मेंटेनिंग आर फिजिकल हेल्थ है कि नहीं ओवरबेयरिंग रिलेटिव्स के साथ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना अब डिसरिस्पेक्ट नहीं कहलाता बल्कि एसेंशियल सेल्फ केयर समझा जाता है इट इज़ अ स्लो एंड समटाइम्स यू नो मेसी ट्रांजिशन दैट नोबडी कैन डिनाई बट अनलर्निंग टॉक्सिक जेनरेशनल हैबिट्स इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट थिंग्स आर कम्युनिटी इज डूइंग राइट नाउ एंड कूडोस टू दैट यार वेल डन पीपल कमाल है यार हम और हमारी ये जेनरेशन जो इतना इतने अच्छे से इवॉल्व हो रही है इस एवोल्यूशन के बारे में ही बात हो रही है जो हम अपने देसी कम्युनिटी में देख रहे हैं एंड This is Gapshap Gali that will continue with some more points that I'd like to bring forth for all of you.

एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त है कि हम आपके लिए गिव अवे लेकर आएं, और वो गिव अवे आपके लिए इट कम्स फ्रॉम कुमार सानू अनफॉरगेटेबल 90s टीम, और ये टीम आपके लिए एक टिकट आपको देने वाली है. एंड सबसे पहले तो मैं इंफॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को कि ये जो तारीख है वो याद रखें, सितंबर 11th अनफॉरगेटेबल 90s को अनरैप किया जाएगा विद कुमार सानू, और ये ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो, दैट्स वेयर इट्स गोइंग टू टेक प्लेस. और आप गाएं, मस्त होके इंजॉय करें ये एक्सपीरियंस. वो जो दिल खोल के कॉन्सर्ट में गाने का जो मजा है ना, वो मजा ही कुछ अलग है. और अगर आवाज सामने कुमार सानू की हो तो क्या ही बात है ना. लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल विद फ्री पार्किंग एंड एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस. तो अगर आपको अपने टिकट्स बुक करने हैं तो अभी करने हैं, ज्यादा दिन नहीं रह गए आज. जस्ट अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू, इट इज 2nd of September, वाकई में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं. फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीट्स दैट यू वांट फॉर द प्राइस दैट यू वांट टू पे, eventbrite.com पे जाकर आप अब भी अपने टिकट्स खरीद लें. 214-869-2668 इज द नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप आप लोगों के लिए लेकर आ रही है, और यही आपके लिए एक फ्री टिकट देना आपको जो चाहती है. एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि भाई कुमार सानू से रिलेटेड एक सवाल है, उस सवाल का सही जवाब अगर आप देते हो तो आपको मिलता है एक टिकट टू कुमार सानूज कॉन्सर्ट. आर यू रेडी लेडीज एंड जेंटलमैन? इट्स एन ईजी क्वेश्चन, सो ग्रैब योर फोन एंड क्विकली गिव मी अ कॉल एट 972-235-5555. सारे आंसर्स लेने वाली हूँ और किसी एक को देने वाली हूँ, ठीक है? तो आप कॉल करें और मुझे बताएं कि कुमार सानू ने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, नाम बनाया है, जगह बनाई है, लेकिन वो क्या चीज़ है जिसके लिए उनको ये मिला है, ये रिकॉर्ड क्रिएट किया है उन्होंने. इफ़ यू कैन टेल मी हाउ डिड ही गेट इन टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो आपको ये इनाम मिलेगा, विच इज वन टिकट टू कुमार सानूज कॉन्सर्ट. लेडीज एंड जेंटलमैन, 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर.

एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट इन केस यू वर वंडरिंग कि फीमेल वॉइस कौन सी थी, सपना मुखर्जी की थी और आवाज मेल वॉइस जो थी कुमार सानू की, और उन्हीं का कॉन्सर्ट सितंबर 11th को जो आ रहा है उसके लिए एक टिकट गिव अवे जो है दैट इज गोइंग टू, ड्रम रोल्स प्लीज, इट इज गोइंग टू सुनीता रॉय. एंड थैंक यू हिमांशु, अपनेश, मनदीप, रूपा, सईदा जी, रेमी फॉर आंसरिंग द राइट, you know, question was absolutely right. The answer was absolutely right for you all. So yes, he recorded 28 tracks in 24 hours. और वो साल था 1993 और इसके लिए वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया है. इट एक्चुअली शोज कि उनकी क्या वोकल स्टैमिना है, इनक्रेडिबल वोकल स्टैमिना, और क्या परफेक्शन ही रही होगी कि 28 गाने एक दिन में रिकॉर्ड करना. नाउ दैट्स सम स्किल लेडीज एंड जेंटलमैन. कुमार शानू के लिए ये जो एक फ्री टिकट जो मिल रहा है दैट इज गोइंग टू सुनीता रॉय. कंग्रेचुलेशंस टू यू. समबडी विल गेट इन टच विथ यू. गिव मी अ कॉल बैक सो दैट आई कैन रीकन्फर्म विथ यू. एंड वंस अगेन दैट वन टिकट गिव अवे दैट सुनीता हैज वन, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स फ्रॉम फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुमार शानू अनफॉरगेटेबल 90s में रहने वाली हूँ और ये अगला गाना सुनवाने वाली हूँ. लेकिन उसके पहले जो हम जिस टॉपिक पे थे जिंदगी अनप्लग में, एक मॉडर्न देसी पेरेंटिंग के बारे में जरूर जिक्र करना चाहती हूँ बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी चेंजेस. आर देसी कम्युनिटी हैज गॉन थ्रू सो मेनी चेंजेस जहाँ पे बहुत सारी चीजें हमेशा के लिए बदल गई हैं और कुछ चीजें उस एवोल्यूशन पाथ पे हैं, और वो देखकर और उस चीज को विटनेस करके ना बड़ा अच्छा लगता है कि वी आर दोज मॉडर्न देसीज, वी आर इवॉल्विंग एंड इट्स ब्यूटिफुल टू सी दैट. अगर आप आज एक नए देसी पेरेंटिंग देखना चाहते हैं ना, तो किसी भी घर में जाएं आप और वो देखें कि बच्चों को किस तरह से, किस तरीके से वो डील करते हैं. एंड इट इज एवरी हाउस होल्ड, प्रिटी मच एवरी हाउसहोल्ड, अगर ये सारे हो जाए तो क्या ही बात है. यू नो, गॉन आर द डेज व्हेन एक सिंगल एक स्टर्न लुक एक डैड के तरफ से या मॉम के तरफ से आता था और बच्चे बिल्कुल शांत, चुप, आर्ग्यूमेंट बंद, और जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी बंद, वो सारा ऐसा एनवायरनमेंट होता था. आज जेंटल पेरेंटिंग और इमोशनल वैलिडेशन पर फोकस बहुत स्ट्रांग है, consciously trying to break the cycle of fear-based discipline, you know. Instead of dictating every single life choice, we as parents are actively sitting down and having this open two-way conversations with our kiddos. और ये चीज़ देखना, community intentionally जो एक more emotionally secure और expressive generations को जो raise कर रही है, it's a beautiful sight to behold. So kudos to all those parents who are successfully doing that and who have embraced that beautiful transition. There is one other change that has come about very beautifully in this evolution that Desi community is going through. Iske bare mein agle segment mein baat karun. A little roll over to the next segment. This topic will go into. Bhai, apna show hai. Kar hi sakte hain hum, nahi? Agar baat khatam nahi hui ho to.

Fayaz ke request pe that beautiful song that you indulge yourself in. Actually, I indulge myself in. It never is old for us, right? Ek awaaz hi ek aisi hai inki, Kumar Shanu sahab ki, ki ye kabhi bhi purani nahi hone wali. And kamal ki baat, pata hai, itne saalon ke baad bhi kabhi kisi reality music show mein aap agar aap inko sunte ho, to aaj bhi kamal ke sound cut karte hain. And that is the case with Sonu Nigam. Also, he has spent so many years in the industry. Yet, yaar, inki awaaz to die for. And that concert coming up for you that I'd like to speak about, ladies and gentlemen, Sonu Nigam live in concert for all of us to enjoy on the September, it is the 26th of this month that we are going to witness the legend performing for all of us at the Credit Union of Texas Event Center. It is Sonu Nigam Revolution. आपको अगर इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए ना तो 855-360-SHOWS पे आप जरूर कॉल कीजिएगा. मुझे तो नहीं लगता कि आपको कुछ जानकारी चाहिए होनी चाहिए. भाई सोनू निगम परफॉर्म कर रहे हैं, इससे ज्यादा जानकारी इन इटसेल्फ कुछ है नहीं. ही इज अ कंप्लीट पैकेज वी नो. ही विल बी सिंगिंग ऑल काइंड ऑफ हिज सॉन्ग्स, वो चाहे रोमांटिक हो, पार्टी सॉन्ग हो या मस्ती भरा कोई गाना हो. ही इज सो गुड एट पुलिंग द ऑडियंस इन हिज परफॉर्मेंस, इन टू हिज परफॉर्मेंस, कि वो एक साइट होने वाला है, एक वो एक्सपीरियंस होने वाला है जो आप मिस नहीं कर सकते. इससे ज्यादा मैं तारीफ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि रियली तारीफ की तो जरूरत नहीं है, लेकिन दिल से निकल रही है बात. ticketmaster.com इज द वेबसाइट. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. डू रिमेंबर टू गो टू ticketmaster.com एंड बाय योर tickets right away.

और कह दिया है भाई, अनाउंस कर दिया है 13 इयर्स से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक जो प्राउडली केयर करते आए हैं हमारी कम्युनिटी को, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि एक ब्रांड न्यू नाम और सेकंड इनकी फ्रिस्को लोकेशन जिसका नाम है ल्यूनॉक्सी मेडिकल, जहां पे अंडर वन रूफ यू कैन गेट सो मेनी सर्विसेज टुगेदर एट वन प्लेस. प्राइमरी केयर हो, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन roof, as I said. और सबसे बड़ी बात पता है क्या, they are open 7 days a week, सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक, and I think that is incredible effort from their side to serve our community. तो किसी भी वक्त आप walk-in कर सकते हैं, appointment की कोई ज़रूरत नहीं है. This is ल्यूनॉक्सी Medical in Frisco that I'm talking about, founded by Dr. Mandeep Acharya. And this is a place that you would want to visit when you need these services. So, zarur jaye inki website pe and find out if this is the right place for you. Jis place pe hum hai, the desi community, I feel we are finding that middle ground so beautifully. Kyunki hum apne segment Zindagi Unplugged mein na, we were talking about, you know, the various changes that have happened, jo ho gaya hai, done with. Wo chahe grocery ki baat ho ya communication ki baat ho, ki jo hamare paas ab bahut achhe se available hai, ki hum back home apne logo ke saath connected rehte hain, na सिर्फ आवाज के जरिए लेकिन वीडियोस के जरिए भी, वीडियो कॉल्स के जरिए भी. और वैसे ही देसी आइटम्स की अगर बात की जाए, हमें सब कुछ मिलता है यहाँ पे. दैट्स अ ब्यूटिफुल चेंज दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड देर आर सर्टन अदर चेंजेस जो कभी नहीं हो सकते. जैसे कि हमारा आंटी अंकल बोलने का जो प्रोटोकॉल है, हमसे बड़े कोई हमें मिले तो हम आंटी अंकल डायरेक्टली वी जंप ऑन टू दैट, वो कभी नहीं बदलने वाला है मुझे लगता है. लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हमने एक स्वीट स्पॉट एक हमने ढूंढ निकाला है और हमारी पूरी रूट्स जो है इस नए ज़माने से कॉन्फिडेंटली हाथ मिला रही है. एंड इट्स ब्यूटिफुल टू सी दैट अमेजिंग एरा ऑफ कल्चरल अपग्रेड. और ऐसे में एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ टू डू विद द एम्प्टी नेस्ट रीडिफाइंड एंड रिटायरमेंट, जो एक पूरा जो एक कॉन्वर्सेशन है. सबसे डीप और इमोशनल शिफ्ट जो हम इस वक्त देख रहे हैं वो है रिटायरमेंट और जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट को बदलने का. इन द पास्ट इट वॉज एन अनक्वेश्चन्ड परमानेंट रूल दैट रिटायर पेरेंट्स वुड इंस्टेंटली मूव इन विद देयर एल्डेस्ट चाइल्ड. अगर एल्डेस्ट चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर दूसरे अपने बच्चों के पास वो मूव कर जाते हैं. ये ऑप्शन ही नहीं दिया जाता था कि वो जहाँ है वहीं पर वो सेटल करे, मतलब वहीं पर कंटिन्यू करें. बच्चे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और शायद पेरेंट्स भी उनके साथ रहना चाहते हैं करके वो सारा कुछ अपना पीछे छोड़ के आ जाते हैं. लेकिन आजकल हमारे सीनियर सिटीजन्स अपनी इंडिपेंडेंस, प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस को बहुत प्राउडली एम्ब्रेस कर रही है यार. इट इज़ अमेजिंग टू सी दैट दे आर ज्वाइनिंग लाइवली लोकल कम्युनिटी सेंटर्स, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, बिल्डिंग देयर ओन एक्टिव सोशल लाइव्स कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम देयर किड्स. शुरू में ये अलग रहने का जो ये आइडिया है काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है एंड वन कैन इमेजिन व्हाई. पर अब दोनों जनरेशन्स इस हेल्दी फिजिकल स्पेस को बहुत अप्रिशिएट कर रही है. वी आर फाइनली एक्सेप्टिंग दैट वन कैन डीपली लव एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स विदाउट हैविंग टू शेयर द एग्जैक्ट सेम रूफ एवरी सिंगल डे. एंड इट इज़ जस्ट अमेजिंग द वे द पेरेंट्स आर एम्ब्रेसिंग अलॉन्ग विथ द किड्स.

लिसन, आप लोगों के लिए ना ऑबरी के जनता जो खुशी मना रही है, उस खुशी में आप लोगों को भी शामिल करना चाहती हूँ जो ऑबरी के बाहर हैं। अब क्या है ना, फूडिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इंडियन ग्रोसरीज, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश गन्ने का जूस, जो इस गर्मी में सच में बहुत मजा आएगा, उसके साथ साथ केटरिंग सर्विसेज, एवरीथिंग इज इन साइड दैट फूडिस्तान दैट यू विल गेट, इंक्लूडिंग एन अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस द वाइब। और द वाइब का अगर आप मुझे एड्रेस बता दें फॉर योर जीपीएस टू कन्वीनियंटली गो देयर, तो आप जीत सकते हैं द वाइब की तरफ से एक बिल्कुल मुफ्त का आइटम। तो अगर आप मुझे कॉल करें अभी तो मैं आपको ये दे सकती हूँ, तो कॉल कीजिए 972-235-5555 पर। बाकी रही फूडिस्तान की बात, यहाँ पर आपको एवरीथिंग दैट यू गेट प्लस दे ऑफर अ लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज एंड फ्री डिलीवरी टू ऑर्डर्स ओवर जस्ट $30 विद इन 5 miles रेंज। और पता है फनीश जी, अगर आप मेंशन करते हो तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलता है। तो देरी किस बात की यार, हाँ ऑबरी जाओ आप शॉपिंग के लिए, और साथ ही साथ डिवाइड रेस्टोरेंट में वो फ्री आइटम आप इंजॉय कर सकते हो अगर आप जीतते हो। यस, आई वॉन्ट द एड्रेस टू डिवाइड रेस्टोरेंट इन ऑबरी। आधा तो मैंने ही बता दिया कि भाई ऑबरी में है, इनसाइड फूडिस्तान, क्या बच गया फिर, है ना। दिस इज़ गपशप गली विथ मीठू, और हमारी गपशप ना चल रही है अबाउट द चेंजेस, ब्यूटिफुल एवोल्यूशन ऑफ देसी कम्युनिटी दैट इज़ हैपनिंग। अब क्या है ना, वी आर लिटरली वॉचिंग द रूल बुक ऑफ बींग ए मॉडर्न देसी गेट री रिटन वन डे एट अ टाइम। और इसमें अगर मैं रिश्तों की बात करूँ, डेटिंग की बात करूँ, तो इस मामले में हमारी कम्युनिटी इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प और कन्फ्यूजिंग ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। वी हैव डेफिनेटली यू नो सॉर्ट ऑफ मूव past the archaic era of वो जो टाइप होते थे ना, बायोडेटास, न्यूज़पेपर क्लासिफाइड से रिश्ते देखना, मैचिंग हॉरोस्कोप बिफोर द कपल इवन एक्सचेंजेस हैंडशेक, डोंट यू थिंक सो। आज के देसी सिंगल मॉडर्न डेटिंग एप्स पर हैं, सीधी सी बात। पर फनी बात ये भी है कि बैक एंड पे पेरेंट्स अपने ना व्हाट्सएप नेटवर्क को बिल्कुल एक्टिव रख रहे हैं, वो बैकग्राउंड चेक वगैरह उनका चल रहा है, वो सब भी चल रहा है। यू नो, मॉडर्न मैट्रिमोनी हैज़ बिकम अ फैसिनेटिंग हाइब्रिड नेगोशिएशन वेयर इंडिविजुअल्स डिमांड इंटेंस पर्सनल केमिस्ट्री येट डेस्परेटली क्रेव द फैमिलीज एंथुजियास्टिक ब्लेसिंग। यानी कि दोनों तरफ से अगर फैमिली अगर मान जाती है तो ही रिश्ता पक्का का ठप्पा खुशी से लगता है। इट इज़ एन ऑन गोइंग टग ऑफ वॉर बिटवीन यू नो वेस्टर्न रोमांटिक फ्रीडम एंड द टाइमलेस देसी नीड फॉर कलेक्टिव फैमिली हार्मनी। एंड दैट्स ऑल्सो अमेजिंग टू सी द वे द एवोल्यूशन इज हैपनिंग इन वेडिंग्स और शादी के रिश्तों को लेकर जो

The way the evolution is happening in weddings और शादी के रिश्तों को लेकर जो सारा किस्सा है. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: and market your business for free. Showcase your deals and get discovered by customers nearby. Paasya, be where your customers are looking.
1: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: Beta? 95% आए?
5: हाँ मम्मी।
4: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
6: मेरा?
4: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Sathiya.
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
12: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
13: तुमसे मिलके दिल का है।
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
12: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
14: इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

0: अरे घूट में सोया गया। अरे घूट में सोया गया। अरे घूट में सोया गया। अरे घूट में सोया गया।
1: अभी भी एक घूट बाकी है।

नमस्ते सश्रीकाल एंड गुड आफ्टरनून डैलस. दिस इज योर होस्ट आयुषी फनी शो 104.9 एफएम पे. और आज हम फिर से वापस आ गए हैं आपको एंटरटेन करने के लिए और कोई ना कोई टॉपिक निकाल के चर्चा शुरू करेंगे बस थोड़ी सी देर में. फिलहाल आपको लेकर के चलते हैं एक बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने की तरफ जो आपको कर देगा थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक. वैसे याद दिला दूं स्टूडियो का नंबर भी है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश दे सकते हैं. 972-235-5555 is the number to the studio and here's this beautiful, beautiful, beautiful song.

My Time Equity, led by CPA Sudhir Pai, helps individuals and families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities, and alternative investments. Whether you are planning for long-term wealth or retirement, or growing your investments, My Time Equity offers personalized solutions designed to your goals. Visit mytimeequity.com or you can call them at 469-702-1272. तो आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनीशा पे, और आज दिमाग में ना कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है. एक्चुअली ये कल से चल रहा है, जब मैंने एक टॉपिक पे अपने सोशल मीडिया हैंडल पे बात करी, एंड इट वाज रिलेटेड टू फूड, बिकॉज फूड इज समथिंग दैट कनेक्ट्स अस, कनेक्ट्स आर माइंड बॉडी एंड सोल, आई वुड से. और जब कुछ ऐसे खाने की बात होती है ना, जो हम बचपन से खा रहे आ रहे हैं या फिर जनरेशन से खाते आ रहे हैं, और उसके बारे में हमें कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि ये फूड यहाँ का नहीं है, वहाँ का है, देन हम मेरे अंदर का वो कीड़ा निकल के बाहर आता है, जहाँ पे मुझे जानना होता है कि एक्चुअली ये अनाज, ये फल, ये सब्जी कहाँ से आई और उसके साथ क्या हुआ. तो ये सारी स्टोरीज आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी अपने अगले सेगमेंट में, जहाँ पे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे. जी हाँ, तो आज का जो चर्चा का विषय है, टॉपिक है, वो है खान पान और भांति भांति के, मतलब तरह तरह के जो चीज़ें हमने खाई हैं, क्या वो एक्चुअली इंडियन हैं, क्या वो इंडिया में आए थे, क्या वो हमारे वैदिक टेक्स्ट में, क्योंकि वही एक तरीका है जानने का कि वहाँ पर मेंशन्ड हैं या नहीं है. ये सारी चर्चा कोशिश करेंगे करने की, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी इसके बारे में थोड़ा ज्ञान हमें कॉल करके दें, कहीं हम गलती करें तो हमें ठीक करें, और अगर आपको लगा कि हम ठीक बोल रहे हैं तो फिर भी कॉल करके बताइए कि आयुषी आप अच्छा बोलते हैं, मज़ा आता है ऐसा सुनने में. फिलहाल आपको अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं, एंड इफ यू आर अ फूडी एंड इफ यू नो अबाउट इंडियन फूड और द पाक कला और वॉट एवर रिलेटेड टू इंडियन फूड, स्टे ट्यून्ड एंड लिसन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. फिलहाल ये गाना.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: एक और लड्डू ले लो।
3: थोड़ी और बिरयानी।
2: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
4: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
5: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
6: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
7: Dude, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
8: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
9: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: हेलो, वीकेंड लंच इमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
15: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
14: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
16: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25+ dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
0: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
1: 104.9 FM, Fun Asia Radio. Fun Asia Radio, non-stop infotainment.
2: Fun Asia non-stop entertainment. Welcome back after this very short commercial break. और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को Fun Asia पर. और अब दोपहर के 1:04 हो गए हैं और आयुषी के शो पर चर्चा शुरू हो गई है. और आज चर्चा हो रही है खाने पीने की, बिकॉज कल ऐसा कुछ हुआ कि हम थोड़ा सा इस पर पढ़ने लिखने लगे, रिसर्च करने लगे, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं गूगल वूगल पे जा करके. तो ऐसा ही दिमाग में आया था मुझे. सो व्हाट हैपेंड यस्टरडे वाज आई वाज वाचिंग अ रील. ऑब्वियसली आजकल हमारी जिंदगी के सारा इन्फॉर्मेशन पहला सोर्स रील से होता है. जब रील मिल जाती है तो हम उसको स्किप नहीं करते, उसके बारे में थोड़ा सा ना जाके उसका ऑथेंटिसिटी चेक कर लेते हैं. तो ऐसा ही कुछ हम कल किए जब बिहार के एक बहुत ही स्टेपल, मैं कह सकती हूँ काफ़ी सालों से स्टेपल फूड है सत्तू, उसके बारे में बात हो रही थी. तो देयर वाज अ रील फ्लोटिंग ऑन इंस्टाग्राम विद a misleading information, I would say, wherein it was said that Sattu is not from India. It came from Tibet and it spread in India. Then I, you know, my kurpati dimag, main gayi, maine iske bare mein padha, to mujhe pata laga ki ye jo shabd hai Sattu, that is derived from a Sanskrit word, jisko bolte hai Saktu. Aur wo shabd jo hai, wo regional influences se change hoke Sattu ho gaya. So Sattu is basically a powder made out of any roasted grain. It could be chana, it could be barley, it could be ragi, it could be different kind of anaj that we call in India. Aur main mostly Indian food ki baat isliye kar rahi hu kyunki mujhe wahi ka zyada pata hai. To yes, to ye hua and maine thoda padha to fir mujhe pata laga ki predominantly jo chana wala sattu hai jo ki hum log consume karte hain, that is from the Indo-Gangetic Plain, which is our side, UP Bihar ka jo zameen hai, wahan pe chana zyada ugta tha, isliye sattu wahan ka hota hai. Tibet se iska origination nahi hua hai kyunki ye hamare text mein mentioned hai aur ye ancient India ka ek food raha hai. And sattu aur saktu could be anything that is roasted, any anaj that is roasted and then grind and could be eaten in multiple ways. So this influencer who has millions follower, who is trying to say that, you know, it is originated in Tibet. No, Tibet had a similar kind of grain. Wahan par barley ugta hai, to wahan par sampa hota hai. And sampa is similarly roasted and then usko roast karke, grind karke, uske powder se alag alag tarah ke vyanjan bante hai. Us region ka ek staple hai. And aise grains ki khasiyat ye hoti hai ki inko roast karke aap lambe safar pe leke ja sakte ho aur ye kharab nahi hote hai. So now this is the whole story behind me talking about food today. So if you're a food lover, if you have interest in such topics, then please stay tuned and keep listening, because kuch aise khan paan ki baat karne wali hun jo ki Bharat ke na hokar ke bhi Bharat ke khan paan mein is tarah ghul gaye hain ki aaj tak hum log unse peecha nahi chhuda paaye, chhudana bhi nahi chahte hain, kyunki wo hamare Indian food ko aur enhance karte hain.

सो लंच का टाइम हो गया है और आपको जल्दी से बता दें कि अगर आप कार्लिन में हैं देन यू कैन जस्ट गो टू द तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट. जी हाँ, तंदूरी फ्लेम इज लोकेटेड इन गार्लैंड एंड इज द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्पाइस लवर्स, सर्विंग अप सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स, रिच करीज एंड ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स विद दैट होम स्टाइल पंच, फ्रॉम स्मोकी तंदूरी कबाब्स टू वेलवेटी करीज, fresh hot naan, every plate feels like celebration. Step in today and let Tandoori Flame serve you the kind of meal that turns an ordinary day into a feast. Tandoori Flame located in Garland. तो भाई अगर आप उस तरफ हैं तो जरूर जाइए और मजेदार नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स का मजा लीजिए. शो को आगे बढ़ाते हैं. देखिए खाने की बात करूं, लंच का टाइम है, भूख लग रही है और अभी भी मैं खाने की ही कुछ चीज़ों की बात करने वाली हूं. जैसा मैंने आपसे कहा था, वी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द फूड्स दैट फील इंडियन, दैट वी थिंक इज इंडियन बट इट्स एक्चुअली नॉट इंडियन. एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू नो हर खाने में पड़ता है, हर समय हम सोचते हैं बट दैट फूड इज एक्चुअली अ इमिग्रेंट इन इंडिया. येस आई कैन से दैट बिकॉज चिली की बात करूँ मैं, लाल मिर्च जो अगर आप देखते हैं अपने खानों में, हमारा कोई खाना लाल मिर्च के तड़के के बिना या लाल मिर्च पाउडर के बिना नहीं है. जो हर तरह की मिर्च है ये एक्चुअली भारत से नहीं है. द अमेरिकाज पर्टिकुलरली रीजन्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, दे इट इज़ अ नेटिव टू दिस प्लेस एंड इट केम टू इंडिया वाया द पोर्टुगीज. तो जो पोर्टुगीज आ रहे थे, पोर्टुगीज मैरीटाइम ट्रेडर्स, दे आर जनरली क्रेडिटेड फॉर दिस एंड दे ब्रॉट द अमेरिकन चिलीज टू इंडिया इन द 16th सेंचुरी. और यहाँ से एंट्री हुई लाल मिर्च की, जो आज के डेट में हम लाल मिर्च का अचार खा रहे हैं और भांति भांति की चीज़ें खा रहे हैं. ये सब एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नहीं है. And the first place through which it entered was Goa and the western coast, from where it spread through trade and cultivation. And the important thing is that chili didn't arrive as an already established Indian spice. India had plenty of spices. Hamare paas already black pepper tha, long pepper the jisko people hi bolte hain, adrak tha, mustard tha, bahut sari aisi aur cheeze thi, lekin lal mirch Indian subcontinent ka nahi tha aur aaya aur is tarah se hamare khane mein ghul mil gaya ki aaj iske bina hamara khana sochna bhi mushkil hai. उसके कारण थे क्योंकि जल्दी उग जाता था, लार्ज क्वांटिटीज में एक साथ होता था, इट वॉज चीपर देन पेपर. ब्लैक पेपर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया एंड इट कुड बी ड्राइड एंड स्टोर्ड एंड इट ऑफर्ड एन इंटेंस हीट दैट इंडियन कुक्स इमिडिएटली फाउंड यूजफुल. भैया देखिए हमें पता है कि हमें अच्छी चीज़ों का फ़ायदा कैसे उठाना है, इसलिए हमने फटाफट मिर्ची को बना लिया देसी और आज मिर्ची इतना देसी हो चुका है कि हम लोग जानते तक नहीं हैं कि मिर्ची किसी और देश से भारत में आया था. मिर्ची का पकौड़ा हो गया, हरी मिर्च की चटनी हो गई, मिर्ची की भज्जी हो गई, कुछ भी हो, कश्मीरी चिली हो, आंध्रा चिली हो, राजस्थान की मिर्ची हो, इतनी सारी मिर्चियाँ, ये सारा देन है कहीं और का, किसी और देश का. सी सो इफ़ यू नो एनी सच फूड विच इज़ प्रीडोमिनेंटली नॉट फ्रॉम इंडिया then let's talk about it. अगर आपको उसकी कहानी पता है तो मुझे बहुत मज़ा आएगा आपके साथ वो डिस्कस करने में.

So yes, a lot of calls coming in with all the food items that actually are not Indian. कुछ मेरे लिस्ट में थे, कुछ नहीं थे जो मुझे अभी पता लग रहे हैं और जिनके बारे में पक्का पता करूंगी. I had a call from Meenakshi, Pooja and Anshul ji and they all told me a list of things that is actually not Indian. And let me tell you what, Meenakshi told me that white chole, वो नहीं है भारतीय, वो टर्की के साइड से आया था. And then Pooja told me that chai, the chai patti that we drink is not Indian. And wheat is actually not Indian. It also came from somewhere else. And Anshul ji, तो मुझे बहुत सारी चीजें बताई जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे. तो भाई, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम रोज़ खाते हैं और आजकल ना उसके बिना खाना नहीं होता है, और स्पेशली हम बिहारी इसको तो हर मतलब कुछ के साथ भी आलू को मिला देते हैं हम, तो दैट्स आलू. दैट इज़ नॉट एक्चुअली इंडियन. फ्रॉम एंडीज टू आलू पराठा. जी हाँ, आलू पराठा आज, मतलब आलू पराठा नहीं, आलू आज के डेट में ऐसा है कि हमारे हर सब्जी के साथ चल जाता है, ये ऐसे घुल मिल जाता है कि पता भी नहीं चलता है. बट आलू इज नेटिव टू एंडीज रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, पर्टिकुलरली प्रेजेंट डे का पेरू और बोलीविया के आसपास का है. ठीक है, इंडिया कैसे आया भाई, वही अपने यूरोपियंस जो हैं वो घूमते फिरते रहते थे, पर्टिकुलरली जो पोर्तुगीज थे वो 16th century, 17th century में इंडिया आए और अपने साथ आलू लेकर के आए. सो हिस्टोरिकल सोर्सेज डिफर ओवर द प्रिसाइज डेट एंड रूट. सो वन पोर्तुगीज मैन ब्रॉट पोटैटो टू इंडिया, ऐसा कहा जाता है. लेकिन मुगल पीरियड की भी बात होती है, मुगल पीरियड में भी पोटैटो ऑलरेडी इंडियन पार्ट्स में नोन था, लेकिन ऐसे कहते हैं कि वो भी लेकर के आए. बट नहीं, द एक्चुअल रूट्स इज पोर्तुगीज जो इसको लेकर के आए थे. एंड उसके बाद से आलू ऐसा घुसा कि हर जगह आलू हमारे समोसे में, हमारे पराठों में और हमारे हर सब्जी के साथ, चाहे आलू गोभी हो, आलू मटर हो, आलू दम हो, आलू जीरा हो, आलू टमाटर हो, बिहार में आलू का चोखा हो, लिट्टी चोखा हो, आलू का भुजिया हो, महाराष्ट्र में बटाटा वड़ा हो या बटाटा भज्जी हो, या साउथ इंडियन का मसाला डोसा हो, जहाँ पर आलू आपको मिल ही जाएगा. तो भाई, आलू इज नॉट इंडियन, बट नाउ इट इज सो इंडियन दैट वी कैन नॉट डिनाई इट कि आलू भैया हमारा ही है. मतलब हमने इतने खानों में डाल दिया है कि पोर्तुगीज भी बोलेंगे भैया तुम ही रख लो, हमें नहीं चाहिए आलू. एनीवेज, आगे बढ़ाते हैं अपने शो को, अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं. लेकिन उसके पहले आपको बता दें, नो हेल्थ इंश्योरेंस और पैशन हेल्थ आउट ऑफ योर नेटवर्क. स्टे कनेक्टेड टू अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 a month. Your membership includes primary care visits, follow-ups, preventive care, chronic disease, medication management, telehealth when appropriate, care coordination, plus 20% savings on eligible self-pay labs, imaging and diagnostic services. You can call or text them at 214-666-6259. I repeat, that's 214-666-6259, or visit passionhealthphysicians.com. Passion Health, our passion, your health, our community. This program is not health insurance. Eligibility restrictions do apply. तो भाई, आलू खाना मत भूलिएगा आज. आलू अब हमारा ही है, कोई कुछ भी बोले हम नहीं मानेंगे. आलू पूरी तरीके से भारतीय हो चुका है इतनी जनरेशन्स के बाद.

0: ने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
2: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
3: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
2: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
3: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
1: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
5: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
11: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
12: नेशन का फन स्टेशन, फन एशिया रेडियो।
13: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे। और जब आयुषी होती है स्टूडियो में तो किसी न किसी विषय पर चर्चा हो रही होती है, और आज की चर्चा का विषय है हमारे आसपास का जितना खान पान है। वो कुछ ऐसे खान पान की बात हो रही है जो कि इंडियन ना हो के भी इतने इंडियन हो चुके हैं कि उनके बिना हम अपनी जिंदगी सोच ही नहीं सकते हैं। मतलब शाम में क्या बनाएं ये समझ में नहीं आएगा अगर आलू ना हो। अगर मतलब आलू इज़ अ लाइफ सेवर फॉर वुमन लाइक अस। जब घर पे कोई सब्जी ना हो तो बस आलू का कुछ भी बना दो चल जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, एंड ऐसी ही कुछ चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। और अब मैं बात करने वाली हूँ उस ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बिना कई लोगों की सुबह नहीं होती है, कई लोगों को शाम में फुर्ती नहीं आती है। एंड इसके बारे में ना हम अगर बात करें तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड वन इसलिए है क्योंकि चाय, अगर हम ये कह दें कि ब्रिटिश चाय इंडिया में लेके आए थे तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी चाय का उत्पादन हो रहा था असम में, वहाँ पर वहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ थी वहाँ पर सिंगपो और खामती जैसे चाय उग रहे थे और लोग उसका यूज़ करना भी जानते थे। लेकिन उसके बाद भारत में आए ब्रिटिश, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो वहाँ पर आकर के कमर्शियल टी प्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे असम में। भाई उनको देखा कि यहाँ पर तो चाय उगता है और अब वो यहाँ पर से कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं। तो 1820s से 1830s तक ब्रिटेन जो है वो चाइना का डोमिनेंस जो चाय पे था, बिकॉज वहाँ पे भी चाय का बहुत उत्पादन होता था, तरह तरह के चाय होते थे, तो उस डोमिनेंस को ब्रेक करने के लिए इन्होंने असम में चाय उगाना शुरू किया। ठीक है, द फर्स्ट कमर्शियल इंडियन टी इंडस्ट्री इमर्ज्ड अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट there's an important story behind it. Ki 1823 mein Robert Bruce, who was shown tea plants used by Singh Po through Assamese intermediaries, including Maniram Devan, his brother Charles Alexander Bruce later helped develop Assam tea production. So, yahan se commercial production start hua. Chinese tea plants ko wahan par, wahan se wo unki expertise lekar ke aaye aur usko India walon ko bataya, sikhaya. Aur 1840s tak jo chai ka utpadan tha, wo commercially hone laga. तो चाइना का जो टेक्नोलॉजी था वो इंडिजिनस आसाम के टी ट्रेडिशंस, ब्रिटिश कॉलोनियल कमर्शलाइजेशन और इंडियन कंज्यूमर्स, ये बन गया मॉडर्न इंडियन टी कल्चर. एंड देन आज के डेट में मसाला चाय जो भारत में बनती है उसका कोई मुकाबला नहीं है. मतलब हमारे चाय में दूध है, शक्कर है, अदरक है, इलायची है और सिनेमन है और ब्लैक पेपर है. और ये जो है ये सबसे अच्छी चाय है जो मसाला चाय हमारे यहाँ मिलती है. एंड इसके बाद क्या हुआ कि चाय हर घर तक पहुँच गया भारत में. इट वॉज नॉट ओनली अ एलीट बेवरेज एनी मोर, इट बिकेम लाइक हर जगह ना. हम पता है हमें, हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, चाय चाय चाय चाय चाय, ऑफिस में चाय, कोई मेहमान आए तो चाय, चाय पे चर्चा, चाय पे चुगली, चाय पे गॉसिप, डिनर के बाद चाय, बारिश हो रही है तो चाय, मतलब दिल टूटा है तो भी जाकर के चाय सुट्टा, ऐसे ही करते हैं लोग. सो नाउ चाय इज सो इंडियन दैट वी कैन नॉट गो बैक टू द हिस्ट्री एंड सोचें कि चाय कहाँ से आया था. और चाय इतना ज्यादा इंडियन हो चुका है, मतलब बॉलीवुड भी नहीं छोड़ा चाय को.

He'll take you on a trip. In Orlando.

0: झूठ कोई बातों में, देखे कोई प्यार से।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम, बस तुम।
3: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
4: Official tax and finance partner, AG FinTax.
3: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: In association with Passion Health Primary Care.
5: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
6: लैपटॉप में।
5: इन्वेस्टमेंट?
6: गूगल ड्राइव।
5: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
6: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
5: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
7: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
8: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
7: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं।
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं।
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं।
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
14: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
15: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: Floors clean.
18: Check.
17: Windows clean.
18: Check.
17: Kitchen clean.
18: Check.
17: Air ducts clean.
18: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
19: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
20: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
21: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

जस्ट चिल डैलिस, यू लिसनिंग टू योर होस्ट आयुषी। और बहुत सारे खाने की चर्चा हो गई, बहुत सारे गाने भी सुन लिए और ब्रेक के बाद आपका स्वागत भी कर रहे हैं। कुछ और आधे घंटे आपके साथ हूँ, जल्दी जल्दी गाने सुनाऊंगी क्योंकि खाने की इतनी बात हो गई है कि भूख लग गई है। मैंने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताया, कुछ ऐसे खाने के इन्ग्रीडियंट्स के बारे में बताया जो भारत से प्रीडोमिनेंटली नहीं है। एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग बैक मोर ऑन दिस इन माई नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। ये मेरी लिस्ट नहीं थी, मुझे लोगों में तो दो चार चीज़ें लेके आई थी, पर लोगों ने मुझे इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं जिस पे डेफिनेटली मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में ना शैतानी वो कीड़ा घुस चुका है। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और आपको पहले ये बता दें कि अगर आप H1B पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं या फिर किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हैं एंड आप प्लान कर रहे हैं US में परमानेंट रेसिडेंसी का, देन द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प यू। अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, including EB-5, investor visa, family and employment visa, perm labor certification and US citizenship. For more information on the EB-5 investor visa program, email info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. The law offices of Seema Mehta. चलिए अगले गाने की तरफ आपको जल्दी से लेकर के चलते हैं। And अगर कोई फरमाइश हो तो फोन करिए, कोशिश करूंगी उसको पूरा करने की। So it's a beautiful song for all my lovely, lovely, lovely listeners.

Attention, Texas business owners looking for smarter commercial energy solution. Trust Tara Commercial Energy, proudly serving Texas businesses since 2002 with competitive rates, reliable service and customized energy plans. Aap call kar sakte hain 844-428-2808. I repeat, it's 844-428-2808 or visit taraenergy.com. And there was this beautiful song from the movie Major Sahab. Bahut hi pyara gana, one of my favorites from the 90s era. And ghadi mein ab 2:10 हो गए हैं और अभी तक मैंने अपना गिव अवे नहीं किया है, तो वो करने का टाइम अब आ गया है. तो भाई देखिए, फोन पकड़ लीजिए, उठा लीजिए, स्टूडियो का नंबर डायल कर लीजिए, क्योंकि गाना आने वाला है और गाने के बाद एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आएगा जो आपको बताना है और आपको मिलेगा फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. जी हाँ, पहले फन पिज्जा किचन के बारे में बता दूं, दे हैव लॉन्च्ड अ ब्रांड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप एंड दीज आर इन जस्ट पिज्जाज, दे आर फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा. From the fresh fiesta veggie to fiery polo loco, the seafood pack, the senor cameron, every bite is bold, exciting and made to impress. Head over to Fun Pizza Kitchen and taste the new obsession for yourself. A new flavor, new obsession. For more details, visit funpizzakitchen.com. And ab bari hai giveaway ki, $10 ka gift card milega. फन पिज्जा की तरफ से, जो कि आप जाके फ्रिस्को लोकेशन से पिकअप कर सकते हैं. सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बस गाना प्ले कर रही हूँ. बहुत ही अच्छा और प्यारा सा गाना है और उसका सिंपल सा आंसर है, स्टूडियो के नंबर पे कॉल करिए जल्दी से गाना सुनने के बाद, पहले नहीं.

तो भाई आज का विजेता मतलब विनर हमें मिल गया है एंड द नेम इज सोहेल। तालियां भाई। सोहेल और मरियम ये दोनों जो है ना रोज फोन करते हैं और मजा आ जाता है, और साथ ही ढेरों कॉल्स आए जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। पर आप लोग थोड़ा लेट हो गए यार, पर कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे गिव अवेज यहाँ फनीशा पे चलते रहते हैं। सुनते रहिए, जवाब देते रहिए, कभी ना कभी आपका भी नंबर आएगा जरूर। तो आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं। आखिरी 10 मिनट बचे हैं मेरे शो के, लेकिन उसके पहले डैलस वालों आपको ये बता दूं कि यू हैव टू गेट रेडी फॉर दिस अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट। जी हाँ, यहीं डैलस में हो रहा है 26 सितंबर को 8:30 बजे। सैटरडे है और वेन्यू है क्रेडिट यूनियन टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। सो यू गेट रेडी टू एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन, योर फेवरेट सॉन्ग्स, दैट आइकॉनिक वॉइस, ऑल लाइव। Tickets available at Ticketmaster. For more information, you can call 855-360-SHOWS. I repeat, it's 855-360-SHOWS. Revolution. Sonu Nigam Live, exclusive media partner, Phanesia. Aapka apna Phanesia. To, ab agle gaane ki taraf lekar ke chal rahi hoon, lekin uske pehle आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। देखिए, हर बार कहती हूँ, बार बार कहना भी चाहिए, बिकॉज़ यू नो आप लिसनर्स ही हम आरजेस का बैकबोन है। बिकॉज़ आपके कॉल्स, आपका प्यार, भले ही अग्रीमेंट्स हो, अग्रीमेंट्स हो, फ़ोन पे हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, एंड वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट द लव यू शो अस थ्रू योर कॉल्स, चाहे वो फ़ोन आंसर करना हो, चाहे हमारे डिस्कशंस में इन्वॉल्व करके करना हो, या गानों की फरमाइश करना हो, दैट कीप्स अस गोइंग। दैट इज़ वन थिंग जिसके कारण हमारा शो ऐसे मज़े से चलता है। और हमारे कुछ रेगुलर लिसनर्स हैं जो कॉल करते हैं, बहुत बहुत थैंक यू आप सबको, दिल से आपका शुक्रिया। हम ऐसे ही कुछ अच्छा हमेशा लाने की कोशिश करते रहेंगे आपके लिए। और आप मुझे कल फिर से सुन सकते हैं। जी हाँ, आई विल बी हियर अगेन टुमारो फ्रॉम 12:30 to 2:30 PM। एंड या इफ़ यू वॉन्ट टू लिसन मोर ऑफ मी, देन प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल, विच इज़ बिहारी मॉम इन अमेरिका। फॉर नाउ, आज के लिए प्यारा सा, खूबसूरत सा, अच्छा सा गाना आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, जो कि है 90s का, जिसमें अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी हैं। तो बस गाड़ी चलाते चलाते थिरकते रहिएगा, एक गाना सुनते रहिएगा, और अगर किसी गोरिया ने आपका भी दिल चुराया है तो उसको याद करते रहिएगा। Signing off for the day, your host Ayushi. Enjoy this beautiful and mazedar 90s ka number.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता?
3: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
6: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh, Omar Khwaja.
7: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
9: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का

0: पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
1: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
2: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
5: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
6: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
5: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो. सुन रहे हैं आप मेरा और अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. 2:30 PM टिल 5 PM आई एम हियर विद यू डेली मंडे थ्रू फ्राइडे. आपके हर रोज के इस ड्राइव टाइम सफर में, आफ्टरनून ड्राइव टाइम में मैं आपके साथ होती हूँ. दिस म्यूजिकल जर्नी ऑफ अनबिलीवेबल ब्यूटिफुल म्यूजिक, लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ अपडेट. सो आप भी मेरे साथ रहते हैं 972-235-5555 के थ्रू. आज है जी वेंसडे. यू नो कि हर रोज मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ नया, कुछ डिफरेंट, और आज का तो फ्लेवर बहुत ही ज्यादा होते हैं. वी स्टार्ट विद रोमांटिक मेलोडीज, वी गो ऑन टू पॉप फ्रीक्वेंसी. वेंसडेज इज वेरी पॉपुलर फॉर द टॉप 10 ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स, पाकिस्तानी ड्रामाज. वो भी आपसे पूरी लिस्ट शेयर करती हूँ TRP चार्ट्स की, और फिर हम करते हैं ट्रॉफी ट्रैक. सो मच मोर, एंड दिस एंड सो मच मोर इज लाइंड अप फॉर यू. लेट्स बिगिन क्विकली विद रोमांटिक मेलोडीज right here on your afternoon drive time with Suneri Kiran.

जी हाँ, सुन रहे हैं आप रोमांटिक मेलोडीज, और इन्हीं रोमांटिक मेलोडीज के दरमियान लेकर आई हूँ आपके लिए एक अनबिलीवेबल गिव अवे, क्योंकि कोई भी इस कॉन्सर्ट को मिस नहीं करना चाहता. मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहती, स्पेशली फॉर द नॉस्टैल्जिया एंड द फील एंड द म्यूजिक एंड द वॉइस. द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सर्ट इज गोइंग टू बी अनबिलीवेबल. जी हाँ, कुमार सानू आ रहे हैं लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, लेकर ऑन सेप्टेम्बर द 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. मीट एंड ग्रीट की ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, फ्री पार्किंग होगी, सीट्स आर लिमिटेड. सो जल्दी जल्दी अगर अब तक आपने टिकट्स नहीं खरीदे तो नाउ इज द टाइम टू क्विकली गो एंड बाय योर टिकट्स एट eventbrite.com. और अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो उस सवाल का जवाब आपको यहां से मिलेगा. ये नंबर नोट कीजिए, 214-869-2668 is the number. This event is presented to you by Focus Entertainment and Fortune Group. So, lekar aa rahe hain aapke liye once again Kumar Sanu, Unforgettable 90s on September 11th at the Robinson Fine Arts in Plano. Acha, ye to hui aapke liye baat. Ab main lekar aayi hoon aapke liye ek ticket ka giveaway. So, aap jeet sakte hain ye ek ticket. Aap ab jo agla gana sunenge, ye gana liya gaya hai movie 1942 Love Story se. Just one of the ब्यूटिफुल मूवीज जिसमें तमाम ही गाने एक से बढ़कर एक थे. ये जो गाना है इस गाने के लिए तो नहीं, लेकिन 1942 अ लव स्टोरी के एक और गाने के लिए कुमार सानू जी ने जीता था फिल्म फेयर अवार्ड. तो आपको मुझे कॉल करके बताना है, नॉट दिस सॉन्ग बट 90, ये गाना भी आप 1942 से ही सुनेंगे, लेकिन मैं वो गाना नहीं लगाने वाली जिसके लिए उन्होंने अवार्ड जीता था. वो आप मुझे कॉल करके बताएंगे 972-235-5555. अगर आप कुमार सानू के फैन हैं तो आपको पता होगा कि 1942 के कौन से गाने के लिए जीता था उन्होंने अवार्ड. कॉल कीजिए और जीत लीजिए ये टिकट. अच्छा, मैं आपको एक बात बहुत अभी से बता दूं जी कि जिस सीक्वेंस में आपकी कॉल आएगी उसके नंबर्स को मैं नोट करूंगी, उसके बाद उनको एक मैथ के फॉर्मूले में डालूंगी और आपकी लक ही आपके विन का फैसला करेगी. मैं विनर पिक नहीं करती, आपकी लक आपका विन पिक करती है.

जी हाँ, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, हम सबको जवाब पता था. ऑब्वियसली इट वाज वेरी क्लियर. जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना जो सूरज की तरह रोशन होती है, तो ये गाना भी कुछ ऐसा ही है. बिकॉज़ ये एक ऐसी लड़की की डेफिनेशन है जो बड़ी ही खूबसूरती से की गई है. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे संदल का ख्वाब, जैसे एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो यही गाना 1995 में जीता था इस गाने के लिए. 1942 अ लव स्टोरी मूवी का ये गाना, जिसको लिखा था जावेद अख्तर साहब ने, कुमार सानू जी ने गाया और उन्होंने जीता अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर. दिस वाज द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग. बल्कि ये भी जो आप कुछ ना कहो सुन रहे थे, आर डी बर्मन साहब का ये म्यूजिक था और जो है प्रॉबेबली उनकी ये लास्ट कॉम्पोजिशन थी ऑफ हिज करियर. अच्छा जी, ये तो हुई ये बात. और आप तमाम लोगों के फ़ोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. फ़ोन कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है. अब जो लोग कॉल कर रहे हैं वो कॉल ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्टेस्ट का मैं विनर अनाउंस करने वाली हूं. जी, सबसे पहले आप तमाम लोगों की इनपुट का बहुत बहुत शुक्रिया. अमित देवदास, उसी के साथ यश, शिवानी, जोया, सायरा एंड मैनी मोर, जिन्होंने हमें कॉल किया, बिल्कुल सही जवाब दिया. और एज आई सेड, मैथ के फॉर्मूले में नंबर्स डल चुके हैं और जो करेक्ट आज की हमारी लकी विनर आई हैं वो हैं जी कॉलर नंबर 6, विच इज जोया जुल्फिकार. जोया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे ऑफ कुमार सानूज लाइव कॉन्सर्ट. सितंबर 11th को हो रहा है ये. सो आपकी सारी इंफॉर्मेशन मैं ले चुकी हूं. सो प्लीज लुक आउट फॉर दैट ईमेल. यू आर गोइंग टू रिसीव एन ईमेल और समबडी इज गोइंग टू गेट इन टच विद यू रिगार्डिंग दैट टिकट दैट यू हैव वन. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच. फनीजे इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है, बट क्या करें जी, विनर एक चुनना होता है या निकलता है और एक ही विनर होता है. सो आज की विनर हैं जोया और तमाम लोग आप, बहुत बहुत शुक्रिया. इट रियली मैटर्स टू मी दैट आप टाइम निकालते हैं. यू टेक दैट टाइम एंड गिव मी अ कॉल एंड पार्टिसिपेट. थैंक यू सो मच.

एंड इफ योर चाइल्ड इज इन थर्ड थ्रू फिफ्थ ग्रेड तो मैं आपको बताऊं जी कि नेक्स्ट जेन स्पीकर्स एकेडमी कैन हेल्प देम बिल्ड द कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स दैट दे कैन यूज फॉर अ लाइफ टाइम. जी हाँ, ये जो नेक्स्ट जेन स्पीकर्स एकेडमी है, ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है विच इज क्रिएटेड बाय एक्सपीरियंस्ड कोचेस सुन ही साइमन सैंटियागो एंड ऑड्रा लैंगस्टन. दीज आर द पीपल हु हैव मेंटर्ड डिबेट चैंपियंस एंड वैलेडिक्टोरियंस आईवी लीग ग्रेजुएट्स. तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम इज डिजाइंड स्पेशली टू हेल्प यंग माइंड्स ग्रो इनटू कॉन्फिडेंट लीडर्स. तो अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे. गिव देम अ कॉल, आस्क योर क्वेश्चंस एंड सी इफ दिस इज द राइट प्रोग्राम फॉर योर चाइल्ड. 214-724-2867 214-724-2867 उनका नंबर, या फिर नेक्स्ट जेन स्पीकर्स अकेडमी GEN nextgenspeakersacademy.com पे आप लॉग ऑन कर सकते हैं. लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल देयर. सो गिव योर चाइल्ड द कॉन्फिडेंस टू लीड टुमारो स्टार्टिंग टुडे विद नेक्स्ट जेन स्पीकर्स अकेडमी. आप सुन रहे हैं रोमांटिक मेलेडीज राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. इस गाने के साथ हम जाएंगे ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर वी आर गोइंग टू एंटर इनटू पॉप फ्रीक्वेंसी. लेके आऊंगी अगला एक घंटा आपके लिए पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक 3:30 till 4:00. कनेक्ट करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दूंगी आपको टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. एंड रियली समथिंग रियली एक्साइटिंग, सम रियली एक्साइटिंग ड्रामाज आर राइट नाउ एयरिंग ऑन TV और ऑन आप कह लीजिए YouTube पे आ रहे हैं. यू डोंट वांट टू मिस देम.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग। वी नीड टू टॉक।
1: अब क्या हुआ?
0: Nothing, it's not you.
1: Oh no.
0: It's the distance.
1: Distance? We live 10 minutes apart.
0: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
3: क्या मतलब?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
7: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
6: कहाँ?
8: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D5, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर परफेक्ट फैमिली डिनर।
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
11: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
12: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
13: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
0: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
14: डील कहाँ?
0: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
15: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: It's Hoko.
3: अरे बस भी करो यार.
2: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
3: नाम Hoko हो या Hocho क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
4: हाय, दिस इज कोंकणा सेन शर्मा एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो.
5: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो.

आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण सुन रहे हैं आप. दिस इज फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम, द परफेक्ट चैनल पे लॉग इन है. बहुत कुछ आपके लिए मजे का लाइंड अप है अगले दो घंटे. वैसे मैं आपके साथ ढाई घंटे मौजूद रहती हूँ. द फर्स्ट हाफ एन आवर रोमांटिक मेलोडीज. अब हम एंटर कर रहे हैं पॉप फ्रीक्वेंसी में. कुछ पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक आपके लिए प्ले करूंगी, सुनते रहिए. एक बर्थडे भी सेलिब्रेट होगी और साथ ही साथ 3:30 से 4 तक लेके आऊंगी आपके लिए द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. और स्पेशली जो टॉप के 4-5 हैं वो तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. वो सब जानने के लिए आपको बना रहना पड़ेगा मेरे साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग.

That was a Brarul Haq for you. और आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं जी, if you're moving soon and you need to ship documents, boxes, your entire household or even your car, then SFL Worldwide can get you complete door-to-door shipping and moving services. Not just to India, balki within the US as well as anywhere in the world, SFL Worldwide can help you ship and travel. Visit sflworldwide.com for more information. बहुत कुछ उनकी website पे available है, बहुत सारे सवालात तो आपके यूं ही जवाब मिल जाएंगे आपको. And if you still have any more questions or you want to book something, then give them a call, 1-800-691-2335. 1-800-691-2335. This is SFL Worldwide for you. SFLWorldwide.com पे लॉग ऑन कीजिए. अच्छा जी, ये तो हुआ ये. और अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बर्थडे जो लास्ट वीक सेलिब्रेट हुआ. ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉइसेस दैट वी हैव इन द इंडस्ट्री. दिस इज सज्जाद अली. उन्होंने किया अपना बर्थडे सेलिब्रेट 24 अगस्त को. और ही इज ऑफकोर्स सेमी क्लासिकल सिंगर, पॉप और रॉक सिंगर भी हैं, पोएट हैं, एक्टर भी, एक्टिंग भी कर चुके हैं फिल्मों में, डायरेक्ट भी कर चुके हैं फिल्मों को. मतलब ही हैज ट्राइड एवरीथिंग एंड आई थिंक द बेस्ट ही इज व्हाट ही इज एट इज ऑफ कोर्स सिंगिंग. और उसके साथ ही सच अ चार्मिंग पर्सनालिटी. आई हैव अटेंडेड हिज कॉन्सर्ट्स एज वेल. व्हाट अ प्लेजर एंड व्हाट अ एन एक्सपीरियंस इट इज. सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट सज्जाद अली टुडे. विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बिलेटेड ऑफ कोर्स बर्थडे. लेकिन तमाम आप सब सुनने वाले एक दो गाने मैंने सज्जाद अली के आपके लिए लाइंड अप किए हुए हैं, तो उसी से शुरू करते हैं. ये एक ऐसा गाना है जो मेरे ख्याल के कोई भी हम में से इस गाने को ना सुना हो, जिसने या पसंद ना किया हो. एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग स्पेशली फॉर अस हु आर लिविंग आउट हियर. दिस इज फॉर, ऐसा लगता है जैसे खास हमारे लिए गाया गया है. दिस इज रावी.

और अगर आप टेक्सस में बिजनेस ओनर हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फॉर बीइंग अ बिजनेस ओनर, तो फिर तारा कमर्शियल एनर्जी इज वेयर यू शुड यू नो नॉक. दे आर प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002. कंपेटिटिव रेट्स हैं उनके पास, रिलायबल सर्विस है और आपकी रिक्वायरमेंट्स के इर्द गिर्द कस्टमाइज एनर्जी प्लान बनाए जाते हैं. सो दैट इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू वॉन्ट टू चेक आउट. गिव दम अ कॉल 844-428-2808. The number again is 844-428-2808. और वेबसाइट उनकी नोट कर लीजिए, बहुत कुछ आपको उनकी वैसे वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, विच इज taraenergy.com, TARA taraenergy.com. अच्छा, ये तो हुई आपके लिए ये अपडेट. और सजाद अली के बारे में हम दोबारा से बात करते हैं जी, कि सजाद अली ने जो अपनी पहली क्लासिकल हिट एल्बम बनाई, वो उसका नाम था मास्टर सजाद सिंह मेमोरेबल क्लासिक्स. दिस वॉज रिलीज इन 1979 बाय EMI पाकिस्तान. अब आप देख लीजिए कि कब से, मतलब छोटी सी उम्र से गा रहे हैं सजाद अली. उस ये जो एल्बम थी, इसके म्यूजिशियंस वर उस्ताद गुलाम अली, जो सिंगर थे मेहदी हसन साहब, गुलाम अली एंड अमानत अली खान. वाइल मोस्ट ऑफ सजाद अली सॉन्ग्स वर रेंडिशंस ऑफ पोइट्रीज बाय हसरत मोहानी या फिर मोमिन साहब की, और कुछ ऐसे बड़े बड़े शौरा की पोइट्री को सजाद अली ने गाया. क्योंकि जब ज़ाहिर है सीखे हुए घराने से जब लोग आते हैं और इतना उनके बैकग्राउंड में सीखा हुआ पब्लिक होती है, तो फिर प्रेशर उनके ऊपर अच्छा परफॉर्म करने का और थोड़ा सा वैल्यूएबल परफॉर्मेंस देने का बहुत ज़्यादा होता है. सजाद मेड हिज टेलीविजन डेब्यू इन मेनी प्रोग्राम्स बिफोर हिज ओन डेब्यू प्रोग्राम, जिसका नाम था आप जनाब बाय अख्तर शाह खान. आफ्टर दिस वो हमें रंग बिरंगी दुनिया में नजर आए, जो कि सुहेल राणा साहब का प्रोग्राम था. उसके बाद उन्होंने रंग राग रंग में परफॉर्म किया 1980s में. 14 साल के थे वो सिर्फ जब वो राग रंग में परफॉर्म कर रहे थे. उसके बाद उन्होंने ही बिकेम फेमस एट द 25th एनिवर्सरी ऑफ PTV स्टेज शो कॉल्ड सिल्वर जुबली बाय शोएब मंसूर, जिसमें उन्होंने बावरी चोक छोकरी गा के अपने आप को, वो कहते हैं ना सजाद अली आई हैव अराइव्ड वाली सिचुएशन हुई इस गाने के साथ उस सिल्वर जुबली शो में बाय विच वॉज क्रिएटेड बाय शोएब मंसूर. सो ये एक छोटी सी किस्सा और कहानी सजाद अली की, एक छोटी सी बेहद खूबसूरत जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको सुनाया. वी आर विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे एंड वी आर सेलिब्रेटिंग हिज सॉन्ग्स. दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज अनदर ब्यूटिफुल नंबर दैट ही प्लेड, सिंडरेला.

जी हाँ, सिंड्रेला बाय सजाद अली आप सुन रहे थे, और आगे अभी 4 बजे तक हमारा पॉप फ्रीक्वेंसी चल रहा है, तो एक दो गाने और आगे प्ले करूंगी, कुछ आपकी रिकमेंडेशंस भी हैं। सबा थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, थोड़ा सा आगे जाके उसको आपके लिए जरूर प्ले किया जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप उन फ्लेवर्स को क्रेव कर रहे हैं जिसपे आप बड़े हुए हैं, तो वो है HOCO, one of India's most loved food brand, is now open in Frisco, Texas. Enjoy कीजिए उनके iconic favorites जैसे कि चना पूरी, sandwiches, delicious curries और उनका legendary HOCO cold cocoa. This is something that everybody loves. They are located at 2693 Preston Road, Suite 1000, यानी कि 1000 फ्रिस्को। वंस अगेन दैट एड्रेस इज 2693 प्रेस्टन रोड पे लोकेटेड हैं जी फ्रिस्को में, या फिर आप उनका मेन्यू चेकआउट कर सकते हैं बाय लॉगिंग ऑन टू hoco.us विच इज HOCCO.US। उनका मंत्र बड़ा सिंपल है जी, हंगरी आइए और टेस्ट ऑफ अपनी मर्जी, बचपन के जायके और इंडिया के टेस्ट के साथ वापस जाइए उन मेमोरीज को साथ लेके। तो नेक्स्ट विजिट इज HOCO।

This part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in GUS में. चाहे आप इंडिविजुअल हो या आपका स्टार्टअप हो या आप established बिजनेस रखते हो, AG Fintechs आपको ऑफर करते हैं innovative financial solutions जो कि आपकी नीड्स के इर्द गिर्द टेलर किए जाते हैं. They'll listen to you, they'll come up with a solution from bookkeeping, payroll accounting and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance as well as financial reporting. और इसके साथ business advisory service सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. दे हेल्प कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी. सो बनाइए एजी फिनटेक्स को अपना पार्टनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर. गिव देम अ कॉल 469-942-9888 इज दैट नंबर. यू कैन विजिट द वेबसाइट agfintax.com. कोई भी आपकी बिजनेस की, अकाउंटिंग की, मनी की, फाइनेंसिस की रिक्वायरमेंट्स हैं, देर इज नो हार्म इन गिविंग देम अ कॉल, आस्किंग एंड डिस्कसिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. AG Fintechs विल डेफिनेटली हेल्प यू.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: जिंदगी एक रंगमंच है
5: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
6: भूख लगी
7: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
8: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
3: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
9: अजी सुनते हो?
10: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
11: The OG of tax planning, AG Fintax। सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions। Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio।
12: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline। How may I help you?
13: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं। Everyone's asking lunch में क्या है?
12: Fikar not, we have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
14: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
15: लिया।
14: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
15: नहीं आया।
14: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772। That's 972-863-772।
11: Visit www.senadainc.com today।
16: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
17: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
16: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
17: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है।

0: आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
1: और एंटरटेनमेंट,
0: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
1: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
0: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
2: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
4: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW गेट रेडी टू रिलीव द मैजिक ऑफ कुमार शानू लाइव अनफॉरगेटेबल 90s। सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। गाइए, झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने। लिमिटेड सीट, फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप।
5: कितने आदमी थे?
6: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with me this afternoon. Afternoon drive time with Sunehri Kiran. 2:30 PM till 5 PM. और अब है जी 3:30 का वक्फा खत्म हो चुका है, यानी कि शुरू हो गया है द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास का टाइम. जी हाँ, आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ लास्ट वीक, जो कि था ऑगस्ट 24th से लेकर ऑगस्ट 30th तक का वीक. सो नंबर 10 से शुरू करते हैं. 10वें नंबर पे TRP चार्ट्स पे जो ड्रामा रहा, दैट इज ड्रामा सीरियल मिर्जा की हीर. ये आता है वेंसडेज और थर्सडेज को 8 बजे शाम ARY डिजिटल पे. और इस ड्रामे में हमें देखने को मिली हिना अफरीदी एज हीर एंड अली रजा एज मिर्जा ऑफ कोर्स, और जाहिद अहमद जिन्होंने दिल नवाज का रोल प्ले किया है. अच्छा, अली रजा तो हैं कमाल के एक्टर, हिना अफरीदी भी बहुत कमाल की हैं, लेकिन इस ड्रामे की जो क्लेम टू फेम बना हुआ है, आप कह लीजिए लोग जो इसके बारे में गॉसिप करते हैं या बात करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा तस्करा जाहिद अहमद के कंपेलिंग पोर्ट्रेल का होता है, जो उन्होंने दिल नवाज का किया है, जो विलन है इस ड्रामे के मेन, और वाकई बड़े ही खौफनाक किस्म के वो विलन बने हैं. और जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और इंटेंस आवाज और ओवरऑल वाइब जो उन्होंने अपनी बना रखी है इस ड्रामे में, दैट इज रियली रियली कंपेलिंग. एंड यू लव टू हेट दैट विलन, एंड दैट इज वॉट पीपल आर टॉकिंग अबाउट जाहिद अहमद. बहुत ही कमाल के एक्टर हैं जाहिद अहमद. सो इफ यू हैवंट स्टार्टेड वॉचिंग इट, दिस इज मिर्जा की हीर 5.6 TRP के साथ 10वें नंबर पे. 9वें नंबर पे जो ड्रामा रहा, दैट इज खफा. खफा ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट पे है जी. वेंसडेज एंड थर्सडेज को ये भी आता है शाम 8 बजे. और ये जो है अभी आप कह लीजिए महीना पहले, अराउंड 28 डेज पहले ये ड्रामा शुरू हुआ है, और इसमें हमें हिरा मानी एज तजीन और मिकाइल जुल्फिकार नजर आ रहे हैं. सैफ अली खान भी हैं, आली हसन भी हैं. तो स्टोरी जो है वो तजीन एक लड़की है, वो बड़ी हार्डवर्किंग सी हैं, कंपैशनेट हैं, स्कूल टीचर हैं, जो कि सेक्रीफाइस कर देती हैं अपनी ड्रीम अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और फिर हर लाइफ फॉल्स अपार्ट व्हेन शी इज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. उनकी रेप्यूटेशन चली जाती है, उनकी फैमिली का ट्रस्ट उन पे से उठ जाता है, एंड ऑफकोर्स द मैन शी लव्स शी लूजेस हिम एज वेल. सो दिस इज द स्टोरी. आगे क्या होता है और क्या कहानी है ये आपको देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी. पीपल आर लाइकिंग दिस बिकॉज ऑफ द फ्रेश पेयरिंग. व्यूअर्स जो हैं वो इनिशियली सोच रहे थे कि हिरा मानी और मिकाइल जुल्फिकार की केमिस्ट्री कैसी होगी, बट नाउ दे आर काइंड ऑफ द केमिस्ट्री इज ग्रोइंग ऑन देम. और फिर 8वें नंबर पे जो ड्रामा रहा वो है जी लीडर. लीडर ड्रामा बहुत अरसे से आप देख रहे हैं कि हमारे टीआरपी चार्ट्स पे बना रहता है, टॉप 10 में तो हमेशा ही रहता है लीडर. लीडर ड्रामा जो है वो संडे को आता है 8 बजे शाम हम टीवी पे. इसमें एक बार फिर अली रजा और नजर आ रहे हैं विद किंजा हाशमी. दिस इज द स्टोरी ऑफ अली रजा ऑफ कोर्स, जो मंसूर का रोल कर रहे हैं. एक हम्बल फार्मर के बेटे हैं वो, जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में राइज करते हैं, और फिर उनको कैसे सिस्टमैटिक इनजस्टिस देखने को मिलता है, और फ्यूडल सिस्टम कैसे उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, और कोई भी नॉर्मल बंदा पावर ले उसको मिल जाए तो फिर बाकी जो पावरफुल लोग होते हैं वो बड़े उनको परेशानी शुरू हो जाती है कि ये हमें कहीं सरपास ना कर दे. तो यही ऐसी ही कहानी है. पीपल लव लीडर ड्रामा बिकॉज इट ब्रेक्स अवे फ्रॉम टिपिकल फैमिली मेलो ड्रामा, जो हमें सास बहू के ड्रामे दिखाए जाते हैं उससे बिल्कुल हटके है. नॉन फॉर्मल मतलब रेगुलर फॉर्मले से हटके एक पोलिटिकल प्लॉट है इसका, और लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा अली रजा को इस ड्रामे में पसंद कर रहे हैं, और किंजा हाशमी के साथ उनकी केमिस्ट्री भी. सो दीज आर द बॉटम से 10, 9, 8 हुआ. अब इस गाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो आई विल टेल यू द रेस्ट ऑफ द टीआरपी चार्ट्स. दिस इज द ऑफिशियल साउंड ट्रैक ऑफ ड्रामा सीरियल लीडर. इस गाने को सुन के आपको अंदाजा होगा कि ड्रामा किस रुख जाता है.

जी हाँ, गाने से ही अंदाजा हो रहा है कि कितना इंटेंस किस्म का ड्रामा होने वाला है ये. अच्छा जी, बैक टू द टीआरपी चार्ट्स लिस्ट. सातवें नंबर पे जिस ड्रामे ने लास्ट वीक ट्रेंड किया विद अ टीआरपी रेटिंग ऑफ 7.2 इज ड्रामा टूटा हुआ दिल, जो कि एआरवाई डिजिटल पे आता है. ये एक सोप है, डेली आता है ये 7 बजे शाम. और आपको बताऊं कि इसमें आगा अली नजर आ रहे हैं साथ नाजिश जहांगीर. द ड्रामा फॉलोज द स्टोरी ऑफ दीज टू पीपल जो कि अपने अपने इमोशनल ट्रॉमाज और इमोशनल स्कार्स के साथ और ब्रोकन हार्ट्स के साथ एक साथ आते हैं. समीन ने अपना मास्टर्स फिनिश किया है, करियर प्रेशर्स हैं उनके ऊपर, साथ ही एम्बिशियस हीरो हैं, और फिर उनकी जिंदगी कैसे एक साथ आती है. दैट इज द स्टोरी ऑफ टूटा हुआ दिल. और छठे नंबर पे जो ड्रामा रहा विद द टीआरपी रेटिंग्स ऑफ 7.4 इज ड्रामा सीरियल तपिश, जो कि मंडेज एंड ट्यूजडेज को आता है 8 बजे शाम जियो एंटरटेनमेंट पे. मुनीब भट्ट एंड लाइबा खान हमें इस ड्रामे में नजर आ रहे हैं. वैसे तपिश ड्रामा इज अ गुड ड्रामा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो डेट है वो बड़ी जिन तारीख डेटों में डेज में ही आता है, मंडेज और ट्यूजडेज को, वो बड़ा ही सख्त मुकाबला है, क्योंकि मंडेज और ट्यूजडे को एक और ऐसा ड्रामा आता है जो कि हम सबका फेवरेट बना हुआ है, दैट इज बस तेरा साथ हो. तो इसीलिए जब डेज ओवरलैप करते हैं किसी बहुत पॉपुलर ड्रामे के साथ, तो एक ना एक ड्रामे को तो सफर करना ही पड़ता है. लेकिन तपिश जो है वो आपको 8 बजे शाम को नजर आता है, प्रोड्यूस बाय सेवन स्काई एंटरटेनमेंट. एक इंटेंस रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है ये, विच इज सेंटर्ड अराउंड काइंड ऑफ अ टॉक्सिक लव ट्रायंगल. सो इफ यू आर टायर्ड ऑफ वॉचिंग दोज टॉक्सिक लव ट्रायंगल्स, इट माइट नॉट बी द वन फॉर यू, बट इफ यू एंजॉय इट देन दिस इज द वन फॉर यू. अच्छा, उसी के साथ जी पांचवें नंबर पे जो ड्रामा स्टैंड कर रहा है विद द टीआरपी रेटिंग्स ऑफ 8.7 इज मैं तेरा. मैं तेरा में अरेज खान, युसरा इरफान, गाना अली और सबा फैसल हमें नजर आ रहे हैं. स्टोरी जो है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मंडे टू फ्राइडे आता है, यानी ये पांचों दिन ये ड्रामा, जैसे मैं आपके लिए पांचों दिन यहाँ मौजूद होती हूँ, वैसे ये ड्रामा पांचों दिन आता है रात को 9 बजे एआरवाई डिजिटल पे, यूट्यूब पे अपलोड होती रहती हैं वीडियोस. प्लॉट जो है वो सेंटर करता है अराउंड द मेन लीड, जिन अरेज खान ने जो रोल प्ले किया है हसन का. ही इज अ 40-year-old अनमैरिड मैन हु इज डीपली बर्डनड बाय फैमिली ड्यूटीज. उसके बाद उनके फादर की पासिंग हो जाती है, फिर हाउ ही टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस, एंड उनकी बहनें हैं और बहन की अब जब शादी हो जाती है तो उनको एक मजीद टॉक्सिक हस्बैंड मिल गया, एक ऐसा इंसान मिल गया जो स्क्रीन पे आता है तो मेरा दिल करता है कि मैं स्क्रीन तोड़ दूं अपनी, ऐसी वाली सिचुएशन है. मतलब ही इज रियली डूइंग अ गुड जॉब ऑफ मेकिंग मी हेट हिम सो मच. सो इफ यू वांट लाइक, इफ यू लाइक दोस काइंड ऑफ ड्रामास, देन मैं तेरा इज द वन दैट यू वुड लाइक टू वॉच. ये है जी पांचवें नंबर पे. अब इस गाने की तरफ जा रहे हैं, गाने से वापस आएंगे तो फिर आपको बताऊंगी द टॉप 4 ड्रामास जो कि सारे ही नंबर 1 का स्पॉट डिजर्व करते हैं.

जी हाँ, दिल का हाल नहीं, ड्रामों का हाल बता रही हूँ आपको। टीआरपी चार्ट्स पे कौन से ड्रामों ने लीड किया लास्ट वीक, यही हमारा सेगमेंट 3:35 टिल 4 PM आपके लिए लेकर आती हूँ। थैंक यू फॉर ऑल योर कॉल्स एंड फॉर पार्टिसिपेटिंग और बताने के लिए कि आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं। आई रियली एंजॉय इट। बहरहाल, लेट्स गेट बैक टू द लिस्ट ऑफ टीआरपीज। चौथे नंबर पे टीआरपी पे जिस ड्रामे ने अपनी जगह बनाई विद 10.0 TRP, वो है जी ड्रामा सीरियल दरे निजात। अच्छा, दरे निजात और जो तीसरे नंबर पे जो ड्रामा आया है आपकी इज्जत, उसकी TRP वाज 10.4। दरे निजात और आपकी इज्जत एक दूसरे के साथ कांस्टेंट टकराव में मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि दरे निजात भी फ्राइडे और सैटरडे को आता है शाम 8 बजे ARY डिजिटल पे, और आपकी इज्जत भी फ्राइडे और सैटरडे को आता है शाम 8 बजे हम टीवी पे। प्रॉबेबली दैट इज द मेन रीजन वाई, जब मैं अब कभी अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डालूं आपके लिए तो टॉप थ्री नहीं टॉप फोर बता रही हूँ, बिकॉज क्लैश इतना, वो कहती है ना, तगड़ा क्लैश है कि समझ ही नहीं आता ऑडियंस को, एज मी ऑल्सो, अगर मैं लाइव उसको देख रही हूँ कि भाई क्या कौन सा पहले देखना है, कौन सी एपिसोड किसकी एपिसोड पहले देखनी है। तो यही मेरे ख्याल लोगों के दरमियान भी एक चल रही है कन्फ्यूजन। बहरहाल, फोर्थ नंबर विद 10.0 TRP इज दरे निजात, ARY डिजिटल पे आ रहा है फ्राइडेज एंड सैटरडेज को 8 बजे शाम। दुरे फिशां सलीम, शहरियार मुनव्वर और नमीर नवाज खान इस ड्रामे में हमें लीड रोल्स में ये तीन कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी सपोर्टिंग कास्ट है, दैट इज ऑल्सो डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब इन वट एवर दे आर डूइंग। और दूसरी बात आपको ये बताएं जी कि ड्रामा चूंकि उमैरा अहमद का लिखा हुआ है, तो उमैरा अहमद जब अपना ड्रामा लिखती हैं तो उनका खासा है कि वो एक बहुत ही खूबसूरती से आपको रिश्ते एक ताना माना सा बुनती हैं रिश्तों का, और आपका कनेक्शन ना सिर्फ लोगों के साथ ह्यूमंस का कनेक्शन डिफाइन करती हैं, बल्कि हाउ दैट ह्यूमन इज कनेक्टेड टू ऑलमाइटी। और इस दरे निजात की जो पूरी की पूरी थीम है वो यही है कि हाउ द प्रोबेबली द लीड रोल्स विल कनेक्ट टू ऑलमाइटी। वन इज ऑलरेडी क्वाइट कनेक्टेड विद ऑलमाइटी, दो जो हैं वो बिल्कुल नहीं है, तो अब उनकी स्टोरी शायद हमें देखने को मिले। इट इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो अगर आपने देखना शुरू नहीं किया तो आप जरूर जरूर चेकआउट कीजिए, यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव दरे निजात। और इसी के साथ जो थर्ड नंबर पर ड्रामा है जो मैंने आपको बताया, दोनों ही ड्रामे एक दिन आते हैं, एक ही टाइम पे आते हैं, तो ऑडियंस भी कंफ्यूज रहती है, इज अनदर उमैरा अहमद्स राइटिंग विच इज आपकी इज्जत, जो कि फ्राइडे सैटरडे को शाम 8 बजे हम टीवी पे आता है। 4-5 घंटे में यूट्यूब पे एपिसोड्स अवेलेबल हो जाती हैं, मैं भी वहीं देखती हूँ, आप भी अगर चाहें तो वहीं देखिए। उर्वा हुकैन बहुत अरसे बाद हमें टीवी पे नजर आई हैं, एहसन खान के साथ उनका पेयरिंग हुई है। उर्वा इज प्लेइंग द रोल ऑफ बीना, जबकि एहसन खान ताबिश का रोल प्ले कर रहे हैं। सानिया सईद उनकी, उर्वा हुकैन की मदर इन लॉ का रोल प्ले कर रही हैं, एंड सैफ अली खान जो हैं वो मेरे ख्याल वो जो सब्जी वाला है जो आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है, सब्जी वाले के साथ भाग गई, वो वाली सिचुएशन है, और उसकी बड़ी मीमें भी बननी शुरू हो गई हैं। मैंने अभी एक मीम देखी कि एक हस्बैंड है, वो अपनी बीवी को कहते हैं चलो मैं तुम्हें सब्जी की शॉपिंग करा लो, कहती आप तो मेरे साथ कभी सब्जी लेने गए ही नहीं, तो वो कहते नहीं नहीं आइंदा से मैं तुम्हारे साथ सब्जी लेने जाऊंगा, आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू व्हेन यू गो फॉर सब्जी। सो इस तरह की बहुत सारी मीमें बन रही हैं, और अगर आपकी नज़र से कोई मीम गुजरे तो जान लीजिए कि इशारा इस ड्रामे की तरफ है। अच्छा, बीना की जो स्टेट ऑफ माइंड है इस वक्त, वो एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे है वो स्टेट ऑफ माइंड, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोर्ट्रेल ऑफ टेलिंग के विमेन जब सैक्रिफाइस करती हैं तो वो किस तरह से अपनी पूरी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देती हैं, एक घर के लिए, एक इंसान के लिए, एक फैमिली के लिए, और उसके बाद जब वहाँ से बिट्रेयल मिलता है तो किस तरह के इम्पैक्ट्स लोगों के ऊपर होते हैं और हो सकते हैं। दैट इज़ प्रॉबेबली द स्टोरी दैट वी आर सीइंग। बीना उर्वा हुकैन एज बीना हैज़ एब्सोल्युटली आउटक्लास्ड हरसेल्फ। आई थिंक शी इज़ द बेस्ट इन द ड्रामा अलॉन्ग विद all the others who are performing.

जी हाँ, इसी तरह ये सारे ड्रामे हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. टॉप टू के ऊपर आ गए हैं हम. सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर में हमेशा ही इन दो ड्रामों में रहा है मुकाबला. एक आता है हम टीवी पे और एक आता है ARY डिजिटल पे. स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर टू, जंजीरे ड्रामा विद 14.5 TRP रेटिंग के साथ रहा नंबर दो पे. हम टीवी पे वेंसडे और थर्सडे को शाम 8 बजे आता है. और सजल अली और दानियाल जफर, नथिंग हैज बिन न्यू दैट आई हैव टू ऐड फॉर दिस ड्रामा, जो कि अब तक ऐड नहीं हो चुका. ऑल्दो एक इंपॉर्टेंट बात जो स्टोरी में अब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ड्रामा इख्तिताम की तरफ ही खत्म पे पहुंच चुका है. सारे राज खुल चुके हैं, सारे लोग कुछ मतलब जंजीरे का एक कॉमेडी जोक बना हुआ है कि हर बंदा मर रहा है इस ड्रामे में, एवरीबडी हैज टू डाई. मुझे लगता है आखिरी में बस ये हमारे सरबुलंद और जो राबिया हैं, जो दो मेन लीड रोल्स हैं, बस वही जिंदा रह जाने वाले हैं, बाकी सबने मर जाना है. कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे इस ड्रामे में. बट द ड्रामा वॉज एन एब्सोल्यूट हिट रिटन बाय फरहत इश्तियाक, जो कि एक बहुत बड़ी राइटर है, बहुत बड़ी राइटर है. बट आई थिंक अब जो है वो ड्रामा लोगों को थोड़ा सा स्लो लगना, पीपल आर लाइक जल्दी चलो जल्दी पढ़ाओ, मतलब कितना स्लो करोगे कितना स्लो करोगे. बट द ड्रामा इज एब्सोल्युटली हिटिंग द राइट कॉर्ड. अच्छा, इसी के साथ पहले नंबर पे जो ड्रामा रहा, बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है ये ड्रामा, दिस इज बस तेरा साथ हो. मंडेज एंड ट्यूजडेज ऑन ARY डिजिटल शाम 8 बजे आता है ये ड्रामा. पीपल आर एब्सोल्युटली लविंग द केमिस्ट्री बिटवीन फरहान सईद एंड सना जावेद. दे आर लविंग सना जावेद्स कैरेक्टर, जो कि यू नो शी इज स्ट्रॉन्ग हेडेड, शी स्टैंड्स फॉर हर राइट्स, शी रिस्पेक्ट्स हर सेल्फ एंड शी रिस्पेक्ट्स हर हस्बैंड एंड शी डज नॉट लेट एनीवन क्रॉस द लाइन ऑफ रिस्पेक्ट. एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट थिंग अबाउट हर. कभी कभी मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी लाउड हो जाती हैं या वो थोड़े सा अग्रेसिव हो जाती हैं, बट द मैसेज इज वेरी क्लियर दैट नो वन, एब्सोल्युटली नो वन कैन क्रॉस दैट लाइन ऑफ रिस्पेक्ट दैट शी हैज ड्रॉन फॉर हर सेल्फ एंड ऑफ कोर्स फॉर हर हस्बैंड. और इसी के साथ अभी जो लास्ट एपिसोड बस तेरा साथ की खत्म हुई, वो एक बहुत ही क्रूशल मोड़ पे ख़त्म हुई है. फैक्ट्री का दिवालिया सा निकलने वाला है और क्या होगा और कैसे बेटे ने ही डुबो दिया बाप को, और अब वो जो हीरो हैं वो कैसे उनकी फैमिली की सपोर्ट करेंगे. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. इफ़ यू हैवन्ट स्टार्टेड वॉचिंग बस तेरा साथ हो, दैट हैज बिन ट्रेंडिंग ऑन नंबर वन स्पॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, डू वॉच इट. विद दैट, अगली TRP चार्ट्स आपके लिए नेक्स्ट वेंसडे 3:30 PM टिल 4 PM. अब मैं बढ़ रही हूँ ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर यू विल गेट इनटू ट्रॉफी ट्रैक्स.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
8: Call 857-891-8942 today.
9: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
10: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
11: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
12: हाँ.
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ.
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ.
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
13: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
19: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
18: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
18: सच में सब संभालेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
11: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit nextgenspeakersacademy.com. That's nextgenspeakersacademy.com.
8: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
20: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
21: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
22: तुमसे मिलके दिल का है.
20: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
21: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
23: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM.

जी हाँ, खास सफ़ी के लिए ये गाना प्ले किया गया था. और आप सुन रहे हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण, आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन फन एशिया रेडियो पे 104.9 FM इज द चैनल दैट यू आर ट्यून्ड इन टू. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और अब आया है जी आपके लिए एक गिव अवे लेके आए हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से. ये $10 का गिफ्ट कार्ड है जो आप जीत सकते हैं फ्रॉम फन पिज्जा किचन. बट प्लीज रिमेम्बर, जब आप ये कार्ड जीतेंगे तो आपको फन पिज्जा किचन की फ्रिस्को ब्रांच पे जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट योर कार्ड. सो प्लीज ये ध्यान रखिएगा. सो एक और बात मैं आपको मजे की बताऊं, वैसे तो हम सभी फन पिज्जा किचन के मेन्यू को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अभी फन पिज्जा किचन में एक ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप स्टार्ट हुई है. जी हाँ, दिस इज लाइक यहाँ पे, और ये खाली मतलब पिज्जा के फ्लेवर्स नहीं है, दिस काइंड ऑफ अ फिएस्टा. फ्रेश वेजीज, चिकन, सी फूड और भी बहुत कुछ. बोल्ड एंड एक्साइटिंग फ्लेवर्स दैट आर मेड टू इम्प्रेस यू इन दैट मैक्सिकन इंस्पायर्ड लाइनअप. सो आप फन पिज्जा किचन आइए, अपने फेवरेट्स के साथ इस न्यू लाइनअप को भी ट्राई कीजिए और देखिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है. funpizzakitchen.com is where you can log on and check out their menu and find out more details about them. अच्छा, आप ट्रॉफी ट्रैक सुन रहे हैं. मैं आपके लिए कुछ अवार्ड विनिंग फिल्मों के अवार्ड विनिंग गाने इस अगले कुछ आधा घंटा कह लीजिए प्ले करूंगी. अब जो गाना के शुरू का म्यूजिक मैं आपके लिए प्ले करूंगी, आप ये म्यूजिक सुनिए और मुझे बताइए कि कौन सा गाना है जिसका आपने ये शुरू के ये 10-15 मिनट्स सुने. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो टू विन दिस $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. लेट्स हेयर द म्यूजिक.

तो ना सिर्फ आपको मुझे गाने का नाम बताना है बल्कि मूवी का भी साथ साथ बताते चलिएगा. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

जी हाँ, ये गाना तो आप साथिया फिल्म से सुन रहे थे, बट जाहिर है मैं वो गाना तो नहीं प्ले कर सकती थी जिसका मैंने आपको म्यूजिक सुनाया था. तो सवाल था कि वो जो आपने म्यूजिक सुना वो किस गाने का शुरू का हिस्सा था, और जवाब बिल्कुल आसान, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया. द सॉन्ग वॉज पल पल हर पल दिल के, और मूवी थी लगे रहो मुन्ना भाई, और विद्या बालन और संजय दत्त हमें इस फिल्म में नजर आए. फन पिज्जा किचन की तरफ से ये $10 का गिफ्ट कार्ड आया था. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स एंड पार्टिसिपेशन. कॉन्टेस्ट का टाइम हो चुका है खत्म, सो अब मजीद कॉल्स में नहीं ले सकती. आज की जो हमारी लकी विनर, सबसे पहले रितु, निक्की, नीति, भास्कर, रिचिका एंड मेनी मोर जिन्होंने हमें कॉल किया. और हमारे जो लकी विनर हैं आज के वो हैं जी भास्कर. भास्कर कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. यू विल हैव गिव अस 2 days टू सेंड योर इन्फॉर्मेशन टू FPK यानी कि फन पिज्जा किचन, और उसके बाद आपके पास 7 दिन का टाइम है टू गो टू फन पिज्जा किचन एंड फ्रिस्को लोकेशन एंड गेट योर $10 गिफ्ट कार्ड. यू कैन पिक इट अप फ्रॉम द फ्रिस्को लोकेशन. प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया. फनी जय इस तरह की बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है, और आपकी पार्टिसिपेशन रियली रियली मीन्स अ लॉट.

0: और ये वो पल आ चुका है जब हम आपको कनेक्ट करने वाले हैं जी हमारे वन वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल के सेगमेंट के साथ. एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस इज व्हाट वन वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल एंड मिस्टर शाहिद पंजवानी इज ऑल अबाउट. ही इज हियर विद अस ऑन एयर और हमें बताएंगे कि हाउ कैन वन वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल हेल्प अस. लेट्स वेलकम हिम. गुड आफ्टरनून शाहिद जी, हाउ आर यू डूइंग?
1: I'm doing great. Thanks for having me. And good hot afternoon to everyone.
0: Yes. Thank you so much. Thank you so much, Shahji. Please begin by telling our listeners something about One World Business Capital. What are your service areas and how can you help?
1: As the name says it, One World Business Capital, we help with business capital. Anything commercial, we can help with. If you are business shuru kar rahe ho, business khareedna chah rahe ho, we can help you get a loan for that. If you are an existing business owner, you need working capital, you need expansion loan, we can help you with that. If you need business line of credit, if you're buying investment property. So basically out and out, jo bhi commercial need hai, shuru karna hai business ya existing business ko badhane ke liye loan chahiye, we can help in all the commercial needs.
0: Brilliant. So Shai ji, ye bataiye ki bahut sare log jab business start karna chahte hain, to of course the main question is they want to buy a franchise, but funding kahan se aayega? So where does One World Business Capital step in this?
1: So, क्या होता है जब भी किसी को बिजनेस खरीदना है तो काफी लोग जो पहली बार बिजनेस खरीद रहे हैं या पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि आई हैव टू हैव अ वेरी सॉलिड क्रेडिट, मेरा बहुत जबरदस्त 800, 750, 800 का स्कोर होना चाहिए और सारा दारोमदार सारी डिपेंडेंसी मेरी इनकम मेरी क्रेडिट पे होगी. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स इन कमर्शियल. इफ यू आर बाइंग अ कार और अ होम देन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इनकम, बट इफ यू आर बाइंग अ बिजनेस अ लॉट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस दैट यू आर बाइंग. आई एम गोना गिव अ क्विक एग्जांपल. अगर आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो, डू नॉट वरी अबाउट योर ओन पर्सनल क्रेडिट स्कोर. उस बिजनेस को जो परचेस प्राइस है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, $500,000 का आपका टोटल प्रोजेक्ट है, तो आपको उस बिजनेस का पीएनएल यू हैव टू द सेलर और द रियल्टर और द ब्रोकर व्होएवर इज इन्वॉल्व्ड एंड क्रंच द नंबर्स एंड मेक श्योर दैट जो भी $500,000 के लोन की पेमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर $4,000 पे पेमेंट आ रही है, does that business make enough money to suffice the payment? As long as if the business has sufficient cash flow, then the loan is approvable. Do not worry about your own credit score. Do not worry about your own income, because business loans do not work as like they work in the home loans. If you need help with crunching the numbers, a lot of times people don't know what to look for. And if you find a business, of course, business ke numbers crunch karne hai, just send us 2 years P&L. And we can help you crunch down. And we can also help you let you know कि इस business पे कितनी loan हो सकती है. काफी time market में ऐसा हो रहा है आजकल, which is very common, that there are prices, business की prices बहुत high है. आप as a buyer आप agree कर लेते हो एक certain price को और फिर आप finance ढूंढने जाते हो तो वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है कि आप प्राइस तो अग्री कर चुके हो, मुझे लोन नहीं मिल रही है. आई वुड रादर प्रेफर कि पीपल व्हेन दे आर डूइंग ड्यू डिलिजेंस दे कॉल अस एंड वी विल हेल्प देम क्रंच द नंबर्स. वी कैन डू इट फॉर एज लो एज 10% डाउन पेमेंट एंड वी कैन ऑल्सो गिव यू वर्किंग कैपिटल ऑन टॉप ऑफ योर एक्विजिशन लोन.
0: सो व्हाइल वी आर एट इट, कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट इन टच विद यू?
1: 817-786-3338, 817-786-3338.
0: And the website that you'd like to refer?
1: thesbaloanexperts.com. I would like to add one more point before going. Hum primarily SBA mein specialize karte, but that does not mean that is the only option. We can do commercial, conventional loans, we can do SBA loans, we can do bridge funding, we can do equity lines, and out anything that is related to your your commercial need, not just SBA, but any other finance need, we can help with that too.
0: Thank you so much, Shaiji, for connecting with us this afternoon. We will talk to you next time.
1: Thanks for having me.
0: Have a good afternoon.

0: हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट ताराएनर्जी.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।

Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran sun rahe hain. I have another 22 minutes with you right here on 104.9 FM Fun Asia Radio to 2:30 PM till 5 PM. मैं आपके साथ हर रोज मौजूद होती हूँ, हर रोज एक नया फ्लेवर, बहुत सारी नई नई बातें. और आज का फ्लेवर वॉज बहुत कुछ हमने किया, रोमांटिक मेलेडीज से शुरू हुए, पॉप फ्रीक्वेंसी, देन वी टॉक्ड अबाउट द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स, और अब हम कर रहे हैं ट्रॉफी ट्रैक्स. और उसी के साथ लेकर आई हूँ चंडीगढ़ बाइट्स आलन की तरफ से आपके लिए एक गिव अवे. यू कैन विन $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. ये बड़ी जबरदस्त आपके लिए एक विन ऑफर है, लेकिन उसके साथ मैं आपको उनका एक स्पेशल थाली के बारे में बताना चाहती हूँ जो लंच स्पेशल में अवेलेबल होती है. मंडे थ्रू फ्राइडे वो एक स्पेशल थाली देते हैं जिसमें न्यू डिशेज रोटेट करती हैं. ऐसा नहीं है कि आप जब जाइएगा तो आपको एक ही डिश मिलेगी, उसके अंदर डिफरेंट डिशेज, न्यू रोटेशन एवरी डे, दैट इज देयर लंच स्पेशल. स्पेशल थाली उसे कहते हैं. मैकडम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. अच्छा, आपको बहुत सिंपल सी बात करनी है, चंडीगढ़ बाइट्स जाना होगा एलन में, तो आपको उनका एड्रेस डालना होगा गूगल में, तो मुझे बताइए सर्च करके चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन का फुल एड्रेस. सिटी मैंने आपको बता दी है, फुल एड्रेस मुझे बताइए और जीत लीजिए अ चांस ऑफ विनिंग दिस $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. 972-235-5555 इज द नंबर टू दिस स्टूडियो. पिक दैट कॉल.

थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स. चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन की तरफ से आपके लिए गिव अवे आया है $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. और सवाल पूछा था कि चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन का फुल एड्रेस बता दीजिए. सो लेट मी फर्स्ट गिव यू द करेक्ट आंसर. नोट कर लीजिए बिकॉज आप जरूर जाइए, विजिट कीजिए, गोना एब्सोल्युटली लव देयर डिशेज. दैट इज 2023 वेस्ट मैकडरमॉट ड्राइव, स्वीट 180, एलन टेक्सास 75013. ये है जी उनका कंप्लीट स्ट्रीट एड्रेस. और आप सबकी पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. एज आई ऑलवेज से, आपका सीक्वेंस में जिसमें कॉल आता है वो नंबर मैं एक फॉर्मूले में डालती हूँ और जो नंबर निकलता है वही विनर होते हैं. और आज की हमारी लकी नंबर जो निकला है वो नाम है मरियम मंसूर. सो मरियम कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये $10 का गिफ्ट कार्ड, आई मीन काइंड ऑफ $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर विद चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन. यू विल हैव टू गो इन डाइन इन एंड यू विल गेट $10 ऑफ इन योर बिल इज 50 और मोर. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत बहुत शुक्रिया. मरियम, हमें 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर गिव अवे. और टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर पार्टिसिपेशन. इट रियली रियली मैटर्स अ लॉट कि आप टाइम निकालते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कॉल करते हैं, जवाब देते हैं. थैंक यू.

पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज हेयर टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में नहीं आते, तो दे आर ब्रिंगिंग यू एन अनबिलीवेबल ऑफर. दिस इज पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. आपको मिल सकता है उनकी मेंबरशिप में बहुत कुछ, विच इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप इन प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, इसी के साथ टेली हेल्थ व्हेन अप्रोप्रिएट, केयर कंडीशन coordination, as well as 20% off or yeah phir 20% ki savings on eligible self pay labs, imaging or diagnostic services. So it is an absolute agar is tarah ki aapki situation hai to aap is $85 a month ke health passion health direct package ke sath ye sari sahuliyat aapko mil sakti hain. Contact kijiye passion health primary care ko, unka number note kar lijiye 214-666-6259. Once again the number is 214-666-6259. PassionHealthPhysicians.com is where you can log on to find out more information. Aapko ye batati chalu that this program is not health insurance. Eligibility restrictions do apply. Do give them a call if you have any questions and ask your questions. They will be able to guide you properly. To ye to hui aapke liye Passion Health ki baat, aur ab main aapko batane lagi hoon ji weather update ke is waqt weather ka kya situation hai. Aaj hai Wednesday September the 2nd, 4:48 PM in the studio. सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है 99 degrees. However, it feels like 107. जहाँ 107 डिग्री फील है. सनी रहा दिन, हाईज इन दी ऑफकोर्स मिड 90s टू 100s, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लियर इन द इवनिंग देन बिकमिंग मोस्टली क्लाउडी. 20% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स एज वेल. लोज जो हैं वो मिड 70s तक रहने वाले हैं. पोलन काउंट आज का 8.6, विच इज मीडियम हाई ऑफकोर्स. रैगवीड, एल्म एंड ग्रास इज वॉट इज बॉदरिंग वेयर पोलन इज कंसर्न. सो अगर आपका ये इससे आप कंसर्न रहते हैं तो प्लीज टेक योर रेमेडीज. यूवी इंडेक्स इज 9 to 10, विच इज एक्सट्रीमली हाई. मेक श्योर यू आर हाइड्रेटेड, यू कीप योर सनस्क्रीन हैंडी. सनराइज आज का हुआ 7:01 सुबह, जबकि आज का सनसेट होगा 7:50. दैट वॉज योर वेदर फोरकास्ट फॉर टूडे.

एंड विद दैट अगर आप किसी कार या अनफॉर्चुनेटली किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल बिकॉज आपको इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करना है, पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, इतना कुछ चल रहा होता है, साथ ही साथ आपकी बेसिक हेल्थ well-being, physical as well as emotional and mental. So, आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि एक ऐसे attorney है जो आपको help करेंगे इस सारे scenario में, and that is attorney Omar Khwaja. Not only will he help you fight your case, but he will get you the best compensation that you deserve. और जो best part है वो ये कि आपको कुछ pay नहीं करना जब तक कि आप इस केस को जीत नहीं जाते. So, win-win situation है. जैसे कहते हैं ना, मुश्किल के वक्त में एक राहत की खबर दे रही हूँ आपको. Attorney Omar Khwaja से contact कीजिए. The number is for free consultation. The number is 469-300-5046. 469-300-5046 unka number, ya phir aap unki website visit kijiye, which is attorney Omar, O-M-A-R, attorneyomar.com. Aur isi ke saath main aapko traffic update deti chalti hoon, which is brought to you by the law offices of Omar Khwaja. Ek collision nazar aa raha hai mujhe is waqt IH-35 pe towards loop 288 southbound, jiski wajah se 2 out of 5 lanes are blocked. It is a major incident reported around 15 minutes ago. इसको वेरीफाई किया गया है. दैट मीन्स आपको यहाँ पे काफ़ी सारा इस वक्त बैकअप मिलने वाला है क्योंकि अभी भी पाइलअप हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है. ऑफकोर्स रश आवर है तो आपको कुछ मिलेगा. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट इफ यू आर गोइंग थ्रू इट. अदर देन दैट, देर इज अ डिसेबल्ड व्हीकल दैट आई कैन सी एट US-75 टूवर्ड्स पार्क बुलेवार्ड नॉर्थ बाउंड, जिसकी वजह से वन लेन एग्जिट लेन इज ब्लॉक्ड. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई कैन सी वेयर योर ट्रैफिक इज कंसर्न्ड ऑन द रोड्स ऑफ डैलस राइट नाउ.

और इसी के साथ मेरा वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. उससे पहले करेंसी अपडेट आपको देती चलूं. यूएस डॉलर आज कहां स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो जी इस वक्त यूरो ट्रेड कर रहा है 0.86 पे अकॉर्डिंग टू xrates.com, जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.74. इंडियन रुपी 94.54 पे ट्रेड कर रहा है. कनेडियन डॉलर 1.38 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपी 277.57 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. नेपालीज रुपी 151.33 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि बांग्लादेशी टका 122.60 पे ट्रेड कर रहा है. और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट देते हुए इट इज टाइम टू से माय बाइस टू यू. आज इस वक्त अकॉर्डिंग टू goldprice.org गोल्ड प्राइस पर आउंस है $4,388.02, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत $141.08 पे स्टैंड कर रही है. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $1.24 का इजाफा हुआ, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $38.57 का इजाफा देखने में मिला. But that's pretty much all that I have for you where your currency or your finance matters right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. It is time now to say my bias to you. Kal hai Thursday and that too first Thursday of the month. Aur aap jante hain ki Sunehri Kiran pe first Thursday of the month lekar aati hoon aapke liye food junction. Tomorrow we will go to a new country, a new city, and we will talk about all the lovely food that they have to offer. Unki local favorites, desi favorites, hum wahan as a tourist jaye to hume kya khana chahiye, sab कुछ खाने पीने की बातें होंगी कल आपके लिए स्पेशली. बने रहिए मेरे साथ एंड बने रहिए फन एशिया के साथ.

Wonderful track there, taken from the movie Alpha. This was with Alia Bhatt, Sharvari and Vishal Dadlani's music. Every time that hits the spot right. मैं रहूँगा जी आपके साथ till 7 o'clock. क्या बात आज? चुप हो यार, आप लोग कोई बातचीत नहीं है आपके मन में. खैर मैं कोई ना कोई चिंगारी तो छोड़ूंगा ही ताकि आप लोग मेरे से आराम से बात कर सकें. कुछ ना कुछ ख्याल आपके चेक करता रहूँगा. पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, फॉर द पीपल दैट आर 40 या 40 से कम, राइट? तो अगर आप 40 की उम्र से कम है तो अभी सुधरने की उम्र आई नहीं, ठीक है ना? चिंता मत करो. डोंट थिंक यार मैं 40 से 39-38 हो गया हूँ यार, मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ करना, कुछ नहीं करना, आपको मजे लेने लाइफ में. तो अगर आप 40 से छोटे हो देन नो वरीज, राइट? नो नीड टू वरी अबाउट सुधरना सुधरना. और अगर 40 से ऊपर हो चुके हो, अब सुधर के करना भी क्या है ब्रदर,

0: Pagal Hoy Jabo, that was the Deep Chandu and Bohemia track alongside these two. This music was shot in a very different location. If you haven't seen the video, check it out. Pagal Hoy Jabo, 972-235-5555 is the number to the studio. And I am going to take a short commercial break. But usse pehle aapko ye bata dun, this part of the show is brought to you by Omar Khwaja. If you're ever involved in an accident, slip or fall, although we never wish that calamity happens with you, but agar ye koi musibat aapke sar aan pade, to naam yaad rakhiyega. Attorney Omar on the website, Google him, you'll find all the info.
1: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Oora can help us save up to 50% on our total debt and rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Ocho.
7: Hoko.
6: Ocho.
7: Hoko.
6: Ocho.
7: It's Hoko.
8: Arre bas bhi karo yaar.
7: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
8: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
9: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरीड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
10: अरे यार घर मिल गया.
11: घर तो देख रहा हूँ लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
9: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
11: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी.
9: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट.
12: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
13: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
14: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
9: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
16: वही आवाज
6: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
16: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
17: तुमसे मिलके दिल का है।
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
16: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

0: साला, आई मीन पत्नी का भाई होता है साला, ठीक है। अब जब साला साहब घर आते हैं तो अब भाभी आपको बोले कि साला साहब से खाना पूछो, आपका फर्ज नहीं बनता। साला साहब से खाना पूछना चाहिए हमेशा जब भी वो घर आए। मैं देखो, मेरे साला साहब घर आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, साला साहब आप भोजन करके आए हैं कि घर जाके करेंगे?
1: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: डोंट बी सो रूड मैन, आस्क हिम

बंदा है बिंदास है नाम अरविंदास है। 5:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। आई एम गोना बी विद यू ऑल द वे टिल 7 o'clock। वेंसडे की शाम है जी, सितंबर की 2 तारीख हो चुकी है और सितंबर आ गया है। देखो देखो वो आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल खाना हल्का खाना है, ठीक है, भारी चीजें नहीं उठानी है, आपको अपना ख्याल रखना है क्योंकि 9वां महीना लग गया ना यार, मुझे तो फिक्र है आपकी।

0: Thank you.
1: That was Deepti Verma, ladies and gentlemen, taking you to the I know it's just Wednesday, man, but पता नहीं क्यों मैं रेडियो पे आता हूँ तो मेरा मूड तो जॉली जॉली वीकेंड वाला हो ही जाता है.

सजना जी वारी वारी जाऊं जी मैं, ऐसा मेरा प्यार है टेकन फ्रॉम द मूवी, आई थिंक द मूवी नेम वाज, क्या मूवी थी भाई, हनीमून ट्रेवल्स जनाब, दैट वाज द नेम ऑफ द मूवी. फॉर नाउ इट इज वन मोर ट्रैक, देन वी हिटिंग अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. ऑन द अदर साइड आई हैव गॉट कुमार शानू लाइंड अप फॉर यू बिकॉज ही इज कमिंग टू टाउन, गेट रेडी फॉर दैट.

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
1: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to game.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Dad, property papers कहाँ हैं?
2: Laptop में.
1: Investment?
2: Google Drive.
1: Insurance? Passwords?
2: बेटा, don't worry, मुझे सब पता है.
1: Dad, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
0: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
3: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
0: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
4: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
5: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
6: डील कहाँ?
5: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
0: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है.
7: बेटा, 95% आए?
8: हाँ मम्मी.
7: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
9: मेरा?
7: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
9: वो
0: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डॉलर्स. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: Tujhe dekha, to ye jana sanam.
10: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज. DFW, get ready to relive the magic of Kumar Shanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

Kumar Sanu, ladies and gentlemen, coming with his tour, which is the unforgettable 90s, and this is going to be in Plano, 11th of September, yani ki next weekend. Aapka bahut hi surreal hone wala hai, and this is the voice behind Bollywood ke sare iconic love songs hain yaar, jo Kumar Sanu sahab ne gaye hain. Ye live aapke liye gaayenge in Plano, and this is at the brand new Robertson Fine Arts in Plano. Aapko tickets ke liye jana hai ji, eventbrite.com. Tickets baakiyon ke liye hoti hain, hamare liye tickets hi hoti hain. टिकटों के लिए आपको जाना है जी eventbrite.com और गिव अ कॉल एट दिस नंबर 214-869-2668. दैट्स 214-869-2668, एंड दैट इज कुमार शानू लाइव इन कॉन्सर्ट फॉर योर 90s का नॉस्टैल्जिक म्यूजिक. एंड दिस इज 11th ऑफ सितंबर, ब्रॉट टू यू बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप. फॉर नाउ इट इज अनदर नंबर दैट आई वांट टू प्ले फ्रॉम कुमार शानू साहब, एंड दैट इज रेडी फॉर यू. हियर वी गो.

Remember the date, 11th of September at Plano, which is the Robinson Fine Arts. Make sure you get your tickets right away at eventbrite.com. It's my capacity to have limited here for this event, and I don't want you to lose out on your seat. So make sure you get the tickets, man, because this show, SS show, bar bar to aate nahi. And what a way to relive all of our memories live with Kumar Shanu. This part of the show is brought to you by Texas Star Rehab, place that will make sure कि आपकी पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो, चाहे आपके नीज में प्रॉब्लम है, यू हैव सम बैक इश्यूज, शायटिका इश्यूज. दे हैव अ ब्रांड न्यू लोकेशन इन फ्रिस्को ऑफरिंग एक्सपर्ट फिजिकल थेरेपी, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन, पेल्विक फ्लोर थेरेपी, मसाज थेरेपी एंड मोर. ऑल यू हैव टू डू इज गो टू द वेबसाइट विच इज texasstarrehab.com. एंड द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक इज दैट यू गेट वन ऑन वन केयर. द प्रैक्टिशनर रूशी, हु ओन्स दिस प्रैक्टिस, is himself a physiotherapist and is the therapist for Mumbai Indians New York, which is the cricket team that plays in the MLC. So make sure you look them up. Two locations, Irving and in Frisco. One more track and uske baad chota sa commercial break. This is your evening drive time show, the one and the only, the Bindaas Show. Let's go.

0: पप्पू ना बीड़ी की आदत लगी, पप्पू को बीड़ी पीने लग गया। पापा ने भेज दिया पतंजलि उनके पास, अब पप्पू पैर से भी बीड़ी पी सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आया।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर क्वाजा, इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शन सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
11: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
10: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
13: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
14: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
13: कहाँ, फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
1: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
8: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
1: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
12: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
1: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
12: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
8: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
15: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज़ फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू, एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships,
16: they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
17: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

0: एब्सोल्युटली बिंदास बोलो जी, इस गर्मी को तो अब ना बोलो, बोलो भाई थैंक यू हो गया तेरा यार, बहुत ज्यादा गर्मी। 95 डिग्रीज द करंट टेम्परेचर यार, 6 बज गए हैं तब भी 95 डिग्रीज इज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। द हाई फॉर टुडे वाज 98 एंड द लो दैट यू विल सी अर्ली मॉर्निंग विल बी अराउंड 77, बट दैट्स व्हाट इट इज, समर है भाई, टेक्सास है, गर्मी तो होगी ना। वो कहते हैं शर्मा जी बड़ी गर्मी करा के रखी, नहीं शर्मा जी ने स्टोव ऑन किया हुआ वहाँ पे, गर्मी करा रखी है। कल का वेदर जो है थोड़ा सा हो सकता है कि बारिश की आशंका जो है दिख रही है। 77 डिग्रीज विल बी द लो टुमारो, 89 फॉर अ हाई, डेफिनेटली अ गुड चेंज, अबाउट अ 10 डिग्री ब्रेक देयर। एंड फ्राइडे वी आर लुकिंग एट 40% चांस ऑफ रेन, 76 फॉर अ लो एंड 92 फॉर अ हाई। अगला हफ्ता जो है द हाईज आर इन 90s, बट वी आर गेटिंग सम रिस्पाइट बिकॉज़ द लोज आर ड्रॉपिंग टू 70s, लिटिल बिट ऑफ चेंज। And this is your evening drive time show, 5 to 7 p.m. But aaj main rahunga aapke saath 7:30 tak, covering in for Ippy, who's had a little issue with her ride, but she should be here after that. September ki 2 tarikh ho chuki hai ji, Wednesday ki sham hai, and achhi company ke saath main rakhunga ji aapko kuch achhe gaano ke saath. Today we just got a cake, man. Mere office mein, ami studio mein, वैसे तो हमें यहाँ खाना allowed नहीं है, बताना नहीं किसी को. बड़ा ही प्यारा सा ना चॉकलेट केक आया हुआ है, वो भी चॉकलेट आइसक्रीम केक, डूड। व्हाइल आई एंजॉय दिस, व्हाई डोंट यू लिसन टू द नेक्स्ट ट्रैक, आता हूँ वापस। अगर आपका दोस्त आपको फोन करके आपका सिर खा रहा होता है ना, बके जा रहा, तो उसकी बक बक सुन लिया करो यार, अपने बारे में नहीं सोचा करो, जैसे आपकी घर में कोई नहीं सुनता, उसकी भी नहीं सुनता।
1: ना लिहाफ ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी ना लिहाफ ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी हो इतनी सर।

बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया जिगर माँ बड़ी आग है, और आग तो वैसे धरती पे लगी हुई है जी, गर्मी है टेक्सास में, अंदर इज फुल ऑफ हीट, बट द प्रॉब्लम इज कि इस गर्मी हर साल आती है बट कहीं ना कहीं बारिश से हमारे को थोड़ा थोड़ा जो है आराम वो मिलता है, बट दिस ईयर नो नो नो, बारिश कह रही है जी दूर दूर तक मैं नहीं आऊंगी, अब इसको कुछ दुआ हुआ करके मंगाते हैं। फिलहाल पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर वॉन्ट्स टू लेट यू नो कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, they've got you covered with their network of clinics that they have across DFW. आपके घर के पास एक क्लिनिक जरूर होगा. If you don't have insurance, get with their affordable primary care plan, which is called the Passion Health Direct, which is $85 a month. $85 हर महीने आपके लगेंगे. उसमें इंक्लूड होगा प्राइमरी केयर विजिट, यानी कि आप डॉक्टर के पास जितनी मर्जी बारी जाइए. If you are sick, go check with your doctor. That's covered for you. Follow up from the doctor, preventive care from the doctor, chronic disease and medication management is included, and telehealth when appropriate is also given. Care coordination hai, and on top of that, you get 20% savings on eligible self-pay labs, imaging and diagnostic services. So, agar aapko x-rays karane hai, MRIs karane hai, you'll get a 20% saving on eligible self-pay plans. Go give them a call or text them at 214-666-6259. That's 214-666-6259. या फिर आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पे, विच इज passionhealthphysicians.com. That's passion health, their passion, your health, and our community. The program is not a health insurance, but definitely you should check out your eligibility when you give them a call. 214-666-6259. Now I have a giveaway coming up for you guys, and this one is coming up from Fusion Republic, जो कि अपना Richardson में खूब सारी noise, खूब सारा you know praise लेने के बाद Irving में खुल रहे हैं जी, and they have already opened in Irving. This is at 8080 Walton Boulevard in Irving. Familiar flavors that you've seen there, but if you don't know what they bring, I'm telling you, they bring delicious 25-item lunch buffet every day. पहली बात तो ये है कि हर दिन 25 से भी ज्यादा आइटम का लंच बफे आपके लिए लगता है, जिसमें चाट्स, तंदूरी प्लेटर्स, एक्जॉटिक फ्लेवर्स एंड फ्लेवर्स लाइक सीरगा सांबा मटन बिरयानी, एप्रिकॉट मलाई कोफ्ता, चिली पनीर बाओ, बुराटा चिकन टिक्का एंड मोर. डिनर इज अवेलेबल अला कार्ट. नाउ दे आर ओपन इन इरविंग एंड दे आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू विन वन फ्री सीरगा सांबा और दम मटन बिरयानी और वेजिटेबल दम बिरयानी, दोनों में से एक चॉइस आपकी है. यू कैन पिक अप एनी दैट यू लाइक. द क्वेश्चन इज के मुझे लगता है आप सबको, सब लोग बर्ड्स के बारे में बहुत जानते हो ना, पंछी, तो कहते हैं जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्रिएटिव जवाब आपने देना है मुझे, थिंक लॉजिकल बट स्टिल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, ठीक है जी? यू हैव टू टेल मी 9722355555. अब विनर मैं चूज करूंगा. जवाब आपका चाहे लॉजिकली ठीक हो या ना ठीक हो, जवाब अगर टेढ़ा हो, अटपटा हो, तो मजा आएगा, बाकी आपकी इच्छा. बताओ कौन सा ऐसा पंछी है जो उड़ता नहीं है ब्रो? और एक बात कहना तो हम भूल ही गए कि ये जो गिव अवे है ये अरविंद से है, तो अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि अरविंद जा भी सके.

0: Good evening. Fun Asia. Who is this? Hi. Hello, hello, hello, hello.
1: हेलो।
0: Hi, buddy. क्या हाल है बड़े भाई?
1: बस सर बढ़िया, आप कैसे हो?
0: हमारा भी सर बढ़िया है. सुबह उसने दबाया था इसलिए अच्छा लग रहा है. अच्छा जी, ये बताइए कौन सी पक्षी है जो उड़ता नहीं है भाई? हेलो भाई,
1: हेलो।
0: कहाँ चले जाते हो यार इतनी दूर से हम
1: अरे
0: साथ
1: पता
0: समूह?
1: नहीं, एक्चुअली ये रिचर्डसन में बारिश हो रही है अच्छी खासी,
0: अरे वाह
1: तो
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, शुक्र है कहीं तो हो रही है. क्या नाम है बड़े भाई आपका?
1: मेरा नाम नीलेश है और
0: नीलेश.
1: आपको मैं मुझे एक अच्छा फनी आंसर दे, फनी तो नहीं मतलब लॉजिकल तो है लेकिन आई मीन
0: बोल
1: नॉट टू द
0: बोलो
1: रियल
0: बोलो,
1: आंसर।
0: ज्यादा नहीं सोचते यार, फायर मारो. हाँ
1: या सो आंसर ये है कि पिंजरे का पंछी उड़ नहीं सकता।
0: पिंजरे का पंछी उड़ नहीं सकता. आपकी शादी हो गई
1: हाँ तो वही तो, हम भी तो पिंजरे में ही है।
0: फिर तो आपको बखूबी पता होगा बड़े भाई. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. लेट्स सी हू वी हैव नेक्स्ट विद अस. गुड इवनिंग फन एशिया, हुज दिस? कैन यू हेयर मी? क्या आप हमें सुन सकते हैं? सुन सकते हैं, सुन सकते हैं. चौकसी साहब नहीं सुन सकते, आगे चलेंगे, ये भी चले गए, कोई बात नहीं. सवाल बड़ा सिंपल सा है भाई कि कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता. अब एक भाई साहब बोले कि जो पिंजरे का पक्षी है उनकी शादी हुई है, उनको ज्यादा पता है. गुड इवनिंग फन एशिया, आपका नाम?
2: हाय, माय नेम इज आरती.
0: आरती. इतना सोच के बोला है आपने आरती, क्या हो गया आपका ही है किसी और का चोरी किया आज?
2: मैं अपना नाम दूं कि नहीं दूं?
0: इट्स ओके, इट्स ओके आरती. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे ओम जय जगदीश हरे. आरती जी, आपकी आवाज थोड़ी मफल्ड आ रही है, जरा मतलब करीब आइए माइक्रोफोन के. मेरे से तो वहीं ठीक है आप, बट जहाँ से बोलते हैं वहां से थोड़ा करीब आइए और फिर मुझे बताइए कि कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं है. अब अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेना.
2: नहीं नहीं भाई, हस्बैंड का नाम थोड़ी लेना चाहिए ऐसी सब चीजों में, पाप लगता है.
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो बताइए जी, ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? आपका भाई जिसकी अभी भी शादी हुई है?
2: नहीं, सो इलॉजिकल आंसर जो मेरा रहेगा वो है ये कि जो कागज के पक्षी होते हैं ना
0: कागज के
2: वो
0: पक्षी.
2: उड़ नहीं सकता.
0: वाह वाह वाह वाह, कागज के पक्षी उड़ नहीं सकते, ये बोल रही हैं आरती जी. आरती जी बहुत बहुत शुक्रिया. अगले नंबर पे कौन है हमारे साथ, करते हैं इनसे बात. हेलो गुड इवनिंग फनेजिया, कौन बोल रहा है भाई? हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, ये डब्बे में शोर बहुत है भैया, हमें तो आगे जाना पड़ेगा. रेडियो का वॉल्यूम, रेडियो
3: नंबर
0: रेडियो का वॉल्यूम, रेडियो वॉल्यूम लेस, योर वॉल्यूम अप.
3: हाय, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है, जैसे कर रही है.
0: कैसी हैं आप, कौन बोल रही हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, हम शाहिना बात कर रहे हैं.
0: शाहिना जी बताइए कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं है?
3: पंछी की बात कर रहे हैं ना?
0: पंछी पक्षी. हाँ जी
3: हाँ जी, तो भाई परदेश का पंछी है जो उड़ नहीं सकता.
0: हाय हाय हाय शहीना जी, क्या बात है, दिल ते छुरियां चलाइयां सानू कते वांग कसाइयां.
3: हम भी वहीं फंसे हैं.
0: परदेश के पंछी हैं जो उड़ते नहीं हैं. शहीना जी आप होल्ड करेंगे मेरे लिए, देखते हैं विनर कौन है. एक कॉलर और लूंगा उसके बाद जाऊंगा जी ब्रेक के. रेडियो का वॉल्यूम कम, दरख्वास्त है हमारी आपसे, आपका नाम बताइए.
4: हाय माय नेम इज सृजन.
0: हाय सृजन, आप बताइए विच पक्षी बर्ड नो फ्लाई?
4: पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच.
0: लीगल लॉजिकल आंसर, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट आंसर बड़े भैया. आई रियली लव्ड सम ऑफ द आंसर्स, जैसे कि पिंजरे का पंछी नहीं उड़ सकता, और किसी ने बोला कि कागज के पंछी नहीं उड़ सकते, फिर किसी ने ऑस्ट्रिच कीवी वगैरह बोला. एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि पंछी, मैं क्या बताऊं, खैर जो पंछी मर जाता है ना वो नहीं उड़ सकता, ये भी एक जवाब है मेरे वाला. बट शाहिना कॉन्ग्रेचुलेशन.
5: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
6: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. is a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
7: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन. Available.
11: Floors clean.
12: Check.
11: Windows clean.
12: Check.
11: Kitchen clean.
12: Check.
11: Air ducts clean.
12: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
13: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
15: सुनो सुनो सुनो सारे मैकनी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
16: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
17: जिंदगी एक रंगमंच है.
18: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
19: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, 'cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
20: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, 'cause miracles happen in Mirage.
21: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
22: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
23: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
24: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

0: यार लेडीज, मैं ना बाई गॉड आपके ना इतने टैलेंट को बाई गॉड सलाम करता हूँ कि इतना सैक्रिफाइस, इतनी मुश्किल जिंदगी, मतलब बच्चे, उसके बाद हस्बैंड, उसके बाद बातें, सोसाइटी, गुपशप और चुगली, इतना कुछ करना होता है और उसके बाद मुश्किल होता है नींद नूंद पूरी करना, पूरा आराम मिलना। मैं भगवान का बहुत शुक्र करता हूँ, आई थैंक दी ऑलमाइटी, के नींद के दौरान ना आंखें बंद हो जाती हैं, वरना शादी के बाद शांति, सुख और वो चैन तो आपको मिल नहीं सकता था ना। देखो, भगवान का शुक्र करना चाहिए और इस बात में भी करना चाहिए कि कम से कम सोते हुए आंखें बंद हो जाती हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। याद है वो अंकल आपको जो फिल्म में ऐसे बात करते थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, और अगर आपको याद आए तो मुझे जरूर बताना।
1: रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है।
0: 6:26 इन द स्टूडियो क्लॉक, 6:26, एक घंटा और मैं आपके साथ रहूंगा क्योंकि आज मेरा शो आपके लिए 7:30 बजे तक है जनाब। एंड दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय नन अदर देन हिमालयन बाजार, जो कि आपके लिए ग्रैंड प्रेरी में खुल चुके हैं। एंड दैट इज अ प्लेस व्हिच सर्व्स ऑथेंटिक देसी ग्रोसरीज। जी हाँ, सारी ग्रोसरीज जो आपके घर के एसेंशियल्स हैं वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में ताज़ा प्रोड्यूस, विच इज द फ्रेशेस्ट प्रोड्यूस यू विल फाइंड, यू विल गेट इट देयर। एंड दिस इज राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ 360 एंड हाईवे 20। एंड शाम को 5 बजे के बाद अगर आप जाएंगे तो चाय, कॉफी एंड पकौड़े एंड स्नैक्स गर्मा गर्म आपका इंतजार कर रहे होंगे। एंड इफ यू लुकिंग फॉर हलाल मीट, दे हैव दैट एज वेल। एंड फॉर माई नेपलीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देव गॉट वाटर बफ टू, सो मेक श्योर टू चेक दम आउट, विच इज बॉम्बे, नहीं बॉम्बे कहाँ से आ गया, हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी। एंड इफ यू लिव इन अ 5 माइल रेडियस, $50 की ग्रोसरी पे डिलीवरी फ्री है। गुड इवनिंग फनेशिया रेडियो, हुज दिस?
2: दिस इज विपुल, एंड एक्टर यू आर टॉकिंग अबाउट इज जीवन भांजे है, मेरा नाम
0: जीवन। क्या बात है सर, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम विपुल है भांजे।
0: विपुल, विपुल बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। अभी के लिए हम चलते हैं गाना की तरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने पूछा था जी पंछी कौन सा है जो उड़ता नहीं है, लोगों ने बड़े क्रिएटिव जवाब दिए जनाब। मैंने कहा कि मरा हुआ पंछी नहीं उड़ता, किसी और ने कहा कि भाई जिसका वीजा रिजेक्ट हो गया हो वो पंछी नहीं उड़ सकता, तीसरे ने बोला कि कागज के पंछी नहीं उड़ सकते, एक आरती जी ने भी कुछ बोला था कि नहीं, वो बन रहा था शहीना जी ने कि जो परदेसी पंछी है वो नहीं उड़ सकता। फिर आए भाई एक और आइटम, उनका नाम था राकेश, वो मुझे बोले कि मारिन भाई वो पंछी, वो जो बर्ड फ्लू वाला पंछी है ना वो भी नहीं उड़ सकता। मैंने कहा ये है बंदा, मैंने पूछा कहाँ रहे, कहाँ के, वो कहता गोवा के। मैंने कहा कभी फैनी पिया, कहते नहीं। मैंने कहा गोरों के साथ पार्टी किया, कहता हाँ मैं रहता ही बीच पे था। मैंने कहा ओ यू हैव अ क्रिएटिव माइंड।

बर्थ नेम वॉज एक्चुअली अंजलि शिव दसानी इन सिंधी हिंदू फैमिली. कराची में इनका जन्म हुआ था. दैट वॉज ऑन टुडेज डेट 2nd of September. द ईयर वॉज 1941. एंड आज के दिन वो जो पार्ट है पाकिस्तान में है जी, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन दैट इंडिया सॉ. बट व्हाट अ वंडरफुल एक्ट्रेस ऑफ हर टाइम. शी वॉज नोन एज साधना, बट साधना शिव दसानी वॉज हर नेम ऑन स्क्रीन. जैसे कहा कि बर्थ नेम वॉज एक्चुअली अंजलि. एंड इंडियन एक्ट्रेस जिन्होंने बहुत सारा काम किया हिंदी फिल्मों में, पॉपुलरली नोन एज द मिस्ट्री गर्ल, क्योंकि जो रोल्स थे वो सस्पेंस थ्रिलर्स में काफ़ी ज़्यादा देखे गए थे. एंड अगर इनकी फिल्मों की बात की जाए तो एक अपीरेंस आई थी श्री 420 में, 3420 1955 में वो फिल्म आई थी. उसके बाद एक डायरेक्टर थे शशाधर मुखर्जी, उन्होंने कास्ट किया इनको एक फिल्म में जिसका नाम था लव इन शिमला 1960. उसके बाद एक हेयर स्टाइल की वजह से बहुत पॉपुलर हुए, केम टू नोन एज द साधना कट. मतलब एक हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर कि उनके नाम पे एक कट भी रख दिया गया. साधना वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश हरसेल्फ एक लीडिंग एक्ट्रेस की तरह इन फिल्म्स लाइक पराख जो कि 1960, हम दोनों असली नकली, एक मुसाफिर एक हसीना, मेरे महबूब वो कौन थी, आरजू वक्त एंड मेरा साया. बहुत सारी अच्छी फिल्में इनके नाम. अगर आपने नहीं देखी हैं तो आज इनके बर्थडे पे इनको याद करते करते कुछ फिल्में इनकी जरूर देखना, जैसे कि मेरी रिकमेंडेशन पे मेरा साया, वो कौन थी, हम दोनों और असली नकली. यू आर लिसनिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो. वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. दिस इज द बिंदास शो. इट्स 6:50 इन द स्टूडियो क्लॉक, 6:50. मौसम गर्म है जी, एंड दिस इज गोना स्टे लाइक दैट फॉर द नेक्स्ट वीक एज वेल, विद द लोज बीइंग इन 70s, द हाई स्टिल हिटिंग 90s. आई एम गोना टेक यू टू सम ट्रैक्स बैक टू बैक ऑन फन एशिया. And I also want to let you know that this part of the show is brought to you by Signature Cuisine, jo ki aapke liye in Plano hai. I have been there myself and I can tell you some of the most yummy nihari jo hai wahan pe milti hai aapko. Unka barbecue nahi khaya to wo zarur try kijiye. And they do have a banquet hall for all of your events. So make sure to check them out. They are on Spring Creek and Alma, right there in the Plano area. And that is Signature. That's the name you're going to type in your browsers. That's Signature Restaurant in Plano.